0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, सभी को नमस्कार। मॉरिशस बॉ काउंसिल ने गुलशन गोविंद के वकील रोबेन बोहंगा पिले की ओर से की गई शिकायतों के बाद प्रतिक्रिया दी है। एक बयान में बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कही जिनके अनुसार कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद पर अपने वकील को बदलने के लिए दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की है। मॉरिशस सरोरिक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आम की गई सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। 13 वर्षों के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी हुई है। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 हफ्तों तक कई विषयों के बारे में सीखेंगे। अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और सह अस्तित्व, सब्जियों पर ठंड का असर और इसका असर कीमतों पर भी। पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। और विदेश में अमेरिका में ब्याज दरों में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। फेडरल रिजर्व ने सर्वसम्मति से ब्याज दर को 3.5 से 3.75% से बढ़ाकर 3.75 से 4% कर दिया। और अब मौसम की रिपोर्ट। मॉरिशस के लिए ऊंची लहर की चेतावनी जारी है जो कि आज दिन के 10 बजे तक लागू रहेगी। मस्करिन्स के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले काफ़ी ज़ोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज़ और ठंड हवा पाई जा रही है और इन हवाओं से जुड़े बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि सुबह के वक्त और दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे जो रह रहकर घने हो जाएंगे और जहां तहां बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं ऊंचाइयों पर। सुबह के वक्त कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकते हैं। समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं। और अतिरिक्त जानकारी में ये भी बताया जाता है कि उच्च ज्वार के समय निचले इलाकों में, खासकर पश्चिम और दक्षिण में तटों पर भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए मछुआरों, मनोरंजन नौकाओं और आम जनता से ज़ोरदार अपील की जाती है कि समंदर में न जाए और साथ में ज्वार के वक्त इन तटों से भी दूर रहे। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दे। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Rising 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: चलिए श्रोताओं, आप

0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये रेडियो मॉरिशस है। 6:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। गुरुवार का दिन है आज और आज है 17 सितंबर 2026। आप सभी सुनने वालों का हम हार्दिक अभिवादन करती है। तो चलिए आपके एक सुहाना सफ़र हम लेकर आए हैं। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ निभाने वाली है। श्रोताओं, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। बीते हुए कल को हम मुस्कुराकर विदा करने की कोशिश हम करेंगे और आज को पूरे विश्वास के साथ जीने की कोशिश भी करने वाली है। तो चलिए आज की सुबह आपके लिए जो है बेहद ही शुभ हो और आपके दिल में उम्मीद बनी रहे। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के साथ। ये कार्यक्रम जो है आचार्य सकलानी जी की प्रस्तुति में आप सुन सकेंगे मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
2: ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले प्रसंग में हम सत्य की चर्चा कर रहे थे। जो सत्य है वही धर्म है। महाभारत ने कहा कि जो धर्म है वही प्रकाश है और जो प्रकाश है वही सुख है, जो असत्य है वही अधर्म है और जो अधर्म है वही अंधकार है, तम है, और जो अंधकार है वही वास्तव में दुख है। सत्य ही नित्य विभु सनातन और अमृत तत्व है। इन लक्षणों वाला सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। इस सत्य स्वरूप परमात्मा की या परमात्मा रूपी सत्य की प्राप्ति सत्य के द्वारा ही सत्य की सेवा करने से होती है। सत्य की शक्ति से सत्य को पवित्र बना करके सत्य को ही लक्ष्य करके ही सब समय सत्य का प्रयोग करना चाहिए। यही सत्य के द्वारा सत्य की सेवा है। सत्य वास्तव में परमात्मा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के और सबसे पहली जो वंदना महर्षि वेद व्यास जी करते हैं यही कहते हैं ना कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। अर्थात कि सत्य ही वास्तव में परमात्मा है। सर्वत्र व्याप्त सत्य को हम सत्य की आँखों से ही देख सकते हैं। सत्य के कान से ही हम उस सत्य की मुरली ध्वनि को सुन सकते हैं और सत्य के द्वारा ही हम उस सत्य का सतत स्पर्श पा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने मन बुद्धि को प्रत्येक आंतर और बाहर इंद्रियों को और तमाम शरीर को इसी सत्य की शोध में सत्य की सेवा में ही लगा करके रख देना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्य ही रहे। सत्य भगवान का नाम है, सच्चिदानंद रूपाय है ना, इसलिए भगवान ही हमारे एकमात्र ध्येय हों। भगवान के बिना और यदि कुछ है तो वो सर्वथा असत है और है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको

रक्षा बनाने से व्यर्थता के सिवाय और क्या हाथ लगेगा। हाँ, बार बार असफलता और निराशा के कारण दुख जरूर मिलेगा। इसीलिए भगवान ने अपने से विरहित अनित्य विषयों से भरे इस अनित्य संसार को और संसार में होने वाले अनित्य जन्म को असुख मतलब सुख रहित या दुखालय बताया है, दुखपूर्ण बताया है। इसीलिए श्रोताओं, जो मनुष्य अनित्य और असत्य विषयों को सत्य सुख के साधन समझ करके नित्य सत्य रूप भगवान को भूल करके विषय साधन और विषय सेवन में ही लगे रहते हैं, वे प्रतिक्षण व्यर्थता रूप भवसागर में पड़े हुए एक दुख से दूसरे दुख की भीषणता तरंगों से टकराते रहते हैं और बड़ी ही बुरी तरह से बेबसी के साथ दुख समुद्र में डूब जाते हैं। इन सब बातों को समझ करके बुद्धिमान पुरुष सत्य स्वरूप परमात्मा में ही परम सुख समझ करके उन्हीं को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं। यद्यपि मनुष्य का लक्ष्य सुनिश्चित और सुस्थिर हो जाने पर लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में उससे सहज ही भूल नहीं होती, क्योंकि लक्ष्य की नित्य स्मृति रहने से वो स्वाभाविक ही बार बार इस बात की जांच करता रहता है कि मैं ठीक मार्ग पर हूं या नहीं। और जरा भी कहीं विपरीत या बिकट मार्ग दिखता है तो वहीं बड़ी सावधानी के साथ विपरीत मार्ग को त्याग देता है और बिकट मार्ग में अपने को सुरक्षित बना करके और निरंतर आगे बढ़ता जाता है। परंतु ये तो श्रोताओं दृढ़ है और उसके सुदृढ़ लक्ष्य पर स्थित होकर के जो इस मार्ग पर चलने लगते हैं उसकी तो बात है, जिन्होंने मार्ग पर चलना आरंभ ही नहीं किया या जो बहुत कम आगे बढ़े, उन लोगों के लिए तो बड़ी सावधानी के साथ लक्ष्य की रक्षा करते हुए लक्ष्य एन और जो सत्यपूत मार्ग पर चलने की मनुष्य को बहुत आवश्यकता है, निरंतर आवश्यकता है, मनुष्य कहीं जाने का निश्चय करता है और चल भी देता है, परंतु रास्ते में साथियों से बात करते करते उनसे मन लगा करके और व्यक्ति रास्ता भूल जाता है, फलतः वो राह भटक जाता है। खेल तमाशे में या अन्य किसी वस्तुओं के रसास्वादन में लग करके भी पथिक और अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो सकता है। इसी प्रकार साधन जगत में भी लक्ष्य भ्रष्ट होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है श्रोताओं। ऐसी अवस्था में सावधानी के साथ लक्ष्य पर और लक्ष्य के जो मार्ग हैं उस मार्ग पर सदा सतर्क दृष्टि रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। ये सावधानी सभी क्षेत्रों में और सभी ओर से हमेशा रहनी ही चाहिए। सत्य से पूर्ण विचार, भाव, कर्म, वचन और साधन भजन सभी के द्वारा सत्य का सदा सेवन करना चाहिए। सद्विचारों के द्वारा सत्य का सेवन है ना, जगत का रचने वाला ईश्वर कोई नहीं है, ये संसार ईश्वरीय सत्य से रहित है श्रोताओं। केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही पैदा होता है। इस जगत में पैदा होकर के बस सब प्रकार के मौज शौक ही करने चाहिए। शरीर का आराम, भांति भांति के इंद्रियों को तृप्त करने वाले भोग, सर्वत्र फैली हुई नाम कीर्ति, यही सब तो यहाँ का आनंद है। शरीर में भरपूर शक्ति रहे, सब लोग हमारा रौब माने, भोगों के भोग में हम कभी आसक्त न हो, इसके लिए पौष्टिक भोजन, शक्ति वर्धक औषधियों का सेवन करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं हमारे सुख के लिए, और हमें बस अपने सुख पर ही और निरंतर ध्यान देना है। इससे दूसरों की क्या गति होगी, इससे हमें कोई
परवाह नहीं होनी चाहिए। श्रोताओं, ये सब लोग तो हमारी सेवा के लिए ही बने हैं, हमारा अधिकार है, हमारी हुकूमत बढ़ती रहे, हम इस देश के राजा, नेता, पथ प्रदर्शक, सबके पूज्य गुरु और आराध्य।

0: हो जाएं, जिससे हम खूब आराम से रहें। सभी लोग हमारे आराम की मांग को बिना ही मांगे पूरी करने के लिए तैयार रहें। हमारी बराबरी करने वाला कोई न हो, चाहे हम जिसे मारें, जिसे छोड़ दें, शत्रु हमसे डर जाएं, सब हमारे अधीन हो जाएं, बस जगत में केवल हमारा ही झंडा ऊंचा रहे, हम ही सुखी रहें। शक्तिमान हों, स्वामी हों, धनी हों, भोगी हों, सफल जीवन हो, शेष सब हमसे नीचे रहें इत्यादि, यही तो श्रोताओं सारे के सारे असत विचार हैं। इन विचारों के द्वारा असत्य को ही और असत्य का ही ग्रहण होता है श्रोताओं, उसका परिणाम महान विपत्ति और घोर यंत्रणा, भीषण व्याधि तथा नीच और नारकीय योनि की प्राप्ति होती है श्रोताओं। इन सब असत विचारों को बलपूर्वक त्याग करके बदले में और अच्छे विचारों को धारण करना चाहिए, है ना। वो अच्छे विचारों, सद्विचारों की उत्पत्ति और पुष्टि करने का प्रयत्न करना चाहिए श्रोताओं। जैसे पहला विचार है ईश्वर है और वे एक अनंत असीम अचल अखंड अज अविनाशी नित्य सत्य सनातन सम विज्ञानानंद घन सर्व शक्तिवान सर्वोपरि सर्वाधार सर्वव्यापी सर्वरूप सर्वतश्चक्षु सर्वनियंता सच्चिदानंद और पूर्ण हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं और इन सब से परे भी हैं। वे अनिर्वचनीय हैं, अचिंत्य हैं, तथापि भक्तवत्सल हैं, हमारे परम सुहृद हैं, सब जीवों के कल्याणकर्ता हैं, पुकारने से प्रकट हो जाते हैं और हमें दुखों से छुड़ा करके अनंत सुख धाम में पहुंचा देते हैं श्रोताओं। दूसरी बात, उन्हीं की शक्ति प्रकृति उन्हीं की और अध्यक्षता में जगत की रचना करती है, उन्हीं की शक्ति से जगत का भरण पोषण नियंत्रण और संग्रहण होता है। नंबर तीन, ये सारा विश्व उस परमात्मा से ही निकला है, उन्हीं से बना है और वही इस समस्त चराचर विश्व में व्याप्त हैं और ये सभी केवल उन्हीं में स्थिर है श्रोताओं। आज समय यहीं पर समाप्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रसंग को लेके पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

श्रोताओं, 6:18 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। वक्वा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें हैं रू रेमियोलिये, मार्सलमा फ्लोरियो, गोपी लेन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस हिंदुस्तानी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इस समय से लेकर 6:30 बजे तक चंद भावगीत आपकी सेवा

0: मैं, और ये पहला भावगीत है जो है आप सुन सकेंगे, और हम आपको इशारा कर दें कि कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे, पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। 7 बजे हम वापस मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम को लेकर। तो चलिए, आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

श्रोताओ, बहुत ही प्यारा सा भावगीत फिल्म रफ्तार से लिया गया मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे हैं। श्रोताओ, सुख में सब साथ देते हैं, इंसान की पहचान दुख में होती है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ इस गाने को हम आगे बढ़ाएंगे। तो 6:30 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। हमारी तरफ से आप सभी

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सारी 6 बजे हैं, वक्त हो चला है समाचार बुलेटिन का। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। एक बयान में बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कही जिनके अनुसार कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद पर अपने वकील को बदलने के लिए दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। मॉरिशस और रॉड्रिक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे। कुल आबादी के अनुपात में देखें तो ये संख्या लगभग हर 5 लोगों में से एक के बराबर। कुछ खास प्रकार के चूमे के इलाज के लिए एक नई तकनीक नानो नाइफ नेशनल कैंसर सेंटर में भी उपलब्ध कराई जा रही। सब्जियों पर ठंड का असर और इसका असर उनकी कीमतों पर भी। पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही। और विदेश में अमेरिका में ब्याज दरों में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस बॉ काउंसिल ने गुलशन गोविंद के वकील ओबेन मोहंगा पिले की ओर से की गई शिकायतों के बाद प्रतिक्रिया दी है। एक बयान में बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कही जिनके अनुसार कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद पर अपने वकील को बदलने के लिए दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की है। बॉ काउंसिल के सचिव वकील यतिन वर्मा के अनुसार यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो मामले की जांच शुरू की जानी चाहिए ताकि घटनाओं की वास्तविक परिस्थितियों और संबंधित पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके। उनका ये कहना है कि यदि आरोप साबित होते हैं तो पुलिस कमिश्नर को आवश्यक कार्रवाई और उचित प्रतिबंधात्मक कदम उठाने चाहिए। यतिन वर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो का भी उल्लेख किया जिनमें रुबेन मोहंगा पिले को निशाना बनाया गया है। उनके अनुसार ये संभव है कि इन पोस्टों को वकील को उनके पेशेवर कार्यों के दौरान अस्थिर या दबाव डालने के उद्देश्य से आयोजित किया गया हो। गौरतलब है कि वकील ओबेन मोहंगा पिले गुलशन गोविंद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जांच रीयन और मॉरिशस के बीच कथित तौर पर 155.7 किलो गांजा आयात किए जाने के मामले से जुड़ी हैं। वकील यतिन वर्मा से बात की अधिया वालिया ने विवरण रजनी बिकर का।
2: बॉ काउंसिल ने भी देखा कि कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं हैं, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डाल रही है। अधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है अगर ये बातें सच हुई तो। भविष्य में अदालत में ये देखना चाहिए कि एक वकील पूरी स्वतंत्रता से काम कर सके और पुलिस के हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सके, क्योंकि एक वकील के काम करने का अपना तरीका होता है। साथ ही कैदियों के भी अधिकार हैं जिनका पालन करना चाहिए। सोशल नेटवर्क पर कुछ वीडियोस डाले गए हैं जिनमें मोहंगा पिले जी की निंदा की जा रही है जब वे अपना काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि ये वीडियोस लोगों द्वारा तैयार है। एक बार फिर से न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है। अधिकारियों को इस पर जांच करनी चाहिए, तब अधिकारियों और पुलिस को कदम उठाने चाहिए, पुलिस कमिश्नर को भी और संबंधित कदम उठाने चाहिए।
1: खबरों में आगे, मॉरिशस रॉड्रिक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आम की गई सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। इनमें 5,300 से अधिक लोग 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जबकि इनमें 242 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष या उससे ज़्यादा है। रिपोर्ट में अंशदायी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ साथ

0: विभिन्न सामाजिक भत्ते पाने वाले लोगों का भी आंकड़ा शामिल है। ये आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब मॉरिशस में जल्द ही स्टेट एज पेंशन व्यवस्था की ओर बदलाव होने वाला है। रजनी बिकर,
1: अगस्त महीने के अंत तक 273,021 लोगों को रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त होता था। मॉरिशस में 266,977 और

0: 1555 रुपये मिलते हैं मासिक तौर पर। 5093 लोग 90 और 99 वर्ष की आयु के बीच के हैं, जिन्हें 23,550 रुपये, और 242 ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष के हो चुके हैं और उन्हें 28,735 रुपये मिलते हैं। ये भी पाया गया कि 21,389 रिटायर्ड लोग हैं जो गंभीर रूप से विकलांग हैं और उन्हें अतिरिक्त रूप से 3,500 रुपये प्राप्त होते हैं। कंट्रीब्यूटिव स्कीम के लिए 1,73,246 लाभार्थी। अगस्त महीने में 9,334 लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन से लाभ उठा रहे थे। ये आंकड़े ऐसे समय पर नोट किए जा रहे हैं जब 1 जनवरी 2027 में BRP की जगह पर स्टेट एज पेंशन आएगा। सरकार ने बजट में आखिरकार मींस टेस्ट त्याग दिया है। याद रहे कि स्टेट एज पेंशन 60 वर्ष के लोगों के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन मासिक तौर पर 0.5% की कमी के साथ अगर लागू पेंशन उम्र से पहले पेंशन प्राप्त कर रहे हों तो। अभी 65 वर्ष की ओर ट्रांजिशन की ओर बढ़ रही है।
1: तो अगस्त के अंत तक मॉरिशस में 2,73,021 लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे थे। ये स्टेट एज पेंशन लागू होने से पहले का आखिरी आधिकारिक आंकड़ा है। नई व्यवस्था अगले साल 1 जनवरी से लागू होने वाली है। कुल आबादी के अनुपात में देखें तो ये संख्या लगभग हर 5 लोगों में एक व्यक्ति के बराबर है। आंकड़ों में देश के बढ़ती उम्र दराज आबादी की तस्वीर भी दिखाई देती है। लेकिन सवाल सिर्फ पेंशन पाने वालों की संख्या का नहीं है, सवाल ये भी है कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था का सरकारी वित्त पर कितना बोझ है और प्रस्तावित सुधार के लागू होने के बाद वास्तव में क्या बदलाव आएगा। इसी पर अर्थशास्त्री अमित भकीरता से बात की शैली निर्बन ने, उनको सुनते हैं।
2: En introduisant une pension complète à un âge progressivement porté à 65 ans, une décote de 0,5% par mois en cas de départ anticipé, une majoration en cas de report. Elle améliore donc l'équité actuelle et ralentit quelque peu la progression des dépenses. Toutefois, cette réforme, dans son état actuel, réaménage principalement la pression démographique au lieu de l'éliminer. Alors, plausiblement, sans meilleur ciblage des retraités aisés, financement contributif plus robuste, dépassant 35%, probablement beaucoup plus que ça, constitution des réserves et ajustement régulier de l'âge d'éligibilité à l'espérance de vie, mais surtout une réforme dans la gestion et dans l'allocation des classes d'actifs d'investissement.
1: 13 वर्षों के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी हुई है। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 हफ्तों तक कई विषयों के बारे में सीखेंगे। अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और सह अस्तित्व। बाद में ये प्रोग्राम अन्य नौजवानों के लिए भी चलाया जाएगा। विस्तार अनाबेल वुल्बे और याचना मिश्रा के साथ।
3: नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज सुबह से प्रशिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 16 से 28 नवंबर तक इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से इस पहले संस्करण में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। देश के निर्माण के लिए एक ऐसा प्रोग्राम सहायक होगा जो नौजवानों को साथ ले आए ताकि वे सीखने के साथ साथ जिम्मेदारियों का अनुभव कर पाएं। संविधान या सरकारी ढांचों के बारे में जानने के अलावा वे देशभक्ति के बारे में भी सीख पाएंगे। ये कार्यक्रम 2 चरणों में है। पहले सप्ताह में देश के 4 क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियाँ और प्रशिक्षण होंगे। दूसरे सप्ताह में रेजिडेंशियल कार्यक्रम होगा। हम नौजवानों को सामाजिक कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे वे नेक कार्य के लिए साथ आ सकते हैं और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं, हम ये सिखाएंगे।
4: रिलेशन
3: इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में जिम्मेदारी की भावना, टीम स्पिरिट और समुदाय के प्रति जुड़ाव

0: कसित करना है।
1: Ce qu'on attend, c'est que l'élève qui est allé suivre ce programme.
0: हम चाहते हैं कि छात्र खुद सीख कर दूसरों को समझाने में सक्षम हो। रेक्टर को भी नाइस में सिखाए गए मूल्यों की याद दिलानी होगी।
1: On a enseigné dans le nice. Donc on voudrait que ce soit un rippling effect.
0: इस पायलट संस्करण में कई संस्थाएं शामिल हैं और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी है। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा ताकि इसकी प्रगति और संचालन की समीक्षा की जा सके और इसे ज्यादा छात्रों के लिए आगे बढ़ाया जा सके।
2: मॉरिशस को खुद को एक रिसर्च सेंटर यानी कि शोध केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए और इस दिशा में SME अहम भूमिका निभा सकती हैं। ऐसा इंडियन ओशन अफ्रीका कंसोर्टियम के अध्यक्ष भूपेन डुबा का मानना है। उनके मुताबिक अब समय आ गया है कि SMEs को आने वाले बदलावों के लिए तैयार किया जाए। ऐसे व्यवसायों को तेजी से बदलती तकनीक और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की भूमिका के बीच खुद को नई परिस्थितियों के मुताबिक ढालने में सक्षम होना होगा। इसी सोच के तहत इस गुरुवार 17 सितंबर को थ्रोबिश में SMEs प्रिपेयर्डनेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म एंड इकोलिविंग विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मोएशिया अफ्रीका मार्केट प्लेस की भी शुरुआत की जाएगी। कुछ खास प्रकार के ट्यूमर के इलाज के लिए एक नई तकनीक अब मॉरिशस में भी उपलब्ध कराई जा रही है। नैनो नाइफ नामक ये तकनीक कुछ मामलों में पारंपरिक सर्जरी की ज़रूरत को टाल सकती है और फिलहाल नेशनल कैंसर सेंटर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉरिशस मूल के प्रोफेसर एडवर्ड लाम शांगलिन लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर और ब्रिटेन में नैनो नाइफ तकनीक के शुरुआती विशेषज्ञों में से एक हैं। वे अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए इन दिनों मॉरिशस में हैं। इस तकनीक में ट्यूमर के आसपास बेहद पतली सुइयां लगाई जाती हैं, इसके बाद सटीक तरीके से उपचार किया जाता है जिसमें बड़ी चीरे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मरीज के जल्दी ठीक होने में मदद मिल सकती है। सब्जियों पर ठंड का असर और इसका असर उनकी कीमतों पर भी। वस्तुतः पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कृपालू संगुन के मुताबिक दाम में ये बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी है जिसने खेती की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। ठंड, तेज हवाएं और पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो रही है और बाजार में उपलब्ध सब्जियों की मात्रा भी कम हुई है। नतीजन ज़्यादातर सब्जियों की कीमतों में महज 2 हफ्तों में 15-30% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि अक्टूबर के मध्य तक खेतों में सब्जियों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। कृपालू संगुन से बात की रजनी बिकर ने, उनको सुनते हैं।
3: जब ठंडा के मौसम बना ठंडा करता जो पेड़ पौधा वहा हम निकलता वो लोग के भी ठंडा लगला कठुआ गल उनसे भी ना उतना फूल पत्ता नहीं करता था उनसे। इस खातिर हम देखब जा कि आगे चल के अभी 2-3 दिन में जो प्रोजेक्शन बाटे कमती हो गल ऑफिस अभी 15 दिन पहले हुए से ही कमती हो गल बाटे मौसम में जो कारो में भी बाटे खेती में बा जो पेड़ बाके पेड़ के लेगिम बाटे लत्ती के लेगिम बाटे ई कमती हो गल बाटे में जो माटी के तरे के लेगिम बा वो अभी बा जैसे देख बड़ी कागज बाटे ढेर बहुत कागज बाटे मौसम पर अरुई बाटे वियोलेट बाटे आलू बाटे डेरा बा अभी मौसम में जो पेड़ के पौधा पेड़ के लेगिम है जैसे बैगन बा पीमा नामू बाटे या लत्ती के बाटे कदुआ बा करेला बाटे वोहम बाटे आरिको बाटे ये सब थोड़ा महंगा हो गल बाटे ठंडा के कारण। अब जो मौसम अभी चलता अभी हवा हवा ढेर बा हवा करेला तो पत्ता के फाड़ देवेला और फूल के झरा

0: वेला त यी सब के कारण दिग्वजा आज भी थोड़ा कुना बढ़ती हो गल बाटियों का पुई में मेरे सकेला हरी रख सी चाशों एगो 15-20 दिन और चली मैं जिससे साले गति गति कौतर हो अब अक्टूबर में तो वो सब हुई वन लेगी मन फिर उससे नॉर्मल हो जाए ने आगे चल के दो तीन महीना के बाद में जिससे बाहर भी बोले कि पस की लासेस खेज में जे हलब सा और जिससे रही पानी नहीं बची तब भी कुछ सब प्रॉब्लम रही मैं अभी से 15 दिन ले पीवा तनी प्लीज उमे ऐसी ही नहीं तनी मांगा रही मेकर बाद में प्लीज उमे नॉर्मल हो जाए जिससे तनी सालिया मोटर हुई था
1: विदेशी स्तर पर अमेरिका में ब्याज दरों में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में दरों में आगे भी इजाफा किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की मांग की थी। और ये भी खबर में आज 17 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वे अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई बीजेपी द्वारा कई सेवा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। अवसर पर शुरू होने वाला है सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा ये। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण और जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मौसम का हाल। मॉरिशस के लिए ऊंची लहर की चेतावनी जारी है जो कि आज दिन के 10 बजे तक के लिए लागू है। दूसरी तरफ मस्करिन्स के दक्षिण पूर्व में स्थित एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवा पाई जा रही है और इन हवाओं से जुड़े बादल रह कर हमारे मौसम को प्रभावित कर रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त और दिन के दौरान भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे जो रह कर घने हो जाएंगे और जहां तहां बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं ऊंचाइयों पर। सुबह के वक्त कुछ इलाकों में कभी कभी मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। आज रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटो पर जहां तहां बारिश होने की उम्मीद है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 22 और अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिसकी झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती हैं। समंदर बहुत खराब रहेगा। प्रवाह रेखा से परे दक्षिण पश्चिम में लहरें 4 मीटर तक उठ सकती हैं और उच्च ज्वार के समय निचले इलाकों में, खासकर पश्चिम और दक्षिण में तटों पर बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऐसे में मछुआरों, मनोरंजन नौकाओं और आम जनता से जोरदार अपील की जाती है कि समंदर में न जाए और उच्च ज्वार के समय इन तटों से भी दूर रहे। और आज सूर्योदय हुआ 6:04 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:04 पर ही।

खबरों के अंत पर सुर्खियां अखबार फिर से। एक बयान में बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कही जिनके अनुसार कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद पर अपने वकील को बदलने के लिए दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की है। मॉरिशस एरोरिक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे। कुल आबादी के अनुपात में देखें तो ये संख्या लगभग हर 5 लोगों में से एक व्यक्ति के बराबर। कुछ खास

0: प्रकार के ट्यूमर के इलाज के लिए एक नई तकनीक नैनो नाइफ नेशनल कैंसर सेंटर में उपलब्ध कराई जा रही है। सब्जियों पर ठंड का असर और इसका असर कीमतों पर भी पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज़्यादा दाम चुकाने पर है। विदेश में अमेरिका में ब्याज दरों में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में दरों में आगे भी इजाफा किया जा सकता। तो अभी के लिए खबरों में इतना ही, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: रूट रॉयल मेबर्ग में 59 साल की 59-year-old श्री देवराज वेंकिया जो राजेश से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पिंकी वेंकिया के मकान रॉयल रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट मुकीज की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। गांधी रोड मोरालबेयर में 71 साल की 71-year-old कुमारी राजमुनी गुमानी जो कुमारी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान गांधी रोड मोरालबेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। क्वींसलैंड मोंटाय ब्लांश में 67 साल की 67-year-old बीबी फातमा अजीर पैदाइश नाम नूथू जो फातमा से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 12:30 इनके बेटे मोहम्मद रेजा अजीर के मकान क्वींसलैंड मोंटाय ब्लांश से निकालकर दफनाने के लिए मोंटाय ब्लांश का ही कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30। मुस्के गली घिश्मा फ्लाक में 96 साल की 96-year-old बीबी आयसा नुजिया पैदाइश नाम दरोगा जो आयसू से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10:30 इनके बेटे नुरेशा नुजिया के मकान मुस्के गली घिश्मा फ्लाक से निकाल कर दफनाने के लिए घिश्माओ का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। एपस सिप्रे पायुत में 84 साल की 84-year-old श्रीमती मंगलावती रामबुरन पैदाइश नाम भोईरू जो मंगलावती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 इनके बेटे हेमचंद रामबुरन के मकान एपासिफे 3 पायुत से उठाकर दाह संस्कार के लिए सुल्फेरिनो बालांस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेथ 1 PM। शेक्सपियर गली फोंजुसाक में 77 साल की 77-year-old श्रीमती वसंती भोगीरथी पैदाइश नाम अनन जो ज्ञानती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:00 इनके बेटे सूरज भोगीरथी के मकान शेक्सपियर गली फोंजुसाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए तयमिनी स्त्रियोली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोसेलमो पिरन वाकुआ में 84 साल के 84-year-old श्री बासदेव बिलू जो सुरेश से जाने जाते थे और ये पहले हेडमास्टर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 इनके मकान नंबर 14 रुत निकोलसन मोसेलमो पिरन वाकुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। परमिशन टू डी आथ

almost 11 a.m. Railroad Saint-Julien-d'Outremont Kiasi Sal K81 year old Shri Gopal Sami Somadu, Shri Gopal Sami Somadu, जो मामे सिंगाहों से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती निर्मला सुमाडू के मकान ओटवायाल सेंट जूलियन डुटमोंट से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कॉडेमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। स्कॉटलैंड रिविया डे क्रियोल में 67 साल की 67 year old श्री प्यारे लाल कुपन जो अजय से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 इनके मकान स्कॉटलैंड रिविया डे क्रियोल से उठाकर दाह संस्कार के लिए टोंबो मेबर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रूट 15 रूट रॉयल प्रोविडेंस में 87 साल की 87 year old जनाब हरुण सुधू जो बाय हरुण से जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। जनाजा जिदिन के 11 बजे इनके बेटे बशीर सुधू के मकान रुतकैंस रुत रॉयल प्रोविडेंस से निकाल कर दफनाने के लिए आलमा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। एवेन्यू डी रोश रुत बासें कथोबोन में 44 साल की 44 year old श्री गणेश गुहिराम जो खिशान से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती बबीता गुहिराम के मकान एवेन्यू डी रोश रुत बासें कथोबोन से उठा के दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा काठोबोन की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड बोबासे में 80 साल की 80 year old श्रीमती राजवंती हरुआ पैदाइशी नाम भगवान सिंह जो राजवंती से जानी जाती थी और ये पहले डॉक्टर फेरिया स्ट्रीट ट्रेफ्लोरोजिल रहती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 1:30 ला शापेल एलियंसन्स खुद वायाल बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। तमिल टेम्पल रोड क्लेमेंशिया में 46 साल की 46 year old श्रीमती सुचिता मूर्ति पैदाइश नाम गोपाल सिंह जो मीनाक्षी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे के मकान तमिल टेम्पल रोड क्लेमेंशिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुदोडुस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। एमिली स्ट्रीट सेंटिलियर में 87 साल की 87 year old श्रीमती चुरामन लोहर पैदाइशी नाम दुखी जो मैडम जयराम से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 11 बजे के बेटे अजय लोहर के मकान एमिली स्ट्रीट सेंटिलियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंटिलियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। अटलास रोड गुडलैंड्स में 72 साल की 72 year old श्रीमती राजकुमारी बुंडा पैदाइशी नाम गोकुल जो अनीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे दिनेश बुंडा के मकान अटलास रोड गुडलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआहूश की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। और जानकी स्ट्रीट गोशनवा में 42 साल के 42 year old श्री धूसन रिडोई जो जाकी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है आज दिन के 11:30 इनके पिता श्री धर्मवीर रिडोई के मकान जानकी स्ट्रीट गोशनवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए गोशनवा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी

0: गहरी सहानुभूति।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। लुट गया मैनचेस्टर यूनाइटेड, प्रीमियर लीग हो या लीग कप, ओल्ड ट्रैफर्ड में एक के बाद एक सब लूट रहे हैं द रेड डेविल्स को। ओल्ड ट्रैफर्ड में अंधकार, ब्राइटन ने आकर यूनाइटेड की धज्जियां उड़ाई, बत्तियां बुझाई। इस बार कोई बहाना नहीं, 2-0 से आगे थी कागिक की टीम, लेकिन ब्राइटन ने टन टनाटन 3 गोल स्कोर करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को कागाबाओ लीग कप से बाहर फेंका। पहले 10 मिनट में शे लेसी और मेसन माउंट का एक एक गोल, 2-0 से यूनाइटेड आगे। पर यहां से लगा द रेड डेविल्स नींद में चल रहे थे, स्लीप वॉकिंग। हाफ टाइम से पहले शागलाम्पुस कोस्टुलास का एक गोल, फिर सेकंड हाफ में 4 मिनटों के अंदर अंदर 2 गोल। ओल्ड ट्रैफर्ड में सन्नाटा, क्यों ना हो, ऐसा पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-0 से आगे होकर मैच हार जाए। फुल टाइम की सीटी बजी तो यूनाइटेड के फैंस अपनी नाराजगी दिखाने के लिए अपनी टीम को फटकारने लगे, बूज ऑल अराउंड, यहां तक कि गालियां भी गाने लगे। ब्राइटन के लिए सब ब्राइट चल रहा है, ओल्ड ट्रैफर्ड में आकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराना, इससे बेहतर, इससे ब्राइट और क्या हो सकता है। माइकल कारिक गरम तेल में संभलना होगा जल्दी, कहीं भजिया न बन जाए। अन्य मैचों में एवर्टन 1 वुल्वरहैम्पटन वंडरर्स 0, इसमें चौली अल्कारास का गोल रहा सेकंड हाफ में। कोवेंट्री 1 अस्टन विला 3, अब्राहम का डबल, एक गोल बार्कले का। फ्लीटवुड टाउन 1 शेफील्ड यूनाइटेड 0। आज मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला नॉर्विच सिटी से है। अगले राउंड के ड्रॉ भी निकाले गए लिवरपूल के लिए, एक और लंदन की मोटी हड्डी। इस बार लिवरपूल चेल्सी का स्वागत करेगा, फिर फ्लीटवुड वर्सेस आर्सेनल, एवर्टन का मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से, सन्डरलैंड ब्रेटफोर्ड, ब्रैटफोर्ड पीटरबरो, फुलहम क्रिस्टल पैलेस, बोर्नमुथ एस्टन विला, मैनचेस्टर सिटी नॉर्विच सिटी और ब्राइटन, यानी मैनचेस्टर सिटी नॉर्विच सिटी में जिसकी भी जीत होगी उसका मुकाबला ब्राइटन से है। बाजार में कच्ची ताजी मूंगफलियां नहीं मिल रही हैं, पैकेट वाले से काम ही निकालना पड़ेगा। यूईएफए यूरोपा लीग के लीग स्टेज में एसी मिलान अपने मैदान में 2-0 से हार गया बेनफिका के खिलाफ। एसी मिलान 0 बेनफिका 2, अंडेलेक 1 ओलंपिक लियो 2। सन्डरलैंड की जीत, एजेड अल्कमार को 1-0 से हराया। स्टुमक्रास 0 रेन 0, ओलंपियाकोस 2 यागेलोनिया 1, अपोएल बेर्शेवा 0 डिनामो जागरेब 0, बायर लेवरकुसेन 2 सेलिए 0, ओमोनिया निकोसिया 1 सेल्टा विगो 0 और स्पार्टा प्राग ने अरारात आर्मेनिया को 4-1 से हराया। आज के प्रमुख मैच लेवस्की सोफिया रेडबुल साल्सबर्ग, बेसिक्तास मार्सेई, सेल्टिक फेरेनबारोस, क्रिस्टल पैलेस लेच पोजनन, यूवेंटुस खेलेगा एनईसी निगमेगन टीम के खिलाफ, रियल सोसिएदाद बोर्नमुथ। स्पेन के ला लीगा में बार्सिलोना सबको कुचल मचल रहा है। इस बार रेसिंग सांतांडर पर 7 गोल बरसे, बार्सिलोना 7 रेसिंग सांतांडर 2। राफिना का हैट्रिक, लामिन यामाल, गैब्रियल जेसस, योआओ कांसेलो भी गोल फिएस्टा में डूबकी लगा पाए, एक ऑन गोल रहा। एटलेटिको मैड्रिड 4 ओसासुना 0, डेपोर्टिवो 0 एफसी सेविला 0, लेवेंटे एथलेटिक क्लब वाला मैच पोस्टपोन कर दिया गया। आज रियल बेटिस का मुकाबला रेताफे से, मालागा खेलेगा विलारियल के खिलाफ। क्रिकेट फ्रेंडशिप ट्रॉफी भारतीय टीम जीत गई है पहले से, पर आज अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा दिल्ली में। एयर बैडमिंटन अफ्रीकन चैंपियनशिप में मॉरिशस की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, पहले मैच में हार हुई थी बुर्किना फासो के खिलाफ, पर दूसरे मैच में हमारे जवानों ने युगांडा को हराया और क्वार्टर फाइनल में गए। अगला मैच वांडा के खिलाफ होगा। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर फिर से बता दें। मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से बदनाम हुआ, इस बार वाव का बहाना नहीं, 2-0 से जीतते हुए 3-2 से हारना, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 50 सालों में। बहाना बनाना सब हो गलबा पुराना,

nu travail, nu l'avenir. Tohar khatir, Ministry of Labour and Industrial Relations aur MBC ke milal julal sahyog se pesh karal jadba. Agriculture ke sektya mein Paramount Contracting Enterprises Limited, jun Nehru Road Thwabuchik Union Vale mein pavel jala, khojat hawan ego agricultural laboria, jekar CPE karle hawan, और 6 महीना के लेक्स पेयंस बाते एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिए 57 51 19 95 और नहीं तो अपन सीवी विदा करिए paramountcon.ent.ltd@gmail.com पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख है 20 सितंबर 2026. कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में किंग्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जिलेताद रोड मुफियाचिल रोजबेल में पावल जाला एगो हैवी लॉरी ड्राइवर जेकर 3 बरिस के लेक्स पे यौंस बाते खोजा थवन एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिए 57 73 46 आरी नेतर 57 70 09. अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 22 सितंबर 2026. कॉन्ट्रैक्टिंग के सेक्टर में जेनिथ कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड जे रॉयल रोड लाहौजा में पावल जाला खोजत हवन एगो कॉर्पेंटर मासों स्टील फिक्सर एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिए 57 50 87 31. अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 24 सितंबर 2026. मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मेटलाइट कंपनी लिमिटेड जे लॉट 11 रोजबेल बिजनेस पार्क ग्रोबियो न्यू ग्रोव में पावल जाला खोजत हवन एगो हेल्पर एगो वेल्डर जेकर एनसी लेवल 3 और 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाते एगो टर्नर जेकर एनसी लेवल 3 कर ले हवन और 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाते एगो ड्रॉट्समैन जेकर डिप्लोमा और 2 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाटे एगो स्टोर कीपर जे एससी और नहीं तो एचएससी कर ले होवन और 2 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाटे एगो स्टोर मैनेजर जे डिप्लोमा कर ले होवन और 5 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिए 64 334 59 40 02 01 पर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में क्वालिटी टी एलटी जे B28 शमे कोऑपरेटिव ला फ्लोरा में पावल जाला ग्रेड 2 कॉर्पेंटर खोजत हवन जेकर 2 बरिस के लेक्स पे यौंस बा एप्लीकेशन भेजे खातिर कॉल करिए 52 52 61 41 पर अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026. टेक्सटाइल के सेक्टर में शहनाज खान क्लॉथिंग लिमिटेड जे पोप एनएससी स्ट्रीट बुबासे में पावल जाला खोजत हवन मैकेनिस्ट जेकर 6 महीना के लेक्स पे यौंस बा और टेक्सटाइल हेल्पर जेकर 6 महीना के लिए एक्सपीरियंस बाते एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिए 58 42 77 12. अर्जी भेज

हफ्ते के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। एविएशन एंड लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में जेनेसिस ग्रुप जे फर्स्ट फ्लोर एयर कार्गो हाउस ओल्ड एयरपोर्ट रोड प्लेनमायो में पावल जाला खुजा थवन कस्टमर सर्विस असिस्टेंट जिकर एक्सपीरियंस बा कस्टमर सर्विस में फ्रेट लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर जिकर डिप्लोमा बा लॉजिस्टिक औरी सप्लाई चेन में औरी लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट जिकर एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मैनुअल बाते एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी बिदा करियो hr@genesis.co.com पर। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। रिटेल के सेक्टर में बीना फिश लिमिटेड जे रॉयल रोड गांगोब में पावल जाता खोजत हवन एगो फिश क्लीनर एप्लीकेशन करे खातिर कॉल करिया सेकंड सिथ स्वासन जी सिथ। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। रिटेल के सेक्टर में वूलवर्थ्स मॉरिशस लिमिटेड जे द क्यूबिकल लॉट नंबर 1 रॉयल रोड फिनिक्स में पावल जाला खोजत हवन शॉप असिस्टेंट जे फोम काट कर ले हवन और स्टोर एडमिनिस्ट्रेटर जे HSC कर ले हवन। एप्लीकेशन करे खातिर अपन CV बिदा करिया HR@administratormauritius@woolworths.co.za पर। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में शेलवान फर्नीचर लिमिटेड जे गुस्ताव कोलिन स्ट्रीट फर्स्ट साइड के पिप में पावल जाला खोजत हवन वॉनिशा जेकर एक बरिस के लेक्सपेयंस बाती एप्लीकेशन भेजे खातिन अपन CV बिदा करिया projectleader@shelvanfurniture.mu पर। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 7 अक्टूबर 2026। पैरास्टेटल के सेक्टर में स्पेशल एजुकेशन नीड्स अथॉरिटी जे साइबर टावर 2 बी फ्लो ए बैन में पावल जाला खोजत हवन स्पीच थेरेपिस्ट कंसल्टेंट्स। एप्लीकेशन भेजे खातिन टेलीफोने करिया 460 30 15। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 23 सितंबर 2026। सेक्टर पब्लिक में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजत हवन एगो कम्युनिटी फिजिशियन एप्लीकेशन करे खातिन अपन CV बिदा करिया https://psc.gov.mu.org/। अंतिम तारीख है 28 सितंबर 2026। पब्लिक सेक्टर में म्यूनिसिपल टाउन काउंसिल ऑफ बोबासें रोजिल खोजत हवन एगो हैवी मैकेनिकल यूनिट ड्राइवर एप्लीकेशन करे खातिन अपन CV बिदा करिया https://lgsc.gov.mu.org/ पर। अर्जी भेजे के अंतिम तारीख है 22 सितंबर 2026। प्राइवेट हाउसहोल्ड सेक्टर में प्लेनमायो में एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉई के जरूरत बा एप्लीकेशन करे खातिन कॉल करिया माइबू EIC 631 95 18 पर और नहीं तो 630
04

4701 पर। प्राइवेट हाउसहोल्ड सेक्टर में ही रिवेजो होंपो में एगो हाउस मेड के जरूरत बा। एप्लीकेशन भेजे खातिन कॉल करिए रिवेजो होंपो ईआईसी 412-69-25 पर। प्राइवेट हाउसहोल्ड के ही सेक्टर में हाउसहोल्ड एम्प्लॉई और गार्डनर के जरूरत बा गुडलैंड्स में। एप्लीकेशन भेजे खातिन कॉल करिए गुडलैंड्स ईआईसी 282-59-17 पर। तो ई रहल नू ट्रावाई नू लाविनिया तोहर खातिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल रहल।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 7:17 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। तो चलिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले बेलिया के रहने वाले निवासियों को, जिनमें हैं पिछली शुमे क्रेंसी रोड, रुतवाल MCB के आसपास, शुमे गाराज और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 17 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है क्रिवियानुआ के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मौसलमा गामदेनी, गुरुवार 17 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच, विलमोआ और पिछबिलिया के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रेजिडेंस विलनुआ, मौसलमा VOS विलनुआ, मौसलमा रुजो डेलिस विलनुआ, मौसलमा ब्लू प्रिंट विलनुआ और NHDC पिछबिलिया के रहने वाले निवासियों को शुक्रवार 18 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच, शेबेल के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रेजिडेंस शेबेक, सेंट म्युनिसिपल सागायतन जुवाल, रेजिडेंस लोटस, WMA शेबेक और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 17 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से और कार्यों की समाप्ति पर बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो छोटा हुआ, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

चलिए श्रोता आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। गुरुवार का दिन है आज, सुबह सवेरे से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी तक आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके फ़ोन कॉल्स, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए भी। आज गुरुवार 17 सितंबर 2026 है और सुबह का नजरा कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। ये सफ़र जो है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक चलने वाला है और आपके लाए है एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, और आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो, हमारी यही कामना है। तो चलिए शुभ विचारों के साथ इस हिंदुस्तानी सभा को हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए डॉक्टर जमन जी।

0: की प्रस्तुति में सुनते हैं चिंतन।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जिस मनुष्य की अपनी प्रज्ञा ना हो उसके लिए शास्त्र बेकार है। जैसे दोनों आँखों से रहित अंधे मनुष्य के लिए दर्पण व्यर्थ है।

0: झलकियां
1: झलकियां तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चलिए हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह का नजाना कार्यक्रम आपके लिए हम चला रहे हैं। इसके बाद 8 बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जाएंगे, समाचारों के उस पार चंद डुएट्स गाने। सुबह का नजाना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे 8:50 पर हमारे धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में। 9 बजे फिर से समाचार पढ़े जाएंगे और इसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम होने वाला है और 11 बजे समाचारों के बाद आप उर्दू कार्यक्रम साइदा के साथ सुन पाएंगे। दिन के 12 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरिशानी के साथ, तमिल भाषा में कार्यक्रम आज से लेकर आएगी 12:30 बजे। 1:30 बजे आपके लिए विविधा कार्यक्रम मराठी भाषा में और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी प्रीति। दोपहर के 2 बजे आप मंडारिन में कार्यक्रम सुन सकेंगे जीन के साथ गुजराती कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अमिता के साथ 2:30 बजे। 2:45 पर आपके लिए सुमिता के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम। दोपहर के 3 बजे समाचार पढ़े जाएंगे और इसके बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। भक्ति सागर कार्यक्रम शाम के 4 बजे सुमिता के साथ, 5 बजे सदाबहार गीत सुमिता के साथ और 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे। इसके बाद चंद फिल्में गाने। 6:30 बजे मंडारिन में कार्यक्रम दावीद के साथ, 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम युवारासन लेकर आएगी। जी हाँ, युवारासन के साथ ये कार्यक्रम रात्रि के 7 बजे। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वर्षा के साथ गीत गंगा, ये कार्यक्रम होने वाला है रात्रि के 7:50 पर और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले है शिरीष। भजले प्रभु का नाम 8:10 पर, ये कार्यक्रम देविना के साथ। महफिल शब 8:40 पर आप ये कार्यक्रम समीर के साथ सुन पाएंगे। रात के 9 बजे आप भोजपुरी तड़का, ये कार्यक्रम किरण की प्रस्तुति में। सुनहरे पल चंद पुराने गाने गिनिशा के साथ आप सुन पाएंगे और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आपके लिए चंद प्यारे प्यारे गाने।
0: झलकियां
1: झलकियां

वैसे श्रोताओं, बचपन की यादें भी कमाल की होती है। बचपन की यादें आती हैं तो चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक मीठी सी हलचल हो जाती है। वक्त गुजर जाता है, उम्र बढ़ जाती है, पर बचपन की मिठास हमेशा दिल में रह जाती है। और वो मिट्टी की जो खुशबू है और दोस्तों का साथ याद आता है। सच तो ये है कि बचपन लौट कर नहीं आता, मगर उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। यह है सुबह का नज़राना कार्यक्रम, आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं श्रोताओं। तो चलिए, गीतों का एक खूबसूरत सफ़र, इसे हम आगे बढ़ाएंगे।

0: श्रोताओं, जिंदगी का हर पल जी हाँ श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिंदगी का हर पल अपने आप में एक खूबसूरत कहानी है। कभी हंसी का पल, कभी यादों का पल, कभी अपनों के साथ बिताया हुआ पल। इसलिए हर पल को दिल से जिए, क्योंकि जिंदगी का असली मज़ा इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपा हुआ है। 7:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। सुबह का नजराना कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रहे हैं, तो चलिए गीतों का ये सुहाना सफर आपके लिए।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

पिछली श्रोताओ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद प्यारे प्यारे पुराने गाने आपके नाम हम कर रहे हैं और ये बहुत ही प्यारा सा गीत है। इस समय आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तीन देवियाँ और ये प्यारा सा गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। सुबह का नजाना कार्यक्रम को हम जारी रख

ते वाले हैं श्रोताओं, सुबह के 8 बजे तक और 8 बजते ही आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे और समाचारों के उस पार सुबह का नजराना को हम जारी रखेंगे चंद वेस्ट गानों के साथ। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत ही खूबसूरत संगीत आपके नाम रेजू मॉरिशस पे।

श्रोताओं, जब हम ख्वाब के बारे में बात करते हैं, हकीकत के बारे में बात करते हैं, तो हर एक ख्वाब की अपनी एक दुनिया होती है और हर हकीकत का अपना एक सबक। ख्वाब हमें उड़ना सिखाते हैं तो हकीकत हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 8 बजे बा पेश बा भोजपुरी समाचार। सबको के नमस्ते। मॉरिशस में हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि HSC की परीक्षा आज से शुरू हुआ था। ये बरिस 8,000 से जस्ती उम्मीदवार HSC के परीक्षा में भाग लियन सा। आज छात्र लोग फूड स्टडीज के परीक्षा दियन जा। परीक्षा के ये दौर विद्यार्थी खातिर बेहद अहम रहेला, कहे कि HSC के नतीजा आगे की उच्च शिक्षा और कैरियर की दिशा तय करे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। कई महीना की तैयारी के बाद अब विद्यार्थी के सामने अपन मेहनत के परीक्षा हॉल में साबित करे की चुनौती है। प्रवीण जगन्नाथ आज दिन के 10:50 लाइन बाराक्स जयन पूर्व प्रधानमंत्री के CCID देने से चल रहल मुस्तासलीक्स मामला के जांच के सिलसिला में फिर से पूछताछ खातिर बुलावल गलबा। प्रवीण जगन्नाथ से कर से अगते 1 सितंबर के करीब 2 घंटा तक पूछताछ करल गल रहल। ये जांच कथित तौर पर संचार के इंटरसेप्ट करे खातिर इस्तेमाल करल जाए हुला उपकरण की खरीद और उनकर संभावित इस्तेमाल से जुड़ल बा। जांचकर्ता ई पता लगाए की कोशिश करत हवन जा कि उपकरण की खरीद के मंजूरी के दे ले रहल और एकरा को

उद्देश्य से इस्तेमाल करल जाए के रहल। ये मामला अक्टूबर 2024 से सामने आल कई गो ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद चर्चा में आल रहल। ये रिकॉर्डिंग के अलग अलग प्रमुख व्यक्ति के बीच कथित टेलीफोन बातचीत के रूप में पेश करल गया रहल। मॉरिशस बॉ काउंसिल गुलशन गोविंद के वकील रूबेन मोहंगा पिले देने से कई गो शिकायत के बाद प्रतिक्रिया देने बाते गो बयान में बॉ काउंसिल वो आरोप के गंभीरता से ले के बात कहलेबा जेकर अनुसार कुछ पुलिस अधिकारी गुलशन गोविंद पर अपन वकील के बदले खातिर दबाव डाले के या फिर उनकरा प्रभावित करे के कोशिश कर लेबा। बॉ काउंसिल के सचिव यतिन वर्मा के अनुसार यदि ये आरोप सही पाल जाए तो मामला के जांच शुरू करे के चाहिए जिमें घटना के वास्तविक परिस्थिति और संबंधित पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी तय करल जाए सकी। उबलन के यदि आरोप साबित हो तो पुलिस कमिश्नर के आवश्यक कार्रवाई और उचित प्रतिबंधात्मक कदम उठाए के चाहिए। यतिन वर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो के भी उल्लेख करलन जेकर में रूबेन मोहंगा पीले के निशाना बनावल गलबा। उनकर अनुसार इसंभव है कि इपोस के वकील के उनकर पेशेवर कार्य के दौरान अस्थिर या दबाव में डाले के उद्देश्य से प्रायोजित करल गलबा। गौरतलब है कि वकील रूबेन मोहंगा पीले गुलशन गोविंद के प्रतिनिधित्व करत हवन। ये जांच लागिनियों और मॉरिशस के बीच कथित तौर पर 155.7 किलो गांजा आयात करल जाए के मामला से जुड़ल बाती। मॉरिशस रोड्रिक्स में फिलहाल 2,73,000 से जस्ती लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त करे लंजा आम करल गल। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के हालिया रिपोर्ट में कर जानकारी देवल गल बा। इकर में 5,300 से जस्ती लोग 90 बरिस या ओकर से जस्ती उम्र के हवन जा, जबकि इकर में 242 लोग ऐसे हवन जा जे लोग के उम्र 100 बरिस से जस्ती बाते। रिपोर्ट में अंशदायी पेंशन योजना के लाभार्थी के संगे संगे विभिन्न सामाजिक भत्ता पाए होला लोगन के आंकड़ा भी शामिल बाते। ये आंकड़ा ऐसा समय सामने आल बा जब मॉरिशस में जल ही स्टेट एज पेंशन व्यवस्था के ओर बदलाव हुई। और ये खबर में आगे 13 बरिस के बाद नेशनल इनिशिएटिव सिविक एजुकेशन नाइस के वापसी होल बा। ये पायलट परियोजना खातिर ग्रेड 8 के 200 लयका 2 सप्ताह खातिर कई गो विषय के बारे में सीखन जा अनुशासन सेवा भाव जिम्मेदारी और सह अस्तित्व के बारे में। बाद में ये प्रोग्राम दूसर नौजवान खातिर भी चलावल जाए। मॉरिशस खुद के गो रिसर्च सेंटर यानी कि शोध केंद्र के रूप में स्थापित करे खोजता। यही दिशा में SMEs अहम भूमिका निभावे सकी। इंडियन ओशन अफ्रीका कंसोर्टियम के अध्यक्ष भूपेन डुबा ई मानेलन। उनकर मुताबिक अब समय आगल बा कि SMEs के आय होला बदलाव खातिर तैयार रहे के चाहिए। ऐसे व्यवसाय की तेजी से बदलते तकनीक और हमने के रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भूमिका के बीच खुद के नवा परिस्थिति के मुताबिक ढालने में सक्षम हो के परी। यही सोच के तहत आज 17 सितंबर के थोबिश में SMEs प्रिपेयरनेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म एंड इको लिविंग विषय पर एगो सम्मेलन आयोजित करल जाबा। कुछ खास प्रकार के चूमर के इलाज खातिर एगो नवा तकनीक अब मॉरिशस में उपलब्ध करावल जाबा। नानो नाइफ नामक ई तकनीक कुछ मामला में पारंपरिक सर्जरी के जरूरत की टाली सकी और फिलहाल नेशनल कैंसर सेंटर में एक इस्तेमाल करल जाबा। मॉरिशन मूल के प्रोफेसर एडवर्ड लाम शांगलिन लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर और ब्रिटेन में नानो नाइफ तकनीक के शुरुआती विशेषज्ञ में से एगो हवन। वो अपन अनुभव और विशेषज्ञता के साझा करे खातिर आजकल मॉरिशस में हवन। इस तकनीक में चूमर के आसपास बेहद पतली सुई लगावल जाला। एक बात सटीक तरीका से उपचार करल जाला जिकर में बड़ा चेरा लगाए के आवश्यकता नहीं पड़ेला और मरीज के जल्दी ही ठीक होई में मदद मिल सके।

0: गल कुछ दिन से उपभोक्ता के बाजार से लेके सुपरमार्केट तक सब्जी खातिर जस्ती कीमत चुकाए के पड़ता। स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कृपालु संगुन के मुताबिक कीमत में इबर होतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जुड़ल बा, जिनकी खेती के परिस्थिति के प्रभावित कर दे बा। ठंड, तेज हवा और पानी की कमी के कारण पौधा की वृद्धि गति गति होता और बाजार में उपलब्ध सब्जी की मात्रा भी कमती हो बा। नतीजन जस्ती सब्जी की कीमत में महज दो हफ्ता में 15 से 30% तक के बढ़ोतरी हो बाती। हालांकि स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन उपभोक्ता के भरोसा दिलैले बा कि अक्टूबर के मध्य तक खेत में सब्जी की पर्याप्त उपलब्धता बनल रही। और विदेश में अमेरिका में ब्याज दर में 3 बरिस से जस्ती समय बाद पहला हला बढ़ोतरी करल गल बा। बढ़ल महंगाई पर काबू पाए की कोशिश में दर में आगे भी बढ़ोतरी हो सकी। हालांकि फैसला के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करा विरोध कर ले रहन, उ ब्याज दर में कटौती की मांग कर ले रहन। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल, धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुना जा। जानकी गली घोषणा में 42 बरिस के कहुंदीजों के श्री धूसन रिदोई जिनकरा लोग जाकी से जानत रलें जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन की 11:00 कर पिता धर्मवीर रिदोई के मकान जानकी गली घोषणा से उठा के दाह संस्कार खातिर घोषणा के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। अतलास रोड गुडलैंड में 72 बरिस के स्वासंदूजों के श्रीमती राजकुमारी बुंदा पैराशी नाम गोखुल जिनका रालोग अनीता से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलवा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर बेटा दिनेश बुंदा के मकान अतलास गली गुडलैंड से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआगोज के स्मशान भूमि ले जाल जाए। एमिली गली सैचलिया में 87 बरिस के 87 के श्रीमती चुरामन लोहर पैदाइश नाम दुखी जिनकरा लोग मैडम जयराम से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर बेटा अजय लोहर के मकान एमिली स्ट्रीट सैचलिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैंसिलिया के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। तमिल टेम्पल रोड क्लेमेंसिया में 46 बरिस के काहनसीजों के श्रीमती सुचिता मोती पैदाइश नाम गोपाल सिंह जिनकरा लोग मीनाक्षी से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर मकान तमिल टेम्पल रोड क्लेमेंसिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खुदोदूस के शमशान भूमि ले जाल जाए। डॉक्टर फेयर स्ट्रीट थ्रेफ्लोरस हिल में 80 बरिस के काथोवैजों के श्रीमती राजवंती हरुआ पैदाइशी नाम भगवान सिंह जिनकरा लोग राजवंती से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1:30 लाशापेल एलियंसन्स गुटवायाल बोबासें से उठा के दाह संस्कार खातिर पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। अविनी दे रोज बासें कथबोन में 44 बरिस के काहन कथों के श्री गणेश गुहीराम जिनकरा लोग कृष्ण से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2 बजे कर पत्नी श्रीमती बबीता गुहिराम के मकान आविनी दे रोश रोडबासें कथबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा कथबोन के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। गुटकैंज गुटवायाल प्रोविडेंस में 87 बरिस के कथवैसेतों के श्री हरुण सुधू जिनकरा लोग बाय आहुन से जानत रलंजा इंतकाल कर गल हवन। जनाजा आज दिन के 11 बजे कर बेटा बशीर सुधू के मकान गुटकैंज गुटवायाल प्रोविडेंस से

0: उठा के अंतिम संस्कार खातिर दफनावे खातिर आलमा के कब्रिस्तान जाल जाए। स्कूलेन रिविया डी क्रियोल में 67 बरिस के श्वासन सेताओं के श्री प्यारी लाल कुपन, श्री प्यारी लाल कुपन जिनका लोग अजय से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बाते। अर्थी आज दिन के 10 बज के आधान कर मकान स्कूल लेन रिविया डी क्रियोल से उठा के दाह संस्कार खाते तो बो में बर के शमशान भूमि ले चल जाए। रोट रॉयल सेंट जूलियन डेटमो में 81 बरिस के 89 के श्री गोपाल स्वामी सोमादू, श्री गोपाल स्वामी सोमादू जिनका लोग मामे सिंगाहों से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज सांझ के 3 बजे इनकर पत्नी श्रीमती निर्मला सोमादू के मकान रोट रॉयल सेंट जूलियन डेटमो से उठा के दाह संस्कार खातिर मिजिन कौरे मास्क के शमशान भूमि ले जाए जाए। नंबर 14 रुत निकोलसन मोसेलमो पिगन वाकुआ में 84 बरिस के 94 के श्रीवास देव बिलू, श्रीवास देव बिलू जिनका लोग सुदेश एक्स हेडमास्टर से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 11 बज के आधा इनकर मकान नंबर 14 रुत निकोलसन मोसेलमो पिगन वाकुआ से उठा के दाह संस्कार खाते सोल्फेरिनो के शमशान भूमि ले जाल जाए। शेक्सपियर गली फोजिसाक में 77 बरिस के श्वसन जिसेताओं के श्रीमती वसंती भोगीरथी, श्रीमती वसंती भोगीरथी पैदाश नाम आनंद जिनका लोग गायत्री से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे कर बेटा सूरज भोगीरथी के मकान शेक्सपियर गली फोजिसाक से उठा के दाह संस्कार खातिर तेमिनिस खियोले के शमशान भूमि ले जल जाए। ए पास से सिपखे नंबर 3 पायुत में 84 बरिस के 94 के श्रीमती मंगलावती रामबोरन, श्रीमती मंगलावती रामबोरन पैदाशिना भैरू जिनका लोग मंगलावती से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बज के आधान कर बेटा श्री हेमचंद रामबोरन के मकान ए पासिप्रे नंबर 3 पायुत से उठा के दाह संस्कार खाते सोल्फेरिनो बालांस के शमशान भूमि ले जाल जाए। उसके गली रिचमो फ्लाक में 96 बरिस के 96 के बीबी आई सानुजिया, बीबी आई सानुजिया पैदाइश नाम दरोगा जिनका लोग आईसू से जाना तरलंजा इंतकाल कर गल हवन। जनाजा आज दिन के 10 बज के आधान कर बेटा नूरेशन नोजिया के मकान मुस्के गली ग्रीष्मो फ्लाक से निकाल के दफनावे खातिर ग्रीष्मो के कब्रिस्तान ले जाओल जाए। क्वींसलैंड मोटाइन ब्लाउंस में 67 बरिस के श्वसन सेतों के बीबी फातमा अजीर, बीबी फातमा अजीर पैदाश नाम नुथू जिनका लोग फातमा से जाना तरलंजा इंतकाल कर गल हवन। जनाजा आज दिन के 12 बज के आधा इनकर बेटा मोहम्मद रेजा आजमी आजियर के मकान क्वींसलैंड मोटाई ब्लांश से निकाल के दफनावे खातिर मोटाई ब्लांश के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। गांधी रोड मौरालबेया में 71 बजिस के श्वासों के श्रीमती बल्कि कुमारी राजमुनी गुमानी, कुमारी राजमुनी गुमानी जिनका लोग कुमारी से जाने तरलंजा इंतकाल कर गल हमन। जराजा आज दिन के 2 बजे इनकर मकान गांधी रोड मौ डाल बया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लान मानियों के शमशान भूमि ले जाल जाए। और हुटकोयाल में बर्ग में 59 बरिस के 97 के श्री देवराज वैनक्या, श्री देवराज वैनक्या जिनका लोग राजेश से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज सुबह 3 बजे इनकर पत्नी श्रीमती पिंकी वैनक्या के मकान गुटकोयाल में बर्ग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पॉइंट मुकीज के शमशान भूमि ले जाल जाए। तशोक में डुबल इस परिवार लोगन के प्रति हमने के दिली हमदर्दी बातें।
1: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।

बजकर 21 मिनट हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। शेबेल के रहने वाले निवासों को, जिनमें है रेजिडेंस शेबेक, सेंट म्युनिसिपल गायतान जुवाल, रेजिडेंस लोटस, डब्ल्यू एम ए शेबेक और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 17 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए सुबह का नजराना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम आपके लाए हैं चंद डुएट गाने। और ये पहली डुएट जो है फिल्म परवरिश से लिया गया। आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रही है।

तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत 1977 के फिल्म परवरिश से लिया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की शानदार अदाकारी, जिसमें जो है दर्शकों का दिल जीत लिया। परवरिश जो है एक ऐसा शब्द जिसमें माँ बाप का प्यार, परिवार के संस्कार और रिश्तों की गर्माहट छिपी है। तो चलिए गीतों का ये खूबसूरत सफर इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अगला डुएट जो है आप सोनी महिवाल फिल्म से लिया गया सुन पाएंगे, आशा भोंसले और अनवर की मीठी आवाज़ों में।

0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे हैं, फिल्म सोनी महिवाल से लिया गया, जिसमें प्रेम की मिठास है, यादों की खूब खुशबू भी है और दिल की अनकही बातों का संगीत है। और ये मूवी जो है दिल को प्रेम और विश्वास का एहसास कराती है। तो चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है और चंद डुएट्स जो है इस समय आप सुन रहे हैं। तो अगली डुएट की ओर हम बढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह की मीठी आवाज़ों में।
1: खवातीन और हजरात, आज की शाम इस महफिल में आपके पसंदीदा कव्वाल जनाब चुलबुले असरानी साहब को बुलाया गया था, मगर अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो चुलबुले गुलगुले होकर बुलबुले हो चुके हैं और इसलिए यहां नहीं आ सके। उनके ना आने की मैं जनाब कर्नल टिप्सी से माफी चाहता हूं, इस गुजारिश के साथ कि उनकी ये हसीन महफिल साज और आवाज के जादू से महरूम नहीं रहेगी। अगर मेरे सीने में दिल है और उस दिल में तड़प, तो उसका असर लाजमी है। अपनी आवाज से सब दिलों को जीतने का वादा तो नहीं कर सकता, मगर हुजूर, ये नाचीज अगर एक रात में एक दिल भी जीत सका तो मेरी किस्मत चमक उठेगी।

0: चलिए श्रोताओं, 8:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। अभी आप सुन रहे थे चेन्नई ड्यूएट्स गाने। इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला। अब समय हुआ है हमारी धरोहर कार्यक्रम का, और ये कार्यक्रम आप किरण जांकी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
1: हमारी धरोहर किरण जांकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने यूनेस्को द्वारा स्थापित करा गया 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर ध्यान देव जा। संयुक्त राष्ट्र संघ 2015 में निर्धारित कर ले रहा, और 2030 तक ये लक्ष्य सधले बा कि ये सब जो 17 लक्ष्य बा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बा, ओके प्राप्त करल जाए। और आज देखी जा 2026 में हमनी है सा, और 4 बा ये जायजा लेवे के कि ये सब गोल्स कहाँ तक पहुँचल बा। त सबसे पहला तो ये चाहे जाने के कि ये 17 जो लक्ष्य जो गोल्स निर्धारित कर रहा बा, सब संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश खातिर वो कौन कौन बात है। सबसे पहला तो बा ये पृथ्वी से गरीबी मिटावे के, दूसरा बा भूख के ख़त्म करे के, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्थापित करे के, चौथा है अच्छा स्तर के शिक्षा सबके देवे के, पांचवा औरत और मर्द के बीच कोनो फर्क नहीं करे के, ये लोग के बीच चाहे बराबरी रहे के, इक्वालिटी रहे के, छठा साफ पानी और स्वच्छता चाहे सर्वत्र हर जगह रहे के, सातवा है कम खर्च होला साफ ऊर्जा पैदा करे के, रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरमेंट

0: फ्रेंडली एनर्जी। आठवां, अच्छा नौकरी और इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि आर्थिक विकास। नौवां है उद्योग, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। दसवां है असमानता के घटावे के, मतलब कोई के बीच नहीं चाहिए कोनो असमानता रहेगी। ग्यारहवां, सस्टेनेबल शहर और जन समुदाय, मतलब कि ऐसा शहर की स्थापना जो जन समुदाय खातिर लाभदायक रही और लंबा समय तक चली। बारहवा है जिम्मेदाराना पैदावार और उपभोग, ऐसा पैदावार करा ऐसा सामान के ऐसा तरीका से जेकर पैदावार और उपभोग के जिम्मेदाराना तरीके से करल जाए। तेरहवा है मौसम के बचावे पर कदम, ये सबसे जटिल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बा, कहे कि क्लाइमेट चेंज से दिखत है जा दुनिया कैसे आज उथल पुथल से गुजरता। चौदहवा है पानी के अंदर जो जन जीवन बा ओकर सुरक्षा, फिर बा पृथ्वी पर जीवन। सोलहवा है शांति और न्याय के मजबूत संस्थान। और सत्रहवा है ये सब गोल के हासिल करे खातिर साझेदारी, मतलब कि पार्टनरशिप, मतलब कि सब कोई के मिल के चाहिए ये सब लक्ष्य के साधे के। और ये सब जो लक्ष्य बा एक साधे में काफ़ी मुश्किल होल बा। यूनाइटेड नेशंस के जो इकोनॉमिस्ट नेटवर्क बा वो कितने समय आगे से चेतावनी देवे आवता कि पांच को इंसानी आदत के वजह से ये सब सस्टेनेबल गोल्स में बहुत आगे से रुकावट चला बा। और ये सब चाहिए हमने के ध्यान में रखे के और एकर से निपटे के। और एकर में बा मौसम परिवर्तन और प्रकृति के विघटन, डिग्रेडेशन, असमानता, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, तेज़ी से जनसंख्या में परिवर्तन और टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, ये तीन को इंसानी प्रवृत्ति इस शताब्दी के नक्शा ही बदल दे। अब एक असर कहाँ तक सके गलत या सही रहे ये निर्भर रही हमने के आज के फैसला पर। और ये रिपोर्ट में ये बोला गल बा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा अमल में आए एकर प्रगति में हमने आगे बढ़ जा ये बात के ख्याल चाहत हमने के बहुत शुरू से रखे के, लेकिन बीच में आते आते ये प्रगति सकब्जा बोले रेल से हट गल बा ओकर पटरी से। उधर कोविड 19 चला रहा जो बहुत बड़ा आघात रहा, इधर देखत है जाकि मौसम परिवर्तन के जो खराब असर बा कैसे हमने के अचंभित करता, जो बात के हमने के उम्मीद नहीं रहा उस सब आवे लगल बा। तो बहुत कठिन स्थिति में है जा एगो ऐसा चौराहा पर है जा जहाँ पर ये सब जो प्राकृतिक प्रकोप बा ये सब जो बात बा जो हमने के पहुँच के आज परे हो गल बा ओकर में सुधार आने पर अभी देखत है जा कि काफ़ी देरी हो गल बा। और अब हमने के चाहिए ऐसा ऐसा समाधान ढूंढे के जहाँ पर सकब जा सबसे आगे ये मौसम परिवर्तन के जो नकारात्मक असर बा ओकर से निपटे, एकर जो असर पड़ी ओकर से जनता के बचावे। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: तो चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पर आपके लिए आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। तो आइए एक भोजपुरी गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। 10 बजे वापस मिलेंगे भक्तिधारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: अब आप करुणा से समाचार सुनेंगे। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार अनुराधा, सभी को नमस्कार। मॉरिशस और रिक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त करते हैं। आम की गई सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। इनमें 5,300 से अधिक लोग 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जबकि इनमें 242 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष या उससे ज़्यादा है। रिपोर्ट में अंशदायी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक भत्ते यानी कि अलाउंस पाने वाले लोगों का आंकड़ा भी शामिल है। ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब मॉरिशस में जल्द ही स्टेट एज पेंशन व्यवस्था की ओर बदलाव होने वाला है। 13 वर्षों के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि नाइस की वापसी हुई है। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 हफ्तों तक सेवाभाव, अनुशासन, जिम्मेदारी और सह अस्तित्व सीख पाएंगे। बाद में ये प्रोग्राम अन्य नौजवानों के लिए भी बढ़ाया जाएगा। मॉरिशस में हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि HSC की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस साल 8,000 से ज़्यादा उम्मीदवार इन परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। आज छात्र फूड स्टडीज़ की परीक्षा देंगे। परीक्षा का ये दौर विद्यार्थियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि HSC के नतीजे आगे की उच्च शिक्षा और करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रवीण जगनाथ आज दिन के 10:30 लाइन बराक्स जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री को CCID की ओर से चल रही मुस्तासलिक्स मामले की जांच के सिलसिले में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवीण जगनाथ से इससे पहले 1 सितंबर को करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ये जांच कथित तौर पर संचार को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की खरीद और उनके संभावित इस्तेमाल से जुड़े हैं। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन उपकरणों की खरीद को मंजूरी किसने दी थी और इन्हें किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाना था। और पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के अनुसार कीमतों में ये बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी है, जिनसे खेती की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। ठंड, हवा और पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो रही है। तेज़ हवाएं बल्कि और बाज़ार में उपलब्ध सब्जियों की मात्रा भी कम हुई है। नतीजन ज़्यादातर सब्जियों की कीमतों में महज 2 हफ्तों में 15% से 30% तक की बढ़ोतरी आई है। हालांकि स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि अक्टूबर के मध्य तक खेतों में सब्जियों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। और विदेश में गजापट्टी में कल रात के दौरान युद्ध से क्षतिग्रस्त एक इमारत के ढह जाने से कम 21 लोगों की मौत हुई है। बचाव कर्मियों और चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो आज की चर्चा।
1: आप सभी को नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन की परत हमारे लिए धरती का एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन सवाल यह है कि ओजोन परत को नुकसान क्यों पहुंचा? इसे बचाने के लिए दुनिया ने क्या कदम उठाए और आज हम कहां तक सफल हुए? तो इन्हीं सारे सवालों को विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हमारे स्टूडियो में दो सम्मानित अतिथि हैं। आप हैं डॉक्टर राजेंद्र फुलबान जी और श्री दिनकर छमिलाल जी, जो पर्यावरण मंत्रालय से आए हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। नमस्कार। और अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस प्रोग्राम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम बोल लीजा कि हमने आज विश्व ओजोन दिवस पर चर्चा करब जा, तो पहला हम यही खुजब जाने के श्री छमिलाल जी, ये जो हमने के सकब बतावे कि जो ओजोन लेयर जो है ये कौन छ, एक मतलब का है?
2: हाँ, देखा ओजोन लेयर जो है ये गो गाज है जो हमने के स्ट्रेटोस्फेयर में मान ल लगभग 15-30 किलोमीटर ऊपर एगो एगो कंपेरिजन खातिन हमने के जो आवियो कमर्शियल आवियो है वो 10 किलोमीटर ऊपर जाला। तो सभी है जो ओजोन ले या बा ओकर से और ऊंचा में ऊंचाई में है। तो ये ओजोन ओजोन वा कुछ से बनेला, तो जैसे जान ला हम जो जन जो रेस्पिरे ऐसा ऑक्सीजन ओकर में दुगो आटोम ऑक्सीजन बा ओजोन में 3 गो आटोम बा O3। तो जब अनेक लगभग हजारों लाखों ओजोन जब संगे जुल मिल जाला तो वो एगो एगो लेयर करेला एगो लेज, तो वो जो लेज वा के कहला हवे ओजोन लेयर। तो ई ओजोन लेयर एगो कवच

0: जैसे अपन को मौसम जैसे बोला जा ये वो कवच है जान ले जा हमने के सूर्य पूजनीय है काहे पस की हमने के जोन चीज जीवित बाप है धरती में सब बोले सूर्य के कृपा से बस की जे सूर्य ने रही तो तापमान घट जाए कोई जिंदा ने रही तो ये जो सूर्य है हमने के बहुत आवश्यक है लेकिन एक में जो दूसर दूसर जो रेयों आवेला तो एगो रेयों के नाम है यूवे
1: यूवे
0: अल्ट्रावायोलेट बी तो वो जे अधिक मात्रा में धरती में आई तो हानिकारक हो सकी तो देखा भगवान एगो चीज कर ले जो एगो एगो एगो समस्या दिल बा तो का सुझाव भी दिल बा तो उ है जो ले यवा बने ले बा काहे तो जमे है ओजोन जो है यूवी बीवा जो धरती में आई हमने के हानि नहीं पहुंचाई तो ये एगो कवच है एगो मान ला जैसे एगो एगो छतरी निकन घाम में चलेला तो जमे ढेर घाम में लगी तो एगो छतरी लेके चलेला तो ये धरती के एगो छतरी है एगो कवच है तो है ओजोन लेयर बहुत बहुत
1: आवश्यक बा
0: जैसे जैसे बोली जाना जब है जब यूवी लाइट जब आवेला धरती में जो कवचवा नहीं रही तो मात्रा ज्यादा हो जाए
1: तब जब नुकसान
0: नुकसान हो जैसे कि कौसे लापो सकी हो कताक सकी हो
1: मतलब हमनी के स्वास्थ्य पर काफी असर
0: असर जिस इंसान के नहीं,
1: नहीं।
0: जीव जंतु जो जानवर पा भी
2: पेड़
0: पौधा भी हमने के प्लांटेशन करीला जाना तो जे एक्सेस हो जाए है ज्यादा हो जाए है यूवी तो हमने के प्रोजेक्शन लेगी मु सब सकी निगेटिव
2: हानिकारक
0: कर
1: दी तो वो ओजोन लेयर जो धरती के ऊपर बाते ये कैसे मतलब अफेक्टे होला ये सब तो मनुष्य और पशु पक्षी सब
2: सब पर हम तो थोड़ा विस्तार पे तरीकों समझे कि कैसे है ला हमने के जो कवच बोला था हमने के जो जी बोला ना कवच वा कैसे अफेक्टे होता तब सुना ना हमने के धरती पर अब जितना रिसर्च होता साइंटिस्ट लोग मजे आवंटे करते हैं जब जब ढेर चीज बनावट बन जा तब देखा अब जब गर्म गर्मी के मौसम में तब कौन चीज आगे तो देखा नहीं रहा फ्रिजीडिया कैसे बोला सर ना नहीं रहा जीतू तो अब साइंटिस्ट को कौन चीज करना से गो फ्रिजीडिया बने लेना तो ओकर से हो गल तो अब ओकर में गो एयरकोन बने लेना से जिमा थोड़ा सुविधा हुई गर्म नहीं लगी तो जो गैस सेवी होला एयरकोनवा के आर फ्रिजीडिया में एगो गैस चाहला ओके बोलना से रिफ्रिजरेंट यानी कि वही ठंडा करावेला गैसवा में हई गाजवा धरती पर एक लिफिन नहीं रहल जीतू लिफिन नहीं करत रहल पर कौन चीज होल हई गाजवा जब अब कैसे फ्रिज दे बिक देला तो हई गाजवा निकली ना थोड़ा दिन के बाद गाजवा जब निकली तो जाके अपनी के एटमॉस्फेयर में जाते रहल तो हाउ जाके अब जाए कौन चीज करी हाउ ओजोनवा की जो हई जो कवच बोलन है हाउ जाके ओके ओके अफेक्टे करी मजे रिएक्शन करते रहल ओकर संग जिमें हाउ कर कवच हुआ कैसे आई मोटा रहल अब पथरैले जाए पथरैले जाए
1: अच्छा
2: समझ ना जब पथरैले गल तो यानी कि ढेर सूरज के किरण जाए लगी
1: अब जब
2: हाँ मेघरी हो गल तब अब सूरज जैसे किरण जाए लग जाओ वे भी बोल तुम जा वो जस्ती धरती पर आए लगल जब जस्ती धरती पर आए लगल तो वही बोलन से ओके ओजोन में एगो छल एगो
0: छेद
2: छेद हो गल समझ ला ना ऐसे ही से मुझे छेद कैसे हम बोल से थ्रू थ्रू नुमा नहीं मैं एकदम से पथरा गल पा जब पथरा गल पा जस्ती सूरज की किरण उकर पर धरती पर आओ
0: तो इज इस रेफ्रिजरेंट नहीं बाएं और अनेक चीज में जो इस्तेमाल कर लिया जा जैसे आगे जो हो रहा के जो परफेक्ट ढेर कोई डाले ला
2: ना
0: स्प्रे तो एगो प्रेशो जब निकली प्रेशो हाँ परफेक्ट वहाँ निकली तब पेजे करबा तो हाउ प्रेशो एगो गाज डला तहल तो एरोसोल कहा तहल उ भी और कभी कभी कोनो बाची मुँह में आग धर ले वेला तो पोंपियो लोग बुझावे ला एगो सोल्यूशन से तो उ में भी रहल अब कोते लासांते वो सेवियो था जाने ला कोनो आदमी के दमा बा अस्थमा
1: आस्मातिक
0: तो जो हो ला पोंपा ले वेलन जा हो वो में रहल तो अनेक अनेक मजा सेवियो था जगह पर तो यही कातिन

0: के पड़ा दिखे के कैसे कंट्रोले चाहला करे के
1: हां त हमनी की रिसर्च बतेल कि चाहला हाई अफेक्टे होता त अब साइंटिस्ट सुख बोलन से नहीं ईगो समस्या बाहेला त चाहले कर हल करे के
2: त हमनी के देश में ई ओजोन लेयर के बचावे खातिर कौन कौन कदम अपनावल गलबा
0: हम सोची रहा तनी आगे बोलती जा इंटरनेशनल में का होता
2: अच्छा
0: इंटरनेशनल में का होता तब ओके अनब जा मॉरिशस में का होता
2: डॉक्टर फुलमन जी में हम
1: सुनो ना जैसे हम बोली को समस्या हो गल पाक मुझे ओजोन लेयर के अफेक्ट होता तो हाई बोली से देख जस्ती लगल थी ऑस्ट्रेलिया जोन बा उन लोग के लिफे सौंची उल आगे तब गते गति पूछा लगल कि औची धरती में हमने जो हमने के प्लानिट बा सगरो लगल है लिफिवा हो मुझे जस्ती लगल आदमी कौनसे हो कतराक हो लगल लापो के प्रॉब्लम हो लगल लास्म के जस्ती प्रॉब्लम हो लगल तब जब सब के सब धरती लोग के मुझे डिफरेंट डिफरेंट पेई लोग के आप 197 पेई जब ज्वाइन हो नीचे एगो कॉन्फ्रेंस में तब बोलिया देखा एक हमार पे में ऐसे होता ओकर बोलता वह हमार पे में ऐसे होता तब दिन से एगो हाई एगो अकेले एगो पे नहीं सकी सॉल्व करे चाहे ला एक समस्या सब कोई के मिल के हल करे के तो ओकर से तब एगो नहीं हो एगो कन्वेंशन 1982 1987 Kahai Montreal Protocol, parce qu'il y a un protocole signé à Montréal,
0: Canada.
1: Donc, moi, quand j'ai dit ça, ce pays, Maurice Parmi, il y a 1000 abécœurs et des soucis. Il y a
2: des
1: samadhans. Il y a des samadhans. Donc, il y a définir ce qu'il y a. Il y a des frisidaires qui ont fait ça, et des icônes qui ont fait ça. Quand tu as dit qu'il y a des banques,
2: कैसे होई काम कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ा
1: सकता ई खातिन एगो प्लान दलाल सब पे एक मजे दीपान ओकर फिनांसमा और दीपान ओकर जे पे इंडस्ट्रियलाइज लोग के जस्ती तो सुविधा बा तो लोग हाली से करियन सा हमनी तनी कैसे डेवलप और सेतु एटा इंसुले आ सके से लील बोली ला सा ना तो हमनी के जस्ती चला मोयन दे के तो इकर खातिन एगो प्लान दलाल plan dalal qui progressivement quoi je bolat tain yani ki gatte igu hamni ke 10 baris ke leta denisa jime sakab sa gazwa remplacer kare how john how gazwa kase talwa boli refrigerant o ki remplacer kare sa de remplacer kalke go douceur refrigerant anisa abou douceur refrigerant jab anisa parce ki recherche nei batawat tout de suite kase sakba developper kar di ego chi anukdit lewa tain kase hamni ke li pou covid mein कोविड में चाहे हाल ही से वैक्सीन डेवलप करेंगे तो चिकित लेता में चाहे वैक्सीन हाल ही से डेवलप करेंगे तो हमने के साइंटिस्ट लोग के उन लोग के बड़ी पूरा प्रेशर तो दूसरा चीज एगो अल्टरनेटिव खोजे के तब एगो अल्टरनेटिव खोजलन से जो कि वो भी ओजोन के अफेक्ट करता मैं तनी कमती से यानी कि हाई लेवल में जब प्रोमिजोन गाजा बोले तनी चा ओके वो अफेक्ट करता 100% अब देखिए वहाँ से क्या अफेक्ट करी 75% दूसरों 25% घटे ही नहीं चा ते गो प्लान दल नहीं चा अंचे ले मोन में सब कोई हाई पे वजह में 197 पे ये गो प्लान दल नहीं चा तो हमने के मॉरिशस के ताले भाई चमला दुनिया हाँ हमने के प्लान हल इलिमिने करे के 2010 ले हाउ जो प्रमे कमेंसमेंट गैस हुआ तब इकर पर जस्टी खुलासा दलियन चमला
0: हाँ तो हमने का जनेला है रेमप्लासे करे के दिक्कत का होला पस कि इजिस गाजवा ने रेमप्लासे कर बहु इक्विपमेंट वो पर रेमप्लासे करे के पस ये को नुवो गाज अन ब त चाहला इक्विपमेंट वा चाहिए काम करे के हो गाजवा से हां त हवे खाती ने गो जैसे भाई जी बोलन एगो पेयो देगो मोरेटोर दिलन अब सब पे के ओकर ओकर ओकर हाउ डिफरेंट बा पस कि सोजे करके पैसा कुते होला त अब मान ल हो पे अरब में जहां बहुत गर्मी कैला सगरो एयरकोन बा तो सोचा हजारन मिलिए एयरकोन एक कुछ बदले के कितना कुते हुई अब जैसे तोहर लगे फ्रिजिडेयर बा तू परसों फ्रिजिडेयर किनला आज बोला तुम जा रेमप्लेस करे के
2: पैसा
0: प्रॉब्लम हुई तब जैसे बोलन जा तो एगो लेता मिला तब गति गति हम रेमप्लेस कर लीजा तो जो premier type de gasoil hello kan amra CFC bon detail mene jap sa pas asa technique hai ta e CFC wa hamni reçu le sa ghata ki ab chala lalwa ne ke ab contrôler kar pas si dusra importer kar thona dusra pays

0: thème dans lequel jamais la douane mais au gaz va manabula 2005 c'est ab nay anba ta chori chori kono illegal ani ta kaise karba ta chala training kare ke ab equipment wo chala ke identifier kare ke ta isab le temps le vela ta custom ke training de lija equipment wo lo ke de lija ki jaise illegal anja teste kari anja ta hai illegal ha retune jahan se anne wo retune kara ab technicien wo jo reparer kare la ha lo ke ta hai gaz wa me ha kare ke netwa réparer करेंगे अब एक नया गैस अन लत हमने जाते हैं सिस्टम वा कैसे
1: चाहे जाने के एंट्रेनिंग करेंगे ट्रेनिंग
0: ओक्रो चाहे ट्रेनिंग देके अब के ट्रेनिंग दे जोन
1: हां जोन
0: जोन ट्रेनर वा बा जोन प्रोफेसर वा बा ओक्रो पर विदा करेंगे बाहर उसी के आल तब ई लोग के सिखैला संबंधित टेक्नीशियन लोग के सिखैला ते को लेसन है एगो लेसन है अब कानून वो चला आने के सब कंट्रोल करेंगे तो ई सब खातिर एगो ले टाइम दे लंचाक मजा 10 ans 15 ans तब हमने रेशियो ही सा हमने बोंस एलेव निमन एलेव रेजा 5 ans आगे हमने रेशियो ले जा कंप्लीटली बैन कर देके हाउ सी एफ सी के तब डीजेम कैटेगरी जोन गाजवा बा वो ओका नाम एच सी एफ सी वो जैसे भाई जी बोलन वो कम ओजोन के नुकसान करेला लेकिन फिर भी करेला करेला तो टेक्नोलॉजी वा नहीं बन रहा ना जो निमन सब ले 100% वा पर सी वो ले तो ले ला
2: सी रिसर्च हां
0: तो अब हम नुवो के पारे अब चला देखे के एगो हमने के पढ़ा लेगो सर्वे करे के टिकट के कितना बा मोरिस में कितना एयरकोन बा कितना फ्रिजिडियर बा कितना चिलर्स बा कितना लोपिटल में हो पर सी जाए ला वैक्सीन वो सब ठंडा में चला रखे के कितना लोपिटल में चिलर्स बा कितना एयरकोन बा कॉलेज में लेकोल में घर में ब्यूरो में सगरो लोटेल में
2: मैम लोटो में
0: लोटो में तब सब के सर्वे कर ली जा तब देख ली जा कितना सकी कुते हो सब के गत्ती गत्ती सौजे करके तब ये वो
1: बहुत
2: बड़ा एक हाथी मच एक साल में नहीं दे लिया सर ना 15 ans comment j'ai l'agré. Donc deuxième mois, j'ai ajouté que tu es là, mais après deuxième mois, que j'ai un groupe qui s'est boulant, HCFC, tu as pas la conjika nija, boule j'ai déca. Ego sima ba, j'ai un ok boule absa, j'ai un jitna équipement hilata, au cas où j'ai gaz va arrêter que j'ai absa anan. J'ai gaz n'ai sa qui mourisse me hili. Équipement, mais équipement, c'est-à-dire boule t'en, t'or aircon me, t'or frisidia me. J'ai gaz. आश सेव सिवा नहीं सकी ही लेता इका कहते हमने के पाल आमाउंडी करे के लालवा अब जो डिज़ा हमने के इक्विपमेंट जो मोरिस में बा तो ओके नहीं इसका सारे करे ना तो ओके कौन जी करनी सा बोलने सा गाजवा अनब सा मैं एको सिस्टम कोटा देनी सा कैसे तू है पोताते हवा कैसे पांच छह गए पोताते हो उन सब लोग के उन लोग के समझाई नहीं सा आगे देखा हमने ऐसा अभियान डले हैं सब तो सब मजे मिल मिला के करने सा कम जिस के लिए सरकार अपनी सीने आके पोसे के लगा है बस की भर्ती है सर भर्ती संसार में लोग के मिला था तो उन लोगों जब कहो जाफे ए पोते करत वंस था तो उन लोग के ए पोताते हुआ पर हाउ पेवा में वो भी बोलते है कि साइन अप प्रॉब्लम ला तब चाला हमने की जिमने करेंगे तो लोग भी समझा तो उनसे कौन यर्जेंस बा जो चाला जिमने करेंगे तो हाउ से गो सिस्टम कोटा दलनी सब देखनी सब देखा तो कैसे तू इसके हमने के भाई चामलाल फॉर एग्जांपल ई गैस अनतवन हाउ बी गैस अनता से गैस अनता डी गैस अनतवन तो सब के जॉइन करनी सब बोलनी देखा ई टू ढेर गैस आने ला इतनी कमती बाजे लोग को जितना लोग के इम्पोर्टेशन लोग की है ते गो सिस्टम मजे प्रो राता पर कोटा कैसे कोटा देनी सा फिर मजे उस 100 टन आलन तो हल पूरे एग्जांपल से दे होते हैं 100 टन हाई 50 टन हाई 2 टन तो सब के पारे कोटा नहीं दे ऑप्शन है डिपान बा ऑन क्वांटिटी तब ऐसे सब करनी सा तब झाई ला जब ऐसे हो गए कोटा वा जब दलनी सा तब कैसे चामलाल जी बोलन टेक्नीशियन को ले चाला बहुत इम्पोर्टेंट है टेक्नीशियन लोग के उन लोग के फॉर्मेशन देखे तो अब हमने के अब शमा सकला बोल बा हाई जब प्लावा दला गल तो अब कौन सी कर अब सब हाँ
0: देख एक अच्छी पूछ आज ते करती जब कोतवा डली जा तो हम कोतवा हर साल घटले गल समझ लेना कोमिया कुछ 100 टन तब जैसे कुछ 75 टन तब सैकड़ों जिसका मजा जिमनी हो एक कुटने सब घटाई बस कि जेकर फ्रीजर टूट गए चाहे रिपारे करे कि ना तो हवे खातिर तेनी गाजवा चाहे ना रखे।
1: तो इस चर्चा को हम थोड़ी देर के लिए जारी रखेंगे। ऐसे आज टेक्निक पर अपर्णा है, प्रोडक्शन सहायक

0: आज की चर्चा।
1: क्या आप जानते हैं ओजोन की परत पृथ्वी के लिए एक प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह काम करती है और सूर्य की हानिकारक यूवी जैसे कि अभी कुछ दिन पहले इस पर चर्चा की थी अल्ट्रावायलेट भी किरणों से बड़े हिस्से को रोकती है। तो डॉक्टर फुरमान जी, तो क्या ये हम कह सकते हैं

0: कि ओजोन परत की रक्षा करना वास्तव में अपने स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना है?
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने तर्क रिपोंसवा दे से आगे हम तरीकुन ब्रेक में जाए से आगे एगो बोला नहीं जा कि प्रोबियन कोमेंसमेंट जब हो गैस जो सेवे करते नहीं जा रेफ्रिजरेंट बोले नहीं जा उसका नाम बोले सा सी एफ सी। तो ओके मॉरिशस लोग मॉरिशस में हमने हमने के लेटान दिला रहा 20 ले ओके कोप्लीटमेंट निकाल दे के एलिमिने कर दे के
0: लेकिन शुरू करते रहा 2010 ले
1: नहीं नहीं से मैं कौन सी हो हमने के मॉरिस में 2005 में आरेते कर दी सब कोप्लीटमेंट है निमन ने का करनी सा 2005 में आरेते कर देनी सब अबरी अब जो रेम्प्लेसी करनी सा दूसर गैस हुआ ओके मोसा एच सी एफ सी इबी तनी ओजोन की अफेक्टे करेला तनी कुन मैं कमती है का अफेक्टे करेला ओकर भी को दूसरे को प्लान दलाल 2013 अब 2030 लीडर रहल दलाल कि मैं ओकर भी एलिमिने कर दे अब सब हमने कौन सी करनी सा 2025 में 97.5% एलिमिने कर देनी सा देजा ça m'a de la caille caille 2.5 rak le sa jime caille 2.5 rak le sa pour son va jime ki deka que c'est allé cham la ni bhai ji bolan ko il a ga frisidé ba ko il a ga e a kon ba jo na bile istemal kara twan cha te go problem ho gal ta kan se au gazo ani sa o kan pe sa gro a on pc ho gal ba ta jis kali go ti bout kani kun rak le hain sa ki en cas besoin c'est mal 2030 mais complètement 2030 mais arrêté que ça coûte sur Haïsan gaz ni en aimois mais du tout ça m'a donné même équipement ok éliminé que des liens 2013 qu'on a l'équipement Maurice mais il est là bon bien sûr que c'est amené que Bhaji Boulan j'en ai amené que douanier le qui comment dire le qui bien s'y caille que qu'est-ce que checker rien ça ta ego cab bien rare 2016 2017 par là John ego importante and dir hal to ubine janla kukar me hai aisan gas war hal ta jab cheki hol to kar me hau gas jon on pc ha ta hau rahal okay kadam da pre kanun namni ke rahal hau sab jitna hau lut rahal sab pral gumai ke jon hapar se importe rahal bien sûr kanuni karba holi kar me bo hai sab ne bolat nahi sa ta kaise bolta amni ke control bahut chala karege कंट्रोल बहुत चला करेंगे तब ये खाती नहीं पोता हमने के जितना नुवो बच कस्टम ऑफिसर लोग हैं जिनके दुआनी लोग हेल्थ वन सब तो उन लोग के भी कंस्टामेंट फॉर्मेशन दिया ला उन लोग के चाहें ला देखें कि कोनो पहला एक आदमी नहीं पोत कोनो मज़ा हाँ गैस जो उनके बोलने से रेफ्रिजरेंट उन लोग के एपोते करें से आगे हमने की चाहें ला उन लोग के चाहें ला हमने लगे लिखे के ego ego autorisation ko dit ki apote kare katin a dit hay autorisation tab PMI de la ministère de la santé yani ki okay bolsa dangerous chemical control board ou lok PMI de wilansa basé habni ki recommandation par yani ki tu gaz an se importe kare toi tamni ke pehla lik ba habni ke ministère tamni dekhab sa tora kota ba ki nahi ba est ki hay gaz wa tora droit ba ani ke ou bien nahi ba a dit droit nahi ba ani ke tora bol de upset tora hay gaz नहीं दुआ बने के नहीं सकबा तू आने अब भाई अजय गाजवा जो उनके दुआ बने के अब देखा अब साजी कोता में बा अजय कोता में नहीं बस पापन कोता दे पासे कर दिले पता डेफिनेटिवली नहीं दो ऑप्शन के कोता ना नहीं दो ऑप्शन के ऑथराइजेशन तो ऐसे सब के करके तब हमने एगो एगो नो ऑब्जेक्शन लेटर तब भेजा सा मिनिस्टर ला सांते के मिनिस्टर ला सांते के तो उन लोग हमने के नो ऑब्जेक्शन लेता तान कहीं से जैसे हमने बोला सा नो ऑब्जेक्शन लेता वो लोग देख के तब लोग अपन पीएमई दिया सा तो वो पीएमई वा हाउ इम्पोर्टेंट वा जो आने था ओके ले अब जो कर कागो आए तो दुआने लोग चेक कर दिया सा हई है कि नहीं जब चेक कर दिया सा उन लोग के विश्वास हो गल कि नहीं हई है तब उन लोग के
0: ये सब सुन के कोई जो नबी श्रोता दर्शक हमने के देखा सकेला उधर तने को फिया पैदा होला जैसे कैसे नहीं बस कि एको एको रेफ्रिजरेटर या तो एको एयरकन खरीदे के अब पर्यावरण के दृष्टि में कौन सी ध्यान में रखे कि इस सब स्वच्छ
1: हाँ बिल्कुल सब उन लोग के डराए के नहीं वापस कि हाई जितना इक्विपमेंट हेल जाता वो निवो लादवान चेक कर लेते हैं अजय हाई हाई गाजवा ओके नहीं द्वाबा हाई इकोनॉमी आने के तब उन्हें
0: नहीं आनी ही नहीं
1: नहीं सकते
2: और ये मार्शल रेगुलेट कर लाना मार्केट रेगुलेटेड है जे जे नहीं है रही तक नहीं सक बखरीदे
1: अब थोड़ा सा चीज बोला था नीचा तो हाई थोड़ा बोली जा पहला जो गाजवा एकदम से ओजोन क्या फेक करते हैं ओके

0: करेला अफेक्टेड ओजोन फ्रेंडली है लेकिन क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है.
1: अब उलगा ना एगो समस्या के हल ढूंढ ला बस दूसरा समस्या प्रॉब्लम कर दे वता ता अब बोलनी सा अब देखा ता जो मोरियल प्रोटोकॉल वा रहल ओ बोले ओ खाली देखे ला जितना चीज खाली ओजोन अफेक्टेड करेला अब हाइलाइटर चेंजमेंट क्लाइमेटिक के प्रॉब्लम करता
0: एगो दूसरा कन्वेंशन
1: है एगो दूसरा कन्वेंशन तब अबनी हमनी जब मोरियल जब ज्वाइन हुई लिसा सब कोई पास ज्वाइन हुई लिसा तब बोली सा ए देखा हाई प्रॉब्लम हमनी खातिन हमनी क्रिएट कर लें सा ना तो हमनी के चैनल को समस्या ढूंढ लीजिए
2: बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग के घटाई खातिर
1: मतलब घटाई खातिर देखा चेंजमेंट क्लाइमेटिक के लोग तो देखा था जब चला लो थी अभी लिटे हुए
2: अभी कौन कौन कदम ली वर्ल्ड गर्ल
1: हां तो स्पीक हवे बुलाते हैं थोड़ा तब हमनी बोली सा देखा तब तब बोलना चाहे देखा मोरियल प्रोटोकॉल वो खाली ओजोन के देखी तब बोली चाहे नहीं चला जाए एगो आमादमा करे मुझे एगो आमादमा करनी सा तो वो आमादमा की गाली में होल की
0: गाली में हाँ 26 लाने 26 में
1: एगो पेई के नाम है रुवांडा लाफ्रिक में वो लोग वहाँ पर मुझे सीने होल मुझे वहाँ पर एक्सेप्टे होल
0: कमिटे जब होल तो सब पेई लोग एक्सेप्टे होल कि चाहे ला कुछ करे कि
1: और एगो जहाँ पे थोड़ा बोल देती हाई लीडेवा के पहला अनलक को मजे चाहला नहीं ओजोन के चाहला देखे के हाई पोप वापस की समझ हुआ हम नहीं डलने जा मॉरिशस पोमी पोमी पे ही रहल
2: अच्छा
0: हाँ। दुगो पे जो एगो जो के रीजन के नाम है मिक्रोनेजी हाँ। माइक्रोनेजिया और ही मॉरिशस जनला जब कॉन्फ्रेंस में जाइबा तो एगो लीडे जब देबा हो के कॉन्फ्रेंस वा के तो ओके बोला जा सीआरपी कॉन्फ्रेंस रूम पेपर तो उ लिखबा कि हम हाई विचार कर ले हैं देखा जा सकी हुई तो हाई कॉन्फ्रेंस रूम पेपर वा मॉरिशस और मिक्रोनेजी साथ में लिखलन सा तब दिलन सा हो के
1: दिमिलनेफ से हाला में दिमिलनेफ से लड़ाई कर रहे सा
2: अच्छा
1: तब जाके दिमिल सेज में सब पे जाके एक्सेप्ट हो सुन ला ना तो एक गुक बजे लीडे ऐसे ऐसे कि इतना लीडे बाग मजा
2: गाली अमेंडमेंट
1: की गाली अमेंडमेंट तो अब हाउ दिमिल सेज में कैसे भाई जी बोलन तब दिमिल सेज से अब गनबा तो हाई दिमिल बेंसी सा यानी कि 10 बरी चुकर सेलिब्रेट कर रहे हैं मजा हमें हाई साल हाई साल 10 बरी
2: मजा है तो सेलिब्रेट कर कौन कौन गतिविधि हो था हम निस्ते अब देने से
0: वो भी आप जाते हैं और एक दो को
1: आप जा तो हाई हाई बोल दे बताए तो अब कैसे भाई शर्मा क्लाइमेटिक को बोला थे हाई गाजवा हाई गाजवा फासिल नहीं बाय रिप्लेस करेंगे एको एक दूसर एगो मजे तीन गो गैस जो के बोले नेचुरल रेफ्रिजरेंट कैसे बा आप बोल दे होते हैं लाइक आलोक ने सुनिए तो कैसे बा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सी ओ टू डीजेम बा अमोनिया और लामोनिया जिसे बोले सा और ट्रोजेम बा जो हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स फॉर एग्जाम्पल कैसे लाक्यूजिन नाम जो गैस है भी के ला सा एगो टाइप दो हाइड्रोकार्बन
0: मीथेन बा ब्यूटेन बा सब
1: तो हमने ब्यूटेन से भी के ला ब्यूटेन और प्रोपेन से भी कर ला जा हाई डुगवाक मचे अब सुनो ना अब सब सब हाइटिंग को गाजवा में ई बड़ी अच्छा बा पर्यावरण के सुरक्षित रखेला यानी कि
0: ओजोन के प्रोटेजे करेला
1: ओजोन के प्रोटेजे करेला शर्मा क्लाइमेटिक बहुत बहुत कमती करेला तो हाई किक मजा प्रिविलेज कर दे ऐसा गाज में आने के और हाई गाजवा मोहिस में हेल गल पाए हे आदमी लोग आना तुंस है पोता तो लोग आना तुंस मैं एक समस्या कौन सी बा अब ऐसा समस्या एगो सेतन फासों में पहला इतनी जस्ती मंगा है दूसरा एक में रिस्क भी एसोसिए कौन रिस्क एसोसिए फॉर एग्जाम्पल दिखबा अमोनिया को प्लस सकेला सुनली हो मॉरिशस में नहीं मैं को प्लस में सुनली हो कि हाई अमोनिया जब जब बड़का ट्यूब में पासे होला तो एगो आज एक छेद हो गया ट्यूबा में तो निकल के एगो टॉक्सिक गैस है पॉइजनस हो जाए तो ये हानिकारक हो जाए समझ ला ना तब जब लेकिन मुझे एगो हल नहीं ढूंढबा कैसे एक प्रोटेजी कर कैसे मुझे निमन से ओके हैंडल करबा तो हाई ला डिजेम कैसे बोल सा हाइड्रोकार्बन निकला गैस कैसे ला खींचेंगे गैस कितना प्लास्ट में सुनने जा बेचारा लोग बेचारा बेचारी लोग अपन जान गवा दिले वन से लास्ट लास्ट साल दुबे में आई
2: गैस
1: बहुत केसेस सुने आबा एक ही चैनल एगो प्लास्ट में स्टोर करे के जहाँ जिम्मे जहाँ निमन से स्टोर करे के अब डिजेम तू अपन लगा ऐसा गैस डालो तो ओकर में चला ओकर सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स ट्रोजियम चला टेक्नीशियन को ट्रेन करे के बस कि अब देखा ना कोनो कोनो टेक्नीशियन काम करे लंच तब वो लोग कोनो फीमे करे लंच ना तो हाउ हाउ गाजवा जन हाउ नुवो गाजवा जब कैसे हाउ हाउ हिड्रोकार्बियो बोलते हैं हाउ फीमेल कर बता जन बा का हो जाए ना
0: आग धर ले
1: आग धर ले तो एक हाथी चाहला उलू के जनाई के उलू के

0: माशों देखे देखा पापा हाउ जीतू फीमेल
1: गैरे गैरे कैसे नहीं जा सके
2: और सिस्टम वो डिफरेंट बना जोन एयरकॉन जोन फ्रिज दे हाउ का सिस्टम डिफरेंट बनाए के रिपारे करे के पारे ने हज से आगे रहल सिस्टम वा सांझे हो गलत है चाहे ला फो माशों करे के ये बहुत बहुत बहुत जरूरी है बहुत कोनो देश में अभी उन लोग के हम निगो करे खुद जा सर्टिफिकेशन को मजा जोन रिकॉनेट हुई मान ऐसे एक मजे को टेक्नीशियन है हम बोली टेक्नीशियन है तब प्रमाण लाना अपन प्रमाण लाना कि टेक्नीशियन हुआ तो एक सर्टिफिकेशन सीने को यूनिवर्सिटी कि इतना घंटा स्वीव कर ले बाकू तब जाना पसंद हाँ तू एक वो सर्टिफाइड टेक्नीशियन हुआ चला प्रमाण वाला रह के तब के दे प्रमाण वाला तब प्रमाण तो के को यूनिवर्सिटी दे तब चला फॉर्मेशन करेंगे
1: तो हमने के आम नागरिक जुनबा कैसे ओजोन लेयर के सकेला प्रोटेजी करे
0: हाँ ये बड़ी अच्छा सवाल है देखा पहला हम बोलती जब जब को खरीदारी करे यानी कि इस पतोरे को एयरकॉन किने के बाद बिन को थोड़े को रेफ्रिजरेटर किने के बाद रेफ्रिजरेटर को उतना प्रॉब्लम नहीं होता बस कि है जितना रेफ्रिजरेटर मोज में हिलाता अब लापली पर ओके निमन गैस बा कर में लापली पर निमन गैस बा कर में
2: सकेला आदमी लोग नहीं है ध्यान में दल्ले हुए अंजा की हो गैस बा
0: जैसे मत तू अच्छा
1: बिल्कुल
0: चेक कर लेके कौन सी बा कौन गैस बा कर में ओके में लापली पर मजे टिक बस बा प्रोपेन बा c'est pas con mais d'alliance à ozone friendly à climate friendly ou important a dit que moi j'ai go frisider kinba c'est pas même go air con kinba d'habit des camni que jeune mantrale ba public utilities energy efficiency management office le bi rating dal de lewanja yani ki dik ba kabo dik ba a plus kabo a plus plus plus kabo b plus kabo c plus I see moi j'ai le rating dal lewanja awa normal jab sabse jaste kaise amni ke team le la pa
1: resultat
0: mile la
2: sa ja ut kamti courant servi kare sa badla na
0: ou kaise bolo so ke energy efficient efficient yani ki kamti courant servi mais bien sûr kono chij justi niman khoj pa te tani kon kor priwa tani kon
1: justi
0: rahi
2: chala balance wa kare ke e dekha ego chij kin la 5000 rupees justi mahanga pay kar la ta long term me dekha जे लॉन्ग टर्म मान लो बिजली के जो पेजी जितना करत हुआ पाँच साल में 10,000 के कम पे ये कर ला तो है जा 5,000 जस्ती पे कर ला तो
0: हाँ
2: प्रॉफिटेबल रहा ना
0: जिसे गो हाँ एको कंपैरिजन
2: और ये तो हर जिम्मेदारी है कि पर्यावरण के रक्षा करेंगे ऐसा ना सोचेंगे
0: हाँ भी बोलते हैं जब खरीदारी करे जाइबा तो उपति होइया कि ओजोन आर क्लाइमेट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट सेवी करेंगे देखा कोनो कोनो एयरकॉन में देखा ओके गो गैस बा को नाम है कैसे खाई कार्बन डाइऑक्साइड बा और बोले सर आर इडो को बियो बा तो देख बा आज हाई लबाव कर में निकल रही कर में रेफ्रिजरेंट कौन रेफ्रिजरेंट बा स्वा मेम जब जब खरीदारी करे तपन हाउ मगाजें में स्वा जहाँ पर
1: पूछताछ तो जरूरी भी है पूछे के चाहिए
0: हाँ इन्हें इसकी जो इतना सा बार नवो गैस ला तब बोलियां जा हाँ तो लोग भी चेक करिए जा हाँ इन्हें सा तब ऐसे जस्ती अच्छा बात तो हाउ खरीदारी हाउ किन्हा पहला और दूसरा देख बक मजे अब देखा मजे ढेर जब ढेर गर्मी भी करता तब जब घाम ढेर तेज बा तब सकबा प्रोटेजे करिए अपने आप के अपन लापो के तनी सनस्क्रीन उस सकबा डाल दे हाई इंपोर्टेंट छतरी लेके स्वा तनी लंबा लामाउस के शमीज पेंगो कास्केट मेम रिबान सकबा डाल दे हाई सब प्रोटेक्शन बड़ी इंपोर्टेंट है और सेतु लेका लो के हमने बोला थे जा दिक्कत नहीं कुन हमने को कॉम्पिटिशन लॉन्च कर अपन नवंबर में लास्ट 15 आ 20 साल का
1: नौजवान और हमने के विद्यार्थी लोगों के जस्ती पर ध्यान चाहिए वे के कि कैसे इस सब चाहे बतावे के
0: बस के देखा हमने के दुनिया प्रेस के फिनी होगा अब जो नुवो पीढ़ी बा उ लोग
1: के लिए नया पीढ़ी के चाहे
0: नया पीढ़ी के चाहना कि हमें ध्यान रखे के अब लोग के चाहना जाने के कौन कदम चाहना उठाए के
1: हाँ क्योंकि काफी गंभीर समस्या को निपटावे के चाहे
2: रहा एक बात बाना हमने एम्बेसी के माध्यम से हमने धन्यवाद कर रहे हैं एम्बेसी के कि एम्बेसी के माध्यम से हमने जने महिला जो हम जा एक पुरुष के सिखेबा तो एक जना के सिखेबा

0: एगो महिला के सिखेब तो उ परिवार सब परिवार के सिखेब समझ ना बस कि ऐसे है दुनिया में ऐसे होता
1: है शिला तो है और अभी जैसे आप लोग समझा रहे हैं ये भी जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण तो अभी जैसे बोलिए सेस सप्ताह के ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन लेयर दिवस मनाते हैं तो मंत्रालय देने से कौन कौन गतिविधि का आयोजन करल गलबा
0: हाँ देखा पोमियत है
1: प्रोग्राम बा
0: अभी एक बाद और एगो प्रोग्राम रही एम्बेसडर में तो हमने के
1: एको जागरूकता नहीं
0: है जो है ना कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन बा उनके जनाए के हम और ये एगो मैसेज पे पागे कल हैं जा जो उनके विदा कर अब सर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज में और जीजीएस बोली जा तो उस सब मंत्रालय में उन लोग के ईमेल में सब के विदा करी
2: विदा हो गल बा
0: तो सब कोई के है मैसेज मिली जो जो बतैले हैं जा हवे के बारे में है बा और हमने के ट्रेनिंग जो टेक्नीशियन के बाद वो जारी रख लें जा हर साल लगभग एगो सौ अस्सी ले सौ ले टेक्नीशियन के ट्रेनिंग दे बदल जा
1: अच्छा जो मंत्रालय में जो टेक्नीशियन है वन वो लोगे के ट्रेनिंग दे बदल जा
0: नहीं जो जो रिपेरेशन करे ला और दे सब पब्लिक लोग हाँ जेके मन करी
2: हाँ अरे गो हम एगो मांग करते हैं यहाँ पर हाई ट्रेनिंग का जो दे ला जा ग्राचुई है ग्राचुई यानी मिनिस्टर पे गेला या कोनो भी जो टेक्नीशियन लोग हो जा सर्टू रेफ्रिजरेशन और रिफ्रॉडिसमेंट में जो काम करे लन जा अले उ लोग के मन हुए गो है ट्रेनिंग स्वीप करे के तो हमने के मंत्रालय से सके जा संपर्क रखे बस कि हमने को लालिस पारे करते हैं जी वो लालिस पारे कर ले हैं जा तो हमने के ट्रेनिंग वहाँ के देवेला हमने के एम आई टी डी जो अति बा ना लोग लोग हमने के उन लोग के सहयोग से यानी कि हमने उन लोग के पे कहला जा और पास उन लोग के धन्यवाद कर दे
0: यूनिवर्सिटी
2: लोग भी यूनिवर्सिटी मास्क आ गए उन लोग दूसर एथि पर कर लें कैसे है वो सिस्टम कैसे अमोनिया बा ना एक वो सिस्टम कास्काड मजे से भी लो जन बड़का सुपे मौसम में सकी जाए या चिलर्स के एक मजे सके ऐसे भी करे चिलर्स कौन सी है बड़के गो हाँ बड़के गो इति है कैसे जो चुलुप ताल में से भी
0: होगा जहाँ आलू और प्याज रखी ला जा
2: मैम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बा बड़के पास के ढेर जहाँ पर ढेर एगो को मजे से भी लो एगो सिस्टम चिलक मजे जस्ती बड़का को मजे वहाँ आवला तो हाई सब में फॉर्मेशन दे ला जा तो आज को टेक्नीशियन सुनत हुई जो उनके बन बा ट्रेनिंग स्वीप करे के जो नुवो टेक्नोलॉजी पर आ हुआ था तो हमने के मंत्रालय सेकेंड जा लिखे तो हमने के ईमेल भी बा मंत्रालय में
0: सेकेंड जा
2: टेलीफोन वेबसाइट में हेल के
1: हॉटलाइन नहीं ना जैसी
2: नहीं हॉटलाइन में जैसे हॉटलाइन आप तो कॉम्प्लेंट तो हाई में हमने के वेबसाइट में हेल के गो देखिए जब कौन ई मेल एड्रेस बा वहाँ पर munv.gov.mu तो सेकेंड हाई पर लिख के हम निके विदा
1: मेल विदा हाँ
2: मेल विदा करके स्टाजर बोलें सब लोग इंटरेस्ट वन सर पर टेक्नीशियन मैम कोनो भी कंपनी भी होई अपन
1: लोगे
2: हाँ लोग अपन टेक्नीशियन के विदा कर दोन चाहे मिला के देखो लालिस पारे करने सा अब रिजा कितना कोई वेटिंग लिस्ट में बा तैसे मैं सब के दे हुआ था कि पहुँच गो ट्रेनिंग सेंटर एम आई टी डी बा माइबू बा पिटों बा इबेन बा मतलब कोडो बा ये सब बा तो डिपेंड बा तो रीजन जहाँ पर रहे ला तो वहाँ पर थोड़ा के विदा कर दोन
1: नज़दीक
2: हाँ नज़दीक और हाई ट्रेनिंग हुआ सर्टू सामजी के दे ला जा जिनमें कि दिन में अपन काम नहीं पेज हुई बट सामजी खाली और सामजी शर्टू वह डिमिजूने हा डिमिजूने सैंक सामजी सक हाउ हाउ ट्रेनिंग से भी करे जब बोला हो जाए ते गो थोड़ा सर्टिफिकेट दिए हाउ
1: सर्टिफिकेट
2: हाँ तो हवे से कैसे हम तलवा भाई जी बोलन हमने के अब लालवा जे गो लालवा हमने पारे करने से हाउ लालवा में रही कि आप दीपी तेल लाने से जितना टेक्नीशियन रही जो सके काम करे रेफ्रिजरेशन सब जो एयरकोन के देखे और रेफ्रिजरेशन में काम करे सबके ओब्लिगेटरी रही एगो सर्टिफिकेट आज ये सर्टिफिकेट ओब्लिगेटरी नहीं रही तब नहीं सके ओपेरी करे और सब जनता लोग के भी लोग के भी एगो फर्ज बनी देखा आज कोई आवाज थोड़ा लगे रिपेयर करे को नजाफे तो एग्जीजे चला करे कि ऊना सर्टिफिकेट सीओपेना सर्टिफिकेट पा मिथिला में दमो इक्विपमेंट
0: कहे एगो सिक्योरिटी है ना
2: सिक्योरिटी बस कि देखा हाँ देखा अथी है मैम देखा कुरान के जब देखो नजाफे डलबा कुरान को नजाफे तो चाइना कैसे ई एल सी

0: बी सब जितना है तब एगो सर्टिफाइड टेक्नीशियन जाके तो रहती करी समझ ला ना
1: और जो नुवो कस्टम्स ऑफिसर्स बा जो नुवो रिक्रूट लोग बा उन लोग के भी ट्रेनिंग दिया था बस ये जो जो जो रिटायर हो गए थे उन लोग चल गए लंजा अब नुवो बा तो उन लोग नहीं जाने लंजा तो उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करके एगो एगो वर्कशॉप कर रहे थे जा मीडिया संगे सजा जर्नलिस्ट लोग संगे बस ये उन लोगों के छा जनाए के तब उन लोग लिखियन सा त पब्लिक के जनयन सा त एम्बेसी वो लोग के जो जर्नलिस्ट रही उन लोगों के निमंत्रित
2: होई
1: और एक और चीज ने भुला के हमने भाई रोड्रिक जो हमने के भाई बहन रोड्रिक के हाउ जो काम होल बा गल है जहाँ रोड्रिक में ट्रेनिंग कल है जहाँ हाउ जो उनका ट्रेनर्स लोग के और जस कस्टम लोग के सबके ट्रेनिंग दिया बा हाउ जो
0: हुआ बिगो एगो एमआईटी दी बा हुआ पर बीज एगो सेटअप करनी जा इक्विपमेंट बिदा करनी जा फॉर्मेशन देनी जा हाउ जो एमआईटी दी में काम कर ला वहाँ पर ताकि जितना टेक्नीशियन बा उन लोग के बीच सके जा उन लोग के फॉर्मेशन दे
2: तो प्रोग्राम के अंत तक पहुंच गए हैं कुछ दो शब्द इस मतलब क्या बोलना चाहेंगे हमारे श्रोता
1: जो काम करते हैं जहाँ हमने अकेले नहीं सकब जा करे हमने गवर्नमेंट
2: मतलब जनता का भी चाहे सहयोग
1: जनता के सहयोग बहुत बहुत आवश्यक है बस कि एगो सबके साथ हाथ दे जाना तब हमने सब सकब जा रही हुई एपोताते टेक्नीशियन ट्रेनर्स मिनिस्टर पब्लिक जो जर्नलिस्ट लोग बा सब कोई एगो एगो खुशी के बात है कि हमने जो वो निवो है जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन में मॉरिशस एगो खूब निमन हो बा उन लोग के
0: पोजिशन
1: रिकॉग्नाइज करना सब हमने के देजा ट्रॉफी भी मिलल बा रिकॉग्निशन हमने के काम में
2: ये तो बधाई के पात्र हमने हाँ
1: सबके सबके सहयोग से
0: हाँ सबके सहयोग कैसे चर्चे बोलना चाहिए सबके सहयोग चाहे ला हाँ और देखा हमने गो एगो लॉजिक भी का जी थोड़ा का जी जनता लोग के लोकाजों मिली एगो लॉजिक रहल का एक्सप्रेस में पब्लिक कर लिया है जा उन लोग भी हाउ भी सके जा पर एक माजे को मैं तीन कुन देखे आवला में और देखा कैसे अब बोली बन से कैसे ओजोन ई भी लिए बाहम निके श्रम क्लिमाटिक के जहाँ तो जा कैसे अभी श्रम सगरो संसार भर ती में अभी देखा हाल ही में नेपाल में का होल सागन के बात रहल इंडोनेशिया में देखा हुआ बर अभी नहीं जानते से इसकी श्रम क्लिमाटिक से है इवोल्यूशन होल में श्रम क्लिमाटिक तिलमा सगरो अपने की क्लिमा डिबालांसे कर दे हुआ था नेपोत कोनो जाफे सकी हो
2: तो
0: एगो कारण मजे कैसे हमने के चैनल मजे जिमिनी करी के इवोल्यूशन हमने के जोन गैस बोल जी एच जी एमिशन जोन बोली राजा ओके चैनल जिमिनी करी के तो कैसे सक बजा जिमिनी करे हमने को सैप कदम सक बसले गांची सक प्लांटे उमो एगो गांची जितना मजे रही सक प्लांटे करे
2: तो आज की चर्चा से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है ओजोन परत केवल वातावरण का कोई मतलब दूर का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारी सुरक्षा के से सीधे जुड़ी हुई है तो अच्छी बात ये है कि दुनिया ने मिलकर एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या से निपटने का उदाहरण भी पेश किया है तो आज इस प्रोग्राम से आप लोगों को जितनी जानकारियाँ प्राप्त हुई हमें पूर्ण आशा है कि इससे आप लोग ज़रूर लाभ उठाएंगे और ख़ास करके हमारे जो दो अतिथि सम्मानित अतिथिगण जो है डॉक्टर राजेंद्र फुलमान जी और श्री दिनकर छमीलाल जी आपकी इन सारी जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपर्णा दीपशिखा और श्री राजेंद्र मूल्या के सहयोग के लिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर विराम देते हैं फिर मिलेंगे नमस्कार
1: नमस्कार.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे कोरोना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। अगस्त के अंत तक मॉरिशस में 2,73,021 लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे थे। ये स्टेट एज पेंशन लागू होने से पहले का आखिरी आधिकारिक आंकड़ा है। नई व्यवस्था अगले साल 1 जनवरी से लागू होने वाली है। कुल आबादी के अनुपात में देखें तो ये संख्या लगभग हर 5 लोगों में एक व्यक्ति के बराबर है। आंकड़ों में देश की बढ़ती उम्रदराज आबादी की तस्वीर भी दिखाई देती है। 5,335 पेंशन लाभार्थियों की उम्र 90 वर्ष या उससे अधिक है, जबकि इनमें 242 लोग 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। लेकिन सवाल सिर्फ पेंशन पाने वालों की संख्या का नहीं है, सवाल ये भी है कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था का सरकारी वित्त पर कितना बोझ है और प्रस्तावित सुधार के लागू होने के बाद वास्तव में क्या बदलाव आएगा। मॉरिशस में हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि HSC की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। इस साल 8,000 से ज़्यादा उम्मीदवार HSC परीक्षा में भाग ले रहे हैं। आज फूड स्टडीज़ की परीक्षा ली गई। प्रवीण जगनाथ आज दिन के 10:30 लाइन बाराक्स जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री को CCID की ओर से चल रही मुस्तासलीक्स मामले की जांच के सिलसिले में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवीण जगनाथ से इससे पहले 1 सितंबर को करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ये जांच कथित तौर पर संचार को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की खरीद और उनके संभावित इस्तेमाल से जुड़ी है। विदेश में गाजा पट्टी में रात के दौरान युद्ध से क्षतिग्रस्त एक इमारत के ढह जाने से कम 21 लोगों की मौत हुई है। बचाव कर्मियों और चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 8 बच्चे शामिल हैं। इमारत पहले से ही युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त थी। उसके अचानक ढहने के बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान चलाया गया। स्थानीय बचाव दल और चिकित्सा कर्मी प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।

0: क्वाज़ी मुटाइलुंग त्याउज में 68 साल की 68-year-old श्रीमती गीता इमरित पैदाइश नामबर्टन जो माला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान ला क्वाज़ी मुटाइलुंग त्याउज से उठाकर दाह संस्कार के लिए तेमिनिस्त योली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 12:30 PM। रूट रॉयल मेबर्ग में 59 साल के 59-year-old श्री देवराज वेंकिया जो राजेश से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पिंकी वेंकिया के मकान रूट रॉयल मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस्ट की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: You can find 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, 10:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। और भक्ति धारा कार्यक्रम को हम प्रसारित करने वाले हैं इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब मन में शक्ति होता है तो हमें साहस प्राप्त होता है। तो चलिए, सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म भी हो। इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

चलिए श्रोताओं, 10:11 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। गुरुवार का दिन है आज, और आपको पता है कि गुरुवार का दिन जो है समर्पित है भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु जो है वो पालनहार है, और बहुत ही श्रद्धापूर्वक आज का दिन जो है उनकी उपासना हम करते हैं। और आपको पता है कि विष्णु के कई अवतार हुए हैं, और इनमें से जो है मुख्य जो है हम कृष्ण की बात करते हैं। तो आइए आप सभी सुनने वालों के नाम भगवान कृष्ण के नाम पे ये बहुत ही प्यारा सा भक्तिगान समस्त सुनने वालों के लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: दस बजकर 18 मिनट हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं, और इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम। और आपको पता है कि भगवान विष्णु के अवतारों में से एक और है भगवान राम को, और राम जो है उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा में रहकर सभी कार्य करते थे और उनकी प्रजा जो है उन्हें बेहद ही पसंद भी करते थे। तो चलिए उनके नाम पे ये प्यारा सा भक्ति गान अनूप जलोटा के स्वर पर।

चलिए श्रोताओ, बहुत ही भक्ति भाव के साथ आप हमारा साथ दे रहे हैं इस समय। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है इस समय। तो चलिए श्रोताओ, चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान आपके नाम हम करे हैं इस समय। हरि यानि भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है माने जाते हैं। भक्तों के लिए हरि का स्मरण मन को सुकून देने वाला और जीवन में विश्वास जगाने वाला होता है। जब मन परेशान हो, जब रास्ते कठिन लगे, तब हरि का नाम हमें धैर्य और आशा की याद दिलाता है। भक्ति में शक्ति है और हरि के नाम में प्रेम की मिठास भी है। तो आइए, 10:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपको पता है, जब हम हरे विष्णु की बात करते हैं तो हम साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करते हैं। और माँ लक्ष्मी के 8 दिव्य रूप होती है, जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। माँ लक्ष्मी केवल धन समृद्धि की देवी ही नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग सुख, शक्ति और मंगलमय गुणों का भी प्रतीक है। और अष्ट लक्ष्मी की भक्ति हमें ये भी याद जो है दिलाती है कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और संतान, विजय और अच्छे संस्कारों से भी आती है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

चलिए श्रोताओ, गुरुवार का दिन समर्पित है भगवान साई बाबा को। और आपको पता है कि भगवान साई बाबा जो है हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रेम और इंसानियत का भाव सबके लिए एक होना चाहिए। और साई बाबा की दो प्रमुख शिक्षाएं हैं, श्रद्धा यानी विश्वास और सबूरी यानी धैर्य। जीवन में कठिन समय आए तो विश्वास और धैर्य बनाए रखना हमें सीखना चाहिए। 10:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। ये प्यारा सा भक्ति गान मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आप सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, चंद भक्ति गीत हम साईं बाबा जी पर आधारित इस कार्यक्रम में प्रसारित कर रहे हैं। वैसे सेवा और करुणा, इन दोनों को हमें अपनाना चाहिए हमारी जिंदगी में। जरूरतमंदों को सहायता करना, दुखी के प्रति दया रखना और दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करना सच्ची भक्ति का हिस्सा है। और सच्चे कर्म पर भी साईं बाबा बल देते हैं। साईं बाबा की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है कि ईमानदारी, विनम्रता और अच्छे कर्मों को जीवन में स्थान देना चाहिए।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। आइए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। विलनुआ और पिछबेलिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है। वैसे इन इलाकों के रहने वाले निवासियों को भी रेजिडेंस विलनुआ मार्सेलमा वीओएस

Délice Villenoir, Marcellement Ruisseau. Délice Villenoir, Marcellement Blueprint Villenoir और NHDC पिछली बेलिया के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 18 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं और जाने से पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुबह सवेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। तो चलिए, एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। हम आपको इशारा करें कि कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे, समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में। हमारी तरफ से आप सभी को शुभ दिवस।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे कोरोना जी। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। 13 साल के अंतराल के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा रहा है। इस पहल का मकसद विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा की भावना और मिलजुल कर रहने यानी सामाजिक एकजुटता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षक नवंबर में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थियों के साथ काम करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे ताकि उनमें नागरिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति योगदान की भावना विकसित हो। पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के अनुसार कीमतों में ये बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी है, जिसने खेती की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। ठंड, तेज हवाएं और पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो रही है और बाजार में उपलब्ध सब्जियों की मात्रा भी कम हुई है। मॉरिशस में हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि HSC की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। इस साल 8,000 से ज़्यादा उम्मीदवार HSC परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। विदेश में अमेरिका में ब्याज दर में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में दरों में आगे भी इजाफा किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने ब्याज दर में कटौती लाने की मांग की थी। और गजा पट्टी में रात के दौरान युद्ध से क्षतिग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 21 लोगों की मौत हुई है। बचाव कर्मियों और चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ समय बाद शोक समाचार। रूट रॉयल कोयराची में 52 साल की 52-year-old बीबी शहनाज अखुराली पैदाइशी नाम सिलारू जो मिमी से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके पिता मामाद सिलारू के मकान रॉयल रोड कोयराची से निकाल कर दफनाने के लिए बामाशा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। पेचिकॉ फिनिक्स में 92 साल की 92-year-old श्रीमती परमावती बिसुनुत जो माउती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी बेटी दीपा साहिबदी के मकान पेचिकॉ फिनिक्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए अलीब्रियों कास्टेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। और लाक्वाजे मोटाइलोंग में मोटाइलोंग

0: उंगटिया रूज में 68 साल की 68-year-old श्रीमती गीता इमरित, श्रीमती गीता इमरित पैदाइश नाम बर्टन जो माला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान लाख्वाजे मोटाए लोग त्यागोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए त्यामिनी स्थियोली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ ऑफ पर्सन, शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: शम्मे फरोजा।

जब हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाते हैं, जब हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाते हैं तो अल्लाह भी हमें आज़माता है उन चीज़ों को दूर करके जो हमें बहुत पसंद होती हैं। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में हसब मामूल आप समाअत फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक, हम नात सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, जबकि क़ुरान पाक कहता है कामयाब हो गए ईमान वाले। तो आइए अपने ईमान को तरोताज़ा करने के लिए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह साबा का दूसरा हिस्सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

0: और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये कयामत का वादा कब पूरा होगा। कह दो कि तुमसे एक ऐसे दिन का वादा है जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे और न आगे बढ़ोगे।
1: वो

और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि हम न तो इस कुरान को मानेंगे और न उन किताबों को जो इससे पहले की हैं, और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान ले आते। जो लोग बड़े बन बैठे थे वो कमजोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था? नहीं, बल्कि तुम ही गुनाहगार थे।

और कमजोर लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं, और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में तौक डाल देंगे, बस जो अमाल वो करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा

और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने यह जरूर कहा कि तुम लोग जो चीज देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के, और यह भी कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद रखते हैं और हमको अजाब नहीं होगा।

0: और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुमको हमसे करीब कर दें। हाँ, हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा। ऐसे ही लोगों को उनके अमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो अमन चैन से बुलंद बाला इमारतों में रहेंगे। जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में हमें हराने की कोशिश करते हैं वो गिरफ्तार अजाब किए जाएंगे।
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
0: कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा, वो सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है।

और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न कि ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे। तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता, और हम जालिमों से कहेंगे कि अब दोजख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो।

और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं, ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीजों की तुम्हारे बाप दादा परस्तिश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे। और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है। और काफिरों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और हमने न तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हों, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने तकजीब की थी, और जो कुछ हमने उनको दिया था ये उसके दसवें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने मेरे पैगंबरों को झुटलाया, सो मेरा अजाब कैसा हुआ।

कह दो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो जाओ, फिर गौर करो तुम्हारे रफीक यानी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का जुनून नहीं, ये तो तुमको सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाले हैं। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा, मेरा सिला अल्लाह ही के जिम्मे है और वो हर चीज से खबरदार है।

कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक ही नाजिल करता है और वो गैब की बातों का जानने वाला है। कह दो कि हक आ चुका और बातिल न तो पहले कुछ कर सकता है और न दोबारा कुछ करेगा। कह दो कि अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का जरर मुझी को है, और अगर हिदायत पर हूं तो ये उस वही के तुफैल है जो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ भेजता है, बेशक वो सुनने वाला है, नजदीक है।

और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए, और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को कैसे पहुंच सकता है, जबकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे।

0: और इनमें और इनकी ख्वाहिशों में पर्दा हायल कर दिया गया, जैसा कि पहले इनके हम जिन्सों से किया गया, वो भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े।
1: सदकल्लाज़ीम। पाक परवरदिगार हमें कसरत से तिलावत क़ुरान पाक की तौफीक अता फरमा, और जिस जिसने इस तिलावत में हिस्सा लिया उन सबको इसका सवाब दे, आमीन। मायूस ना हो जब दिल पे गमों का बोझ पड़े और आँख से अशकों की लड़ी बहे, जब राहें सारी बंद लगें और अपनी दुआएं बेअसर लगें। मायूस ना हो, तेरा रब तेरे साथ है, हर रात के बाद रोशन सहर की बात है, वो रब जो अंधेरों में नूर करता है, टूटे हुए दिल को पुरसकून करता है, जो अश्क तेरी आँख से चुपके से गिरा वो भी तेरे रब की निगाह से ना छुपा। तू मांगता रह, तू सब्र करता रह, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखता रह, मुमकिन है जिसे तू देर से समझता है, तेरा रब उसे हक में तेरे लिए बेहतर करता है। कभी आजमाइश भी रहमत बन जाती है, कभी ठोकर मंजिल का पता बताती है, कभी बंदरवाजे हिफाजत होते हैं और कुछ इंतज़ार भी इबादत होते हैं। ना कह के अब कोई रास्ता नहीं, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो चाहे तो सहरा में फूल खिला दे, वो चाहे तो गम को खुशी बना दे, बस सजदे में अपने दिल की बात कह, अपने रब के सामने हर हाल कह, वो सुनता है खामोश दुआओं को भी, वो जानता है दिल की सदाओं को भी। मायूस ना हो, उम्मीद का दामन थाम लो, अपने हर गम में अल्लाह का नाम लो, जो रब पे भरोसा करके चल पड़ा वो तन्हा कहाँ, उसका अल्लाह है ना, बस तुम मायूस ना हो।

जी हाँ, मायूसी एक कुफ्र है। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल जानता है। कभी कभी देर सवेर हो जाती है, लेकिन हमारी मांगी हुई तमाम दुआएं कबूल ज़रूर होती हैं। बस मायूस नहीं होना चाहिए। मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:31 होने को हैं। जुमेरात का दिन है, सितंबर की 17 तारीख है और माहे रबीउस्सानी की आज 5 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए अपने पैगाम भेज सकते हैं। आइए इसी के साथ समाप्त फरमाइए चंद ऐलानात। लेडीज़ महफिले नात एसोसिएशन ऑफ क्यूपिप की जानिब से सना खाने मुस्तफ़ा मोहतरमा इशरत तस्नीम, जो कि तशरीफ़ लाई हैं कराची पाकिस्तान से, महफिले नात का एहतमाम किया जा रहा है उनकी सरपरस्ती में। जी हाँ, आज जुमेरात 17 सितंबर दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद हॉल फिनिक्स में। इसके अलावा सनीचर 19 सितंबर सुन्नी सेंटर हॉल कास्टिल में दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर। इसके अलावा इतवार 20 सितंबर मुस्लिम म्यूचुअल एड एसोसिएशन हॉल ग्लेन पार्क वाकवा में भी दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर। इसके अलावा आपको बताते चलें के आलिमा शमीमा सुब्रा जी की सरपरस्ती में मजालिस रबीउल आखिर का एहतमाम किया जा रहा है। रोज़ाना सुबह 10 बजे बैतुन्नूर सिटी मौशाल में। और आपको एक और बात भी बता दें कि शनिचर 19 सितंबर और इतवार 20 सितंबर की मजालिस मुलतवी हो गई हैं, लेकिन 21, 22 और 23 सितंबर को मजालिस का अहतमाम किया गया है आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में। इसके अलावा बुध 23 सितंबर, जी हाँ बुध 23 सितंबर बाद नमाज़े फजर से असर तक दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा इरादन लेन ब्रीज़े वेजिया में बाले मुबारक हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अहतमाम किया जा रहा है। आप तमाम ख़वातीन हज़रात को शिरकत की दावत है।

बातें समाअत फरमाइए। जो आदमी हंसता है उसका रोब कम हो जाता है, जो मजाक ज़्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं, जो बातें ज़्यादा करता है उसकी लग्जिशें ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी लग्जिशें ज़्यादा हो जाती हैं उसकी हया कम हो जाती है, और जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेज़गारी कम हो जाती है, जिसकी परहेज़गारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है।

कहता है, तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मोजिज़ों की इंतहा कर दूंगा। जी हाँ, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। जी हाँ, मरियम भी गिव्य जगोंपो से अपने भाई सऊद के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए, उनके घर में बरकत अता फरमाए। इसके अलावा सऊद की बेगम, उनकी बहन, उनके भाई, उनके भांजे भांजियाँ और उनके पोते पोतियाँ सब उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा वाकवा से मुस्लिम जी भाई हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। लावेनिया से हाफिज़ बाबा साहिब हुसैन बर्क्स और बाबा साहिब फैमिली के लिए इन्होंने एक कलाम की फरमाइश की थी। इसके अलावा बुआशफ़ी से फ़ातिमा कुतबाली मरहूम शोहर हाजी अब्दुल वाहिद कुतबाली, मरहूम बेटे एहसान कुतबाली, मरहूम नजरुल पीर बक्स नवाज से, जी हम मरहूम नजरुल पीर बक्स के लिए दुआए मगफ़रत की गुजारिश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा इनके नवाज से नजविया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्र पर गए हुए हैं, नानी, उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके उम्र में आसानियाँ अता फरमाए। इसके अलावा फ़ातिमा कुतबाली दुआगो हैं उन तमाम बच्चों के लिए जिनके इम्तिहानात जल्द शुरू होने वाले हैं। हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन तमाम बच्चों को हिम्मत हौसला अता फरमाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियां कर सकें। और ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगी हन्ना का, अल्लाह पाक हन्ना को उनके इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। जी हाँ, इसके अलावा शफीक, जी हाँ शफीक लावेनिया सैपिया से एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। और जी हाँ, शफीक ने एक कलाम की फरमाइश की है और मोहसिन भी हमसे एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं जिसे आप थोड़ी देर में समात फरमाएंगे। इसके अलावा ईसा अलैहि सवाब की गुजारिश की गई है। मुजम्मिल ने अपने वालिद मरहूम इमाम जमशेद इसमदौ के लिए ईसा अलैहि सवाब की गुजारिश की है। कातखोबोन की यास्मीन के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत जमील अता फरमाए। वो हमारा प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद करती हैं जिसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं।

इन कुछ चीज़ें नसीब का हिस्सा नहीं होती, पर हमारा सब्र और हमारा यकीन हमें उस मंजिल तक ले जाता है जहाँ कुन होता है और अल्लाह ताला फरमा

बगदाद की ज़मीन का वो रोशन चिराग हैं, गौसे आज़म अहले वफ़ा के सुराग हैं, इल्म अमल तख्वा व तहारत की शान थे, दीन नबी के सच्चे वो एक तर्जुमान थे, क़ुरान की सदा थी नसीहत में आपके, खुशबुए मुस्तफ़ा थी मोहब्बत में आपके, भटके हुए दिलों को खुदा से मिला दिया, ज़िक्रे इलाही से दिलों को जगा दिया, दुनिया की चाह छोड़ के रब को जो पा गए, राहे खुदा में खुद को सरापा मिटा गए, सब्रो रज़ा का दर्स ज़माने को दे गए, इखलाक की महक से दिलों को महका दिया, ए गौसे पाक आपकी सीरत का ये पयाम, अल्लाह से हो इश्क नबी पर हो दुरूदो सलाम, हमको भी रब की राह पे चलना नसीब हो, सुन्नत से अपनी ज़िंदगी सजाना नसीब हो, अल्लाह हमें नेकों की सोहबत अता करे, ईमान पर हयात हो ईमान पर वफात। मौज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:54 हो चुके हैं, हमें चंद और पैगाम मौसूल हुए हैं। जी हाँ, रसूल भी नंदू, और इसके अलावा समीना, समीर और नाज़

बसमा और जुलिया और लगान फैमिली साबिर सहान के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फरमाए। इसके अलावा रसूल भी नंदू भी दुआगो हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो कि इम्तिहानात देने वाले हैं, कि अल्लाह पाक तमाम बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाए। इसके अलावा वो अपनी फैमिली के मरहूमीन के लिए भी दुआ की गुजारिश कर रही हैं। और बौलो से करीमुल्ला फैमिलीज़ माह रबीउल आखिर के मौके पर, जी हाँ उर्स गौसे पाक के मौके पर भी वो दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। जितने भी लोग इस वक्त बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जितने भी लोग जो किसी भी मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, और जितने भी लोग वफात पा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: गुरुवार 17 सितंबर 2:45 हो चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का, आप सभी प्यारे श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। मैं हूँ सुमिता, आप सबका साथ देने के लिए हम आ चुके हैं आपकी पसंद इस प्रोग्राम को लेकर। सो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। गुरुवार का दिन अच्छे से बीत रहा है और अभी से लेकर 4 बजे तक आपका भरपूर हम साथ देने वाले हैं, आपका मनोरंजन करने वाले हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। और चलिए जल्दी जल्दी, यहाँ पर हमें तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस हम तक पहुँचाइए। यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं 4028085 पर, साथ ही आपके मैसेजेस 5251700005 पर। तो चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए इस प्रोग्राम के साथ।

0: तो चलिए खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जारी है
1: आपकी पसंद।
0: आपकी पसंद इस प्रोग्राम में 4028085 और साथ ही यहाँ पर अगला जो गाना है डीप रिवर की शिवरानी जी आपके नाम हम करते हैं इस समय हमें सुन रही हैं और डोली फिल्म का जो तराना है आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में सजना साथ निभाना इस गाने की जो है फरमाइश इन्होंने की है सभी के नाम और साथ ही इस समय ज्योति जी शाटे बनारस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है आपके नाम, साथ में सुरेखा है, रेखा है, आशनी है, सभी मधुब परिवारों के लिए। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर, तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 17 सितंबर, घड़े मिला लीजिए, सपहर के 3 बज रहे हैं। समय हुआ है समाचार का।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। सुपहर 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में कुछ तरह के कैंसर के इलाज के लिए अब नैनो नाइफ नाम की नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल कैंसर सेंटर में इस तरीके से चुनिंदा मरीजों का इलाज पारंपरिक ऑपरेशन के बिना किया जा सकता है। इस इलाज में बहुत पतली सुइयों की मदद से कैंसर की गांठ को निशाना बनाया जाता है। इससे आसपास के

0: स्वस्थ हिस्सों को कम नुकसान पहुंचता है और मरीज को ठीक होने में भी आसानी होती है। हालांकि ये इलाज हर मरीज के लिए नहीं है। कैंसर की गांठ कितनी बड़ी है और शरीर के किस हिस्से में है, इसे देखने के बाद ही डॉक्टर फैसला करते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड लामशानिन हर 3 महीने में मॉरीशस आएंगे। वे मरीजों के इलाज में सहयोग देने के साथ यहाँ के डॉक्टरों को प्रशिक्षित भी करेंगे। गन्ने की खोई से अब घावों के लिए खास पट्टी बनाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरीशस के शोधकर्ता इसे एक त्वचा रोग से होने वाले घावों के इलाज के लिए तैयार कर रही है। इस पट्टी में कीटाणुओं से लड़ने वाला एक तत्व भी होगा। शोध सफल रहा तो इसे बीमारी से प्रभावित देशों में उपलब्ध कराया जा सकेगा। मॉरीशस में पिछले 2 हफ्तों के दौरान ज्यादातर सब्जियों के दाम 15-30% तक बढ़े हैं। बाजारों और बड़े बिक्री केंद्रों में इसका असर दिखा जा रहा है। छोटे किसानों के अनुसार ठंड, तेज हवा और पानी की कमी के कारण फसलों की बढ़त धीमी हुई है। इससे बाजार में सब्जियों की उपलब्धता भी कम हुई है। हालांकि फिलहाल ज्यादा चिंता की बात नहीं है। खेतों में मौजूद सब्जियां अक्टूबर के मध्य तक देश की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। 13 साल बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नाइस की वापसी हो रही है। इसके प्रारंभिक चरण में ग्रेड आठ के 200 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। 16 से 28 नवंबर तक चलने वाली इस पहल में छात्रों को अनुशासन, जिम्मेदारी, सेवा भावना, मिलजुल कर रहने और सामूहिक रूप से काम करने की सीख दी जाएगी। पहले सप्ताह में देश के 4 क्षेत्रों में अलग अलग गतिविधियां और प्रशिक्षण होंगे। इसके बाद छात्र 1 सप्ताह तक आवासीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसकी शुरुआत से पहले प्रशिक्षकों के लिए 3 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि 22 दिन बाद भी लापता लोगों की तलाश जारी है और अभी तक सैकड़ों लोगों की लाशें नहीं मिली हैं। वहीं भी मलबे में दबे शव निकाल रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Trop de douce mais, Despero Entry Road, trop de douce mais, 69 years old की श्रीमती तिलक की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बगालू, लोग उन्हीं बेटिया के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे उनके भांजे रवीन बगालू के मकान थोदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे 8:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: Radio Mauritius.
3: 819 kHz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.
4: गुरुवार 17 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए 3:05। यहाँ पर होने को है आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से 2 विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। विल्नुआ पिचिबेलिया यहाँ पर और यहाँ के इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, खासकर रेसिडेंस विल्नुआ मौसलमा VRS विल्नुआ मौसलमा रिसो डेलिस विल्नुआ मौसलमा ब्लू प्रिंट विल्नुआ NHDC पिची बेलेयर यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल शुक्रवार 18 सितंबर को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर बिजली के सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही मेबक के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, मेबक के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रुई डेलिस, रुई नियोन, फ्लामोत, शॉपाई, रुई सोंगोलेट, रुई सेमातेन, रुई बॉम्बू, रुई सुफ्रेन, लापास, गणपत लेन, गोपाला लेन यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर शनिवार 19 सितंबर को सुबह के साढ़े आठ से सपहर के चार बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं

0: के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी दो विज्ञप्तियां सीबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
0: समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, और इतने प्यार से आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम फ़ोन कॉल्स और आपके सभी मैसेजेस के लिए। भी यहाँ पर एक मैसेज आया है रमेश जी की ओर से, जो ग्रॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कह रहे कि आंसू और मुस्कान फिल्म का एक तराना हो जाए जो किशोर दा की आवाज़ में है, गुरुजनों गुनी जानो रे, ये जो गाना है इन्होंने मांगा है यहाँ पर अपने सभी परिवार के नाम और जितने सुनने वाले इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, ये गाना इनकी ओर से सभी के लिए है।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, बड़ा ही मज़ेदार गाना था ये। रमेश जी ने इस गाने की फरमाइश की थी। कभी कभार ऐसे होते कि कुछ गाने होते हैं जो बहुत बहुत बहुत अरसे बाद सुनते हैं। ये गाना कुछ ऐसा ही था, उन गानों में से था। चलिए, यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है और अगले तराने की ओर बढ़ते हैं। अगला जो गाना है, एक रोमांटिक सा तराना है, आई मिलन की बेला, इस फिल्म से लिया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में। यहाँ पर रिहाना जी ने इस खूबसूरत गीत की फरमाइश की है, जो फीनिक्स से हमें सुन रही है, हमारा साथ दे रही है। चलिए, इसी खूबसूरत गाने को हम ज्योति जी आपके नाम करते हैं। यूनियन पार्क से आप हमारे साथ जुड़ी है और गाना जाएगा प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और केनिता के नाम।

0: की पसंद।
1: अजी प्यार पर बस कहाँ किसका चलता है, जिस पर दिल आ जाता है प्यार तो उसी से हो जाता है ना। और प्यार जो है ज़िंदगी के हर पहलू को खूबसूरत बना देता है। और अभी के लिए आपका बेशुमार प्यार यहाँ पर बरस रहा है आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के ज़रिए। आपके इस प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। और अगला तराना प्यारी बड़ी बहन इंदिरा कालाओ के नाम, जिनका जन्मदिन था। इंदिरा जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सभी प्यारी बहनों की ओर से, शीला है, शांता है, जासू है, सुखवंती है, मोन है, सभी बहनों ने आपको ढेर सारा प्यार भेजा है। और यही, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सभी कालाओ परिवार, सभी फुकियाचंद परिवार, सभी पोकन परिवारों की ओर से। और ये खूबसूरत सा तराना आपके नाम, और जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन की हार्दिक बधाई आप सभी को रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, जन्मदिन का मौका हो या कोई खास मौका हो, जब अपनों की बात आती है तो हर कोई साथ में मिलकर खुशी के इस माहौल में जुड़ जाता है, और जब सब साथ में मिलते हैं तो अपने आप ये खुशियाँ जो है हज़ार गुना और बढ़ जाती है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इन खूबसूरत लम्हों को आप हमारे साथ बांटते हैं इसके लिए भी। और अभी के लिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तराना साधना जी आपके नाम हम करते हैं, रिवेदे क्रियोल से हमें सुन रही है। सिलसिला फिल्म का ये जो तराना है, आपने कहा अगर हो सके तो आपके पूरे परिवार के लिए, खासकर आपके पति है देवानंद, बेटे हैं नीतीश, कुशल, करण, बेटियाँ हैं अनुषा, मनशा, माद, सतीश, बहू कबीना, संहिता है साथ में, है जय, तेजल, गौरव, क्रियान, और सबसे छोटे हैं लड्डू गोपाल, ताश्विक है, सभी जीवन परिवार के नाम। और यहाँ पर रिवेदे क्रियोल, मादालबेया, यूनियन पार्क, लारोजा और दुबई के आपके जितने भी परिवार है सभी के नाम इस गाने को हम करेंगे। और यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है, और ऐसे में आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अगला तराना आपके नाम जाता है, रूमा है, आरती है, इंदिरा है, भाई है राकेश, धीरज, बेटा है नुमलेश, बेटी है कीर्तिना, शिमला जी बेलरोज से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद शिमला जी, यही गाना आपके लिए भी हम करते हैं। तो चलिए, आपकी पसंद ये प्रोग्राम है, मैं हूँ सुमी, आप सबका साथ दे रही हूँ, 4 बजे तक चलेगा ये प्रोग्राम।

सुनते। तो चलिए, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे, सिलसिला फिल्म से लिया गया लता जी और साथियों की आवाज़ों में। और अब बारी है इस अगले तराने की। अगला तराना जो है यहाँ पर इसकी फरमाइश आई है आशा जानू की ओर से, जो इस समय कुतेज से हमारा साथ दे रही है। अगला गाना उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खिलाड़ी फिल्म का तराना हो जाए इनके मामा कुमारी के लिए, साथ में नेफ्यू है शुभम, ऋषभ, दीदी है आरती, जीजू है राज, सभी जानू परिवार के नाम। यही गाना इनकी ओर से चित्रा जी, भाई विजय और सभी सुनने वालों के लिए, इनके सभी दोस्तों के लिए भी जो हमारा साथ इस समय दे रहे हैं।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, सबके दिल में कहीं ना कहीं ईश्वर बसता है। और यहाँ पर चले गानों का ये जो कारवा है, इसमें जोड़ते हैं इस अगले तराने को। तकदीर फिल्म का ये जो अगला गाना है, यहाँ पर जाता है मानिता जी आपके नाम। मानिता जी, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि आपको गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और आपने लिखा है कि आप अगला गाना आपकी मामा प्यारी माँ सुमंती के नाम, जिनकी आपको बहुत याद आ रही है, और साथ में आपके सभी बहनों के लिए भी। आरती है, सचिता है, बबीता है, रेखा है, भाई है सत्यम, भाभी है उषा, और सभी परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए, तकदीर फिल्म का ये गाना आपकी फरमाइश पर चल पड़ा।

आपकी पसंद। चले ये गाने हैं ही ऐसे, शायद सुनते सुनते किसी न किसी की याद आ ही जाती है ना। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। सच्चा झूठा फिल्म का जो अगला गीत है लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में यहाँ पर, और ये गाना जाता है माला जी पिचित्रित्रित से, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गणपति बप्पा मोरिया कह रही है सभी को, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाना जाता है आपकी बेटी रीमा के नाम, बेटा है दीपक, साथ में आपके पति है ईश्वर और सभी जरी परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वापस सुदेवी जी भी हमारा साथ दे रही हैं और कह रही है कि हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। अगला गाना आपकी त्रियोले की दीदी लालिता के नाम, कुशल परिवार के नाम, दीदी सुनीता है, शोभा है, देवीना है, माला है, बिंदु है, मालिंगा से सभी बड़े प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में है भाभी प्रतिमा, शीला, राधा, बबीता, सभी राम रतन परिवार, सभी कुवारू परिवार, सभी रघुबर परिवार और सभी जलू परिवारों के नाम ये अगला तराना चल पड़ा।

0: आपकी पसंद।
1: और चलिए यहाँ पर आज बहुत से सुनने वाले अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो ऐसे में जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं सासू माँ रीता दुमन को, जिनका आज जन्मदिन है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी बहू विश्वानी जी की ओर से, सभी बच्चों की ओर से। यहाँ पर इंदिरा है, शारदा है, साथ में नीला है, प्रतिभा है, शोभा है, गीता गजाधर है, और यहाँ पर खुशबू भी है। फिर यहाँ पर यही गाना जाता है, यानी कि ये जो जन्मदिन का गाना हम चलाने वाले हैं यही जाएगा आपकी बेटी सिया के नाम और पूजा जी की ओर से। पूजा जी जो लॉन्ग माउंटेन से हमारा साथ दे रही है, उनकी बेटी सिया का जन्मदिन है, और सिया आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मामा पूजा, पापा गिरीश, भाई आयुष और पूरे परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार आपके नाम। यहाँ पर आज ही जन्मदिन है नेफ्यू श्याम का, श्याम आपको जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यूनियन पार्क की गीता जी की ओर से, मामा है सावित्री, साथ में है बबीता, कविता, संजना, विजना और सभी मुर्गावा परिवार की ओर से श्याम आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ये तराना आपके लिए भी।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ये खूबसूरत सा गाना उन सभी के नाम था जिनका भी जन्मदिन है, जो भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ पर बड़े ही प्यार से उषा जी ब्रह्मस्थान से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ परी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर मौदालबिया से अनिता जी भी हमारा साथ दे रही है, साथ में है करुणा, अमृता, कविता, सभी दोस्तों के नाम। अगला गाना हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर ट्रियोले से हमेशा की तरह सभी बंधु परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके भी प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चले इस अगले गाने के साथ आज का हमारा आपकी पसंद का ये जो सफ़र है ये ख़त्म होने को चला। जाते जाते यही गाना हम सुनीता जी घोंगप के आपके नाम करते हैं, हमेशा आप हमारा साथ देती है और कहती है कि बस किसी भी गाने में मेरा नाम जोड़ दीजिए। तो चलिए ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं। और यहाँ पर जो है शकुन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये गाना आपके लिए भी। आफिस जी भी हमेशा हमें सुनते रहती है, कभी कभार कहती है लाइन नहीं लगती है, तो आफिस जी जाते जाते ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं। और इसी गाने के साथ आपकी पसंद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जो है वो जारी रहेगी रेडियो मॉरिशस पर। इस गाने के तुरंत बाद जो है शुरुआत होगी भक्ति सागर इस कार्यक्रम की, तो आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस पर।
0: आपकी पसंद।

गुरुवार 17 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। और यहाँ से आरंभ होता है भक्ति गीतों के कार्यक्रम भक्ति सागर का। अभी से लेकर 5 बजे तक इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे। और आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी, डॉक्टर शांति महाबीर जी की प्रस्तुति में। कहते हैं जीवन हमें मिला है तो जीवन को व्यतीत भी करना चाहिए, जीवन को अच्छे से जीना भी चाहिए, जीवन के हर एक क्षणों का लाभ उठाना चाहिए, जीवन में व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ में जीवन के अनमोल क्षणों को गंवाना नहीं चाहिए। कभी कभार जीवन में जो हो रहा होता है उनके चलते हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, राह भटक जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ते रहना बहुत आवश्यक होता है। तो बस जो भी हो रहा हो, जैसे भी हो रहा हो, अपने आप को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपने जीवन के हर एक क्षण को ईश्वर को सौंप दे। ईश्वर को ही कहे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें ये सुंदर जीवन दिया है तो हमारा मार्गदर्शन भी आप ही करें।

इसलिए भगवान गणेश जो है सभी के जीवन से सभी विघ्नों को दूर करे और सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे। अष्ट गुरुवार का दिन है, भगवान साई की पूजा अर्चना होती है। तो चलिए हम भी इस अगले भक्ति गीत द्वारा भगवान साई का ध्यान करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, 4:15 बज रहे हैं और आइए अब भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय हुआ है हम बढ़े कार्यक्रम पीयूष धारा की ओर और इसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में, तो आइए उनको सुनते हैं।

0: आयुष तारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।
1: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सबका सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदि कवि वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित रामायण की उत्तम कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं।

रामायण की कथा को विस्तार देते हुए वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि श्री राम और सीता विवाह के बंधन में बंधने वाले ही हैं। परिवार के सदस्य, प्रजा, मित्रगण सभी प्रसन्न हैं। सब राम और सीता की विलक्षण जोड़ी की प्रशंसा करते हैं। गुरुजन और साधु संन्यासियों के साथ बैठकर अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ और मिथिला नरेश, राजा जनक एक दूसरे के कुल की जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराज दशरथ की ओर से इक्ष्वाकु कुल के देवता महर्षि वशिष्ठ और पुरोहितगण उनकी कुल परंपरा का परिचय देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मनु प्रजापति पूर्वमिक्ष्वाकोस्तु मनोसुतः तमीक्ष्वाको मयोध्यायाम राजानम विद्धे पूर्वकम्। श्री राम के कुल का विशद परिचय देते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे जनक जी महाराज, अयोध्या में राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजाओं का पहला पुरुष इक्ष्वाकु थे। राजा इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या में इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र हुए राजा कुक्षि। राजा कुक्षि के पुत्र हुए राजा विकुक्षि। राजा विकुक्षि के पुत्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी थे और उनका नाम था बाण। राजा बाण के पुत्र राजा अनरण्य महातेजस्वी और महायशस्वी हुए। राजा अनरण्य का पुत्र राजा पृथु हुए। राजा पृथु भी अयोध्या के महाशक्तिशाली शासक थे। राजा पृथु के पुत्र त्रिशंकु नाम से संसार भर में विख्यात हुए। राजा त्रिशंकु भी शूरवीर थे, अयोध्या के परम प्रतापी राजा थे। इनका पुत्र धुंधुमार भी महायशस्वी राजा हुए। राजा धुंधुमार के पुत्र युवनाश्व नाम से जाने गए। युवनाश्व तेजस्वी और महारथी थे। इक्ष्वाकु कुल को गौरव प्रदान करने वाले थे। इनके पुत्र राजा मानधाता संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हुए। राजा मानधाता ने कुल की कीर्ति को फैलाने के लिए एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम उन्होंने सुसंधि रखा। राजा सुसंधि के पुत्र हुए ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के पुत्र हुए भरत और भरत के पुत्र हुए राजा असित। श्रोताओं, श्री राम की वंशावली का परिचय देते हुए महर्षि वशिष्ठ और अयोध्या के पुरोहित कहते हैं कि हे विदेहराज जनक जी, राजा असित के पुत्र का नाम रखा गया सगर। राजा सगर के पुत्र हुए राजा असमंज। राजा असमंज के पुत्र अंशुमान। राजा अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ कहलाए। इसी राजा भगीरथ के पोते हुए रघु। बुद्धि और शक्ति में राजा रघु अतुल थे, अप्रतिम थे।

इस राजा का इतना प्रभाव संसार पर पड़ा कि उनके बाद कुल में जितने भी राजा हुए वे सब रघुवंशी ही कहलाए। इसी रघुवंश में आगे चलकर राजा सुदर्शन, राजा अग्निवर्ण, राजा अम्बरीश, राजा नहुष, राजा ययाति और राजा नाभाग हुए। राजा नाभाग के पुत्र अजय नाम से विख्यात हुए। राजा अजय ही श्री राम के पितामह हुए। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ अपने पिता अजय की भांति ही उच्च पराक्रम वाले उद्यमी और पुरुषार्थी राजा हैं। हे जनक जी महाराज, ये दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण परम प्रतापी रघुवंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज दशरथ जैसे अजेय परमवीर पुरुष के पुत्र हैं। श्रोताओ, इक्ष्वाकु कुल का परिचय देने के बाद वशिष्ठ ऋषि महाराज दशरथ की ओर से कहते हैं कि आदि वंश विशुद्धानाम राज्याम परम धर्मिणाम इक्ष्वाकु कुल जातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम कि हे नरश्रेष्ठ विदेहराज जनक जी, श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए परमवीर कुमार हैं। मैं इन दोनों के लिए आपकी दोनों पुत्रियों का हाथ मांगता हूँ। आपकी दोनों कन्याएं सीता और उर्मिला गुण, कर्म और स्वभाव में महाराज दशरथ के पुत्रों के अनुरूप हैं। लक्ष्मण के लिए उर्मिला और श्री राम के लिए मैं सीता को मांगता हूँ। श्रोताओ, वशिष्ठ जी का प्रस्ताव सुनकर राजा जनक जी हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, मैं तो धन्य हो गया। मेरी दोनों कन्याएं रघुवंश की वधुएं बनी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। मेरी दोनों कन्याओं के विवाह से पहले मेरा भी कर्तव्य है कि मैं मेरे कुल की परंपरा आपके सामने रखूं। हे महर्षि, आपने राजा निमि का नाम तो सुना ही होगा। राजा निमि बहुत ही सत्यवादी और धर्मात्मा राजा थे। अपनी सत्यवादिता के कारण वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। वे ही हमारे कुल के पूर्वज हैं। महाराज निमि के पुत्र हुए मिथि और महाराज मिथि के पुत्र हुए जनक। इसी जनक राजा के नाम पर हमारे कुल के सभी राजा जनक कहलाते हैं। प्रथम जनक के पुत्र उदावसु नाम से जाने गए। राजा उदावसु के पुत्र का नाम था नंदीवर्धन। राजा नंदीवर्धन धर्मात्मा पुरुष थे। उनके पुत्र सुकेतु भी उन्हीं की तरह पवित्रता की मूर्ति थे। राजा सुकेतु के पुत्र देवरात भी बड़े ही धर्मात्मा हुए। हे महाराज दशरथ, निमि कुल के राजाओं ने धर्म को सदैव ऊंचा रखा। राजा बृहद्रथ अच्छे व्यवस्थापक थे, साथ ही वे ऋषि भी थे। राजर्षि बृहद्रथ के पुत्र महावीर नाम से विख्यात हुए। राजा महावीर अत्यंत वीर और प्रतापी थे। राजा महावीर ने अपने सुपुत्र का नाम रखा सुधृति। राजा सुधृति सत्य पराक्रमी और धैर्यवान थे। राजा सुधृति के पुत्र हुए धृष्टकेतु और धृष्टकेतु के पुत्र हुए राजर्षि हर्यश्व। राजर्षि हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के प्रतिंधक, प्रतिंधक के कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के देवमिढ, देवमिढ के विबुध और विबुध के पुत्र हुए महीध्रक। ये सभी राजा उच्च कोटि के कर्मणा क्षत्रिय थे
और धार्मिकता को जीवन में

में प्राथमिकता देने वाले सज्जन पुरुष थे। धर्मात्मा महिध्रक के पुत्र महाबली कीर्तिरात हुए और राजा कीर्तिरात के पुत्र राजर्षि महारोमा हुए। महारोमा के यहाँ भी धर्मात्मा स्वर्ण रोमा ने जन्म लिया। धर्म की साक्षात मूर्ति राजा स्वर्ण रोमा का पुत्र हर्ष रोमा भी अपने पूर्वजों की भांति उच्च कोटि के ऋषि हुए। और हे महाराज दशरथ, मैं और मेरे अनुज कुशध्वज, हम उसी धर्मात्मा हर्ष रोमा के पुत्र हैं। मैं महाराज हर्ष रोमा का बड़ा पुत्र शीरध्वज हूँ और सांकाश्य का राजा कुशध्वज उनके छोटे पुत्र हैं। जनक मिथिला के राजाओं की वंशगत उपाधि है। हम दोनों भाई भी अपने पूर्वजों की भांति ही धर्म ध्वजा को ऊंचा रखने में विश्वास करते हैं। जीवन की सात्विकता को अखंड रखना ही हमारा उद्देश्य है। श्रोताओं, अपने कुल का परिचय देने के बाद विदेहराज जनक जी महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अति प्रेम से अपने कुल की दो कन्याएं आपको वधू रूप में सौंपता हूँ। सीता देवकन्या के समान है, उर्मिला भी सर्वोत्तम गुण संपन्न कन्या हैं। ये दोनों बहनें धैर्य, सत्य और धर्म की मूर्ति हैं। श्रोता भाई बहनों, रामायण की महान कथा धर्म को ऊंचा रखने की शिक्षा देती है। जो व्यक्ति धर्म को आधार बना लेता है, वह अपने जीवन का उत्कर्ष करता है, पग पग पर उन्नत होता है। रामायण की कथा को अगले कार्यक्रम में हम आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं। तब तक के लिए अंजू और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं।
1: भक्ति सागर,
0: और भक्ति सागर इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। देखते ही देखते सपेर के 4:35 हो रहे हैं यहाँ पर। और श्रोताओं, ईश्वर के प्रति भक्ति जो है हमें शक्ति प्रदान करती है। कभी कभी इन्हीं ईश्वर के सामने हम कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, कभी कभी इन्हीं ईश्वर से हमें शक्ति भी मिलती है। यही ईश्वर है जो हमारे सभी भावों को समझते हैं, यही ईश्वर है जो हमारी सभी भावनाओं को समझते हैं। इसलिए कभी भी हमें ईश्वर से नाराज़ नहीं होना चाहिए, ईश्वर से निराश नहीं होना चाहिए, और जीवन के हर पग पर कहना चाहिए कि हे ईश्वर, आप हमारे साथ चलें, हमारा मार्गदर्शन करें। यदि हमसे कोई भूल चूक हो रही हो तो हमें सही राह दिखाएं।

जी हाँ, ईश्वर का नाम भजो, यही तो है जो हमें हमारे सारे दुखों से, सारे परेशानियों से पार लगाता है। कहते हैं ना कि जीवन में जब हम कहीं अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, राह नज़र नहीं आता है, चारों ओर अंधकार छा जाता है, तो ईश्वर की शरण ही है जो हमें सहायता प्रदान करती है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हमें जीवन के हर अंधकार से निकाल कर हमें प्रकाश की ओर ले जाती है।

ईश्वर की आराधना कहे, ईश्वर की भक्ति कहे, ये सभी जो है हमारे जीवन में शांति प्रदान करते हैं। ये हमारे जीवन को करुणा से भरते हैं। ये हमारे जीवन में उन रिक्त स्थानों को भरते हैं कभी कभार जिसे हम बाहर खोजते हैं। कहते हैं ना कि जो कुछ हमें चाहिए होता है वो हमारे भीतर ही होता है। हम सबसे पहले अपने भीतर न खोज कर बाहर खोजते हैं, बाहर ढूंढते रहते हैं, और जब बाहरी खोज से थक जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता है, तब अंत में हम अपने भीतर ढूंढने लगते हैं। लेकिन सब कुछ तो हमारे भीतर है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना। ईश्वर भी तो हमारे भीतर ही बसे हुए हैं। और इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये जो कार्यक्रम है इसकी अंतिम प्रस्तुति की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस अंतिम आरती के साथ, इस अंतिम भेंट के साथ आज के भक्ति सागर कार्यक्रम को हम समाप्त करने जा रहे हैं। और हमारा और आपका साथ बना रहेगा क्योंकि 5 बजे से शुरुआत होगी सदाबहार गीतों की। तो भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में आपने इतने प्रेम से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये अंतिम प्रस्तुति के साथ चलिए इसका

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
2: शुक्रवार 17 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए, शाम के 5 बजे रहे हैं। एक बार फिर से शुक्रवार नहीं, आज गुरुवार है। माफ़ी चाहते हैं, होता है। चलिए आज है गुरुवार 17 सितंबर, शाम के 5 बज रहे हैं और सदाबहार गीतों को लेकर यहाँ पर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। और हमें पता है कि बड़े ही प्यार से आप भी हमें सुन रहे हैं, तो बस देर किस बात की है। चलिए जुड़ जाइए सदाबहार गीतों के इस एक घंटे के सफ़र में, अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक। खूबसूरत गाने तराने साथ में मिलकर गुनगुनाएंगे। और ऐसे तो फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे सुनने वाले इस समय हमें मैसेज करके बताते हैं कि वो गाना सुनते सुनते क्या काम कर रहे हैं, क्या पका रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो बस बेशक अपने मैसेजेस आप हम तक पहुंचा ही सकते हैं 5251700005 पर। अभी के लिए इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप तो ऐसे न थे, फिल्म से लिया गया, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, यह है सदाबहार गीतों का प्रोग्राम। थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमां, सितारा फिल्म का ये बड़ा ही खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता जी और भूपिंदर जी की आवाज़ों में। कभी कभार कुछ गानों में मानो जीवन की सच्चाई छुपी हुई होती है, ये गाना भी कुछ ऐसा ही था। बस कहते हैं थोड़ी ही चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और इस थोड़े में ही गुजारा हो जाता है, क्योंकि थोड़े के साथ जब प्यार हो तो ये थोड़ा अपने आप में इतना हो जाता है कि जीने के लिए काफ़ी होता है। कहते हैं ना, जीवन में प्यार हो और बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत कहीं कमी रह जाए, प्यार हर उस कमी को पूरा कर देता है। लेकिन जहाँ पर सब कुछ हो और प्यार ना हो, तो सब कुछ होते हुए भी ये कमी हमेशा महसूस होती है। अभी के लिए चलिए गानों का ये जो कारवां है इसे आगे ले जाते हैं।

चलिए यहाँ पर गानों का ये सिलसिला आगे ले जाते हैं। इस समय सुबी जी वाकवा से हमारा साथ दे रही है और गानों को पसंद कर रही है। कह रही है कि काफ़ी दिन हो गया उन्होंने हमारा टिकटॉक लाइव नहीं देखा। चलिए जल्द ही मौका मिलेगा तो टिकटॉक लाइव पर हम ज़रूर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। और इस समय गानों को पसंद कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, आशा जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत सा गीत, लता जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे। और यकीनन कभी कभार जो है किस्मत से हम लड़ नहीं पाते हैं, है ना। कभी कभार किस्मत में जो लिखा होता है उसे तो जीना ही पड़ता है, लेकिन किस्मत में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। और कभी कभार किस्मत इस तरह से पलटती है कि हम सोच भी नहीं सकते, और इतनी सारी खुशियाँ मिल जाती है किस्मत में कि क्या कहे, है ना। चलिए अभी के लिए जो गाना है आपके नाम करते हैं, और यहाँ पर बड़े ही प्यार से मौदाल बिया से अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और कह रही कि गाना सुनकर मन खुश हो गया। चलिए आप खुश तो हम भी खुश।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: और चलिए अभी के लिए कुदरत फिल्म का ये गाना यहाँ पर चल पड़ा है एनेट और किशोरदा की आवाजों में। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो जीते रहो।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, छोड़ो सनम काहे का गम, ये कभी कभार इन गम में, इस दुख में, इस परेशानी में ज़िंदगी का इतना पल बीत जाता है कि हम क्या कहें, और बस चिंता करते रहते हैं, और चिंता से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए जो होना है वो तो होकर ही रहता है। हम अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव नज़रिए से देखें, और ये पॉजिटिविटी ही जीवन को और भी सुंदर बनाती है। चलिए अभी के लिए जो है, बड़े ही प्यार से शोभा जी वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तेरी बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम के लिए, बहुत बढ़िया गाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी आपके भी इस सुंदर मैसेज के लिए। चलिए, शाम का वक्त है, घर का काम करते करते, गानों को सुनते सुनते आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और अब बारी है इस अगले तराने की। नमक हलाल फिल्म का ये गाना है आशा जी, पप्पी लाहिरी और शशि कपूर जी की आवाज़ों में, रात बाकी बात बाकी। जी हाँ, लेकिन अभी के लिए इस गाने के साथ हमारी आपकी मुलाकात जो है ख़त्म होने को जा रही है, और इस गाने के साथ सदाबहार गीतों का ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आपने इतने प्यार से आज भी हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर, और हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। जी हाँ, कल हम आपसे मिलने आएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच, सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में। तो आप हमेशा यूं ही MBC रेडियो पर हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ जब भी मौका मिले आप जुड़ते रहिए।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगालिगा में पिछले कुछ दिनों से बिजली, रोटी की आपूर्ति, इंटरनेट और मरीजों को मॉरिशस लाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। स्थानीय निवासियों ने इनका स्थायी समाधान करने की अपील की। हिंदुजा ग्रुप ने रिन्यूएबल ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के सेक्टर में मॉरिशस के साथ सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई। इसके अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति में गिश्ते इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन। IBL ग्रुप की स्कॉट लिमिटेड की पहल है, इसमें करीब 30 कंपनियां शामिल। इसका उद्देश्य औद्योगिक सेक्टर और M2 मोटरवे के किनारे वृक्षारोपण पर हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना है। मॉरिशस में आज विश्व स्वच्छता दिवस की शुरुआत हुई। 20 सितंबर के विश्व सफाई अभियान से पहले देश भर में करीब 60 समूह सफाई मुहिम में जुटे। क्वेंटोपिमो का SSO डिसेबिलिटी सर्विसेज सेंटर भी पिछले 6 वर्षों से 5 से 45 वर्ष के युवाओं और वयस्कों के साथ इसमें भाग ले रहा है। शिवसागर राम गुलाम की 126वीं जयंती पर जोन 2 के करीब 300 छात्रों ने उनके जीवन संघर्ष और एक स्वतंत्र व समृद्ध मॉरिशस के सपने को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम आज सुबह कोंडिमा स्टेट कॉलेज में हुआ। प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने कनाडा के यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा का स्वागत किया।

0: इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। पिछले कुछ दिनों से अगालिगा में समस्याएं फिर बढ़ गई हैं। बिजली की कटौती, खराब ओवन के कारण रोटी की आपूर्ति में दिक्कत, इंटरनेट कनेक्शन बाधित होना और मरीजों को मॉरिशस लाने में परेशानी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। द्वीप समूह के अलग थलग होने के कारण रोजमर्रा की ये समस्याएं जल्द ही गंभीर रूप ले सकती हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान खोजे जाएं ताकि उन्हें बार बार इन्हीं परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि भारतीय कारोबारी समूह हिंदुजा ग्रुप ने रिन्यूएबल ऊर्जा में निवेश करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेक्टर में मॉरिशस के साथ सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। इसके अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने आज दोपहर बाद पोटली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। मॉरिशस में कैंसर के इलाज में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रोफेसर एडवर्ड लामचांगलिन नेशनल कैंसर सेंटर में नैनो नाइफ टेक्निक के रूप में अपनी विशेषज्ञता लेकर आए हैं। ये जटिल और अप्रत्याशित कैंसर के इलाज के लिए एक अत्याधुनिक टेक्निक है।
1: नैनो नाइफ सिस्टम का प्रयोग कैंसरग्रस्त ट्यूमर के इलाज के लिए किया जा सकता है। ये एक नया और अनोखा इलाज है जो परंपरागत सर्जरी की जगह ले रहा है। ये एक अल्ट्रासाउंड सुई है जिसके चलते काटने की जरूरत नहीं है और इससे मरीज बेहतर तरीके से ठीक भी हो सकता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आश्ले चिन्या ने कहा, लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रसिद्ध रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एडवर्ड लामचांगलिन इन दिनों मॉरिशस में हैं। नैनो नाइफ के पायनियर हैं, मॉरिशन मूल के हैं और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में ये नई और अनोखी प्रणाली शुरू की है। इन दिनों वे लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और वे हर 3 महीने देश आने का इरादा रखते हैं ताकि नेशनल कैंसर सेंटर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सके और ये इलाज कर सके। प्रोफेसर एडवर्ड लामचांगलिन ने कहा,
2: Everything at each step needs to be organized properly, for example.
1: हर चरण पर ठीक से आयोजन करना बहुत जरूरी है और ऐसा करना चाहिए। जैसे प्री एडमिशन न सिर्फ प्रक्रियाएं बल्कि मरीज के ठीक होने के बाद की प्रक्रिया भी इससे संबंधित है। वार्ड में कर्मचारियों की ओर से देखभाल जरूरी है, भविष्य में फॉलोअप भी है। हर
0: पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति में रिश्ते इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के दूसरे चरण का औपचारिक उद्घाटन। आईबीएल ग्रुप की कंपनी स्कॉट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई इस परियोजना को लगभग 30 कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य औद्योगिक सेक्टर और M2 मोटरवे के किनारे पेड़ लगाकर हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना है। स्थानीय निकायों और अधिकारियों द्वारा समर्पित ये पहल एक अधिक हरित भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।
3: रिष्टिया के औद्योगिक इलाके में पिछले कुछ सालों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। ये पहल सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी के तहत रिष्टिया इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है। इस परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत इसी सितंबर महीने में हो रही है। इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर आईबीएल ग्रुप की कंपनी स्कॉट लिमिटेड में किए गए। स्कॉट लिमिटेड इस परियोजना की शुरुआत करने वाली कंपनी है। आईबीएल ग्रुप के डेप्यूटी सीईओ पैट्रिस रोबिया कहते हैं,
4: On a rassemblé aujourd'hui tous les partenaires économiques de la zone.
3: इलाके के सभी आर्थिक साझेदारों को एकत्रित किया है। हर एक अपने स्तर पर अपनी भूमिका निभाएगा ताकि पौधे रोपकर वे इस इलाके को हरा भरा कर सके। दूसरा चरण इसी कार्य को जारी रखेगा। 5-10 साल पहले ये पेड़ यहाँ नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि इस तरह की परियोजना सफल हो सकती है।

0: एक इलाके में पेड़ लगाने के अलावा इस परियोजना के तहत गिश्तिया में मोटोवे के किनारे और आसपास के इलाकों में भी पेड़ लगाए जाएंगे। गिश्तिया की करीब 30 कंपनियां इस पहल में हिस्सा ले रही हैं। इसमें सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर काम कर रहे हैं। मरीन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के दिजिगे सिनापो कहते हैं, इस सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया था, सभी पेड़ काट दिए गए थे, इसमें फिर से पौधे लगाए गए हैं। मूवमा एंटी पोल्यूशन के अध्यक्ष ग्रेगोरी निंग कहते हैं, हम ऊपर जमा पानी को नदी में जाने से रोकते हैं, इसके लिए पौधे लगाए हैं ताकि पानी मिट्टी में समा सके और वो होल्स में जा सके। पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान के अनुसार स्वेच्छा से पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाने वाली इस पहल को पूरे देश में दोहराया जाना चाहिए। मंत्री राजेश भगवान कहते हैं, इसमें भाग लेने वाले हर उद्योग इस इलाके के लिए कटिबद्धता ले रहा है। मोगी फैसिलिटीज 1.2 किलोमीटर के दायरे तक सफाई की जिम्मेदारी ले रही है। सरकार इसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है।
1: Un véritable engagement continu. Et c'est exactement la culture que le gouvernement veut promouvoir.
0: इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की शुरुआत से अब तक गिश्तिया और आसपास के इलाकों में 600 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं।
2: मॉरिशस में आज विश्व स्वच्छता दिवस की शुरुआत हो गई है। आगामी रविवार 20 सितंबर को होने वाले विश्व सफाई अभियान से पहले देश के विभिन्न इलाकों में लगभग 60 समूह इस मुहिम में जुट गए हैं। पोइंट-ओ-पिमो में त्रियोलेका एसएसओ डिसेबिलिटी सर्विसेज सेंटर 5 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं और वयस्कों के साथ मिलकर पिछले लगभग 6 वर्षों से इस पहल में भाग ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ से डेटा इंटरसेप्शन और निगरानी के लिए कथित अवैध उपकरणों के मामले में पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार उन्होंने सवालों के जवाब देने से इनकार किया। वे आज सुबह करीब 10:30 बजे से लाइन बैराक्स पहुंचे और करीब 2 घंटे बाद घर लौटे। उनके अनुसार उनके अनुरोध पर आगे की पूछताछ बाद की तारीख तक स्थगित कर दी गई है। नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना के सिलसिले में राष्ट्रीय सभा में 9 बिल पेश किए जाएंगे। इस शुक्रवार को मंत्रिपरिषद में पहले इन पर विस्तार से विचार किया जाएगा। आज रात इनमें से एक विधेयक पर विशेष नजर डाली जा रही है, फाइनेंशियल क्राइम्स बिल, जो वित्तीय अपराधों से जुड़े कई अपराधों को एक ही कानून के तहत एकजुट करेगा। गोपियो इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने कल ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। चर्चा का मुख्य विषय मॉरिशस के उच्च दर्जे को फिर से पुष्ट करना था, जिसके तहत इसे भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा इस संगठन के युवाओं की एक बैठक भी हर 2 साल में मॉरिशस में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। केवल नगर से स्टेट हाउस रिजवी तक शिव सागर राम गुलाम का सफर आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। उनकी 126वीं जयंती के मौके पर जोन 2 के करीब 300 छात्रों ने उनके जीवन, उनके संघर्ष और एक स्वतंत्र, एकजुट और समृद्ध मॉरिशस के उनके सपने को फिर से जीवंत किया। आज सुबह कोंदेमास स्टेट कॉलेज में युवाओं का देश प्रेम और रचनात्मकता देखने को मिली। अशिता रघु।
0: सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि इतिहास में अपनी पहचान बनाने वाले उस इंसान को याद किया गया जो इस 7वें शशि सागर राम गुलाम मेमोरियल लेक्चर का केंद्र रहा। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई अन्य महानुभाव मौजूद थे। कई किस्सों और यादों के जरिए मॉरिशस विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर निरंजन गोपी ने शशि सागर राम गुलाम की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें वे आम लोगों के करीब नजर आते हैं। उनकी सादगी, दूसरों के प्रति उनकी भलाई की भावना और लोगों का ख्याल रखने की आदत पर खास तौर पर रोशनी डाली गई। महानता बेशक इंसान के उन गुणों से जुड़ी होती है जिनकी जड़ उसके दिल और सोच में होती है। एक व्यक्ति ने अपनी माँ से जुड़ा एक किस्सा सुनाया जो बेलिया के उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन केवल की तरफ से फेंका गया एक छोटा सा पत्थर गलती से उन्हें लग गया। केवल ने सिर्फ उस लड़की से माफी ही नहीं मांगी।

0: की बल्कि नुकसान की भरपाई के तौर पर उसे एक छोटा सा तोहफा भी दिया। मेरे एक दोस्त ने सचिव सागर रामगुलाम से उस समय इलाज कराया था जब उनकी उम्र करीब 34 साल की थी। ये बात 1992 या 1993 की है। एक दिन मेरे दोस्त के पिता अपने ट्रक में चावल की बोरियां लेकर जा रहे थे। ये चावल फोंजीसाक में बेचने के लिए थे जहां वे रहते थे। जब वे देफोश गली से गुजर रहे थे तभी अचानक बारिश शुरू हुई। उन्होंने सचिव सागर रामगुलाम के घर के सामने ट्रक रोका और दरवाजा खटखटाया। सचिव सागर रामगुलाम ने दरवाजा खोला और उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने चावल की बोरियां अपने गैरेज में उतारने का सुझाव दिया ताकि बारिश से चावल खराब न हो। बारिश रुकने के बाद वे दोबारा अपना सफर शुरू कर सके थे। ये यादें राष्ट्रपिता सचिव सागर रामगुलाम के व्यक्तित्व का एक अलग पहलू सामने लाती हैं। पेशे से डॉक्टर सचिव सागर रामगुलाम का शिक्षा और सामाजिक तरक्की से भी गहरा जुड़ाव था। गवाहियों के अनुसार उनका ये मानवीय पक्ष उनके राजनीतिक जीवन के साथ हमेशा जुड़ा रहा।
1: As a doctor, his vocation was to relieve human suffering and save lives.
0: एक डॉक्टर के तौर पर उनका उद्देश्य इंसान की तकलीफ कम करना और लोगों की जान बचाना था। राजनीति और इंसानी मामलों में उनकी गहरी दिलचस्पी उन्हें अपने देशवासियों की शिकायतें और परेशानियां सुनने के लिए प्रेरित करती थी। वे उस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहते थे जिसकी वजह से कई लोग तकलीफों और मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उनकी महानता इस बात से भी थी कि वे अपना उद्देश्य पूरा करने में कामयाब रहे। अपने देश को आज़ादी की ओर ले जाना, वो भी समाज में मौजूद बंटवारे और विरोध का सामना करते हुए। इस मौके पर संगीत के जरिए भी सचिव सागर रामगुलाम को श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में एक गीत पेश किया गया। ये सम्मान सचिव सागर रामगुलाम की 126वीं जयंती से कुछ दिन पहले आयोजित किया गया। उनका जन्म 18 सितंबर को हुआ था। ये मौका नई पीढ़ी तक उनके राजनीतिक सफर के अलावा उन मूल्यों और विचारों को पहचानने का भी है जिन्होंने उनकी जिंदगी और मॉरिशस के इतिहास को आकार दिया।
2: तो ये रिपोर्ट आप सुन रहे थे सचिव सागर रामगुलाम की जयंती के उपलक्ष्य में उनके सम्मान में उनकी यादों को उजागर करने के लिए और उनके मूल्यों तथा सिद्धांतों को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए एक मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया था। गोपी इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चर्चा का मुख्य विषय मॉरिशस के उस दर्जे को फिर से पुष्ट करना था जिसके तहत इसे भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा इस संगठन के युवाओं की एक बैठक भी हर दो साल में मॉरिशस में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया।
0: ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी गोपियो इंटरनेशनल दुनिया भर में करीब 3,50,00,000 सदस्यों को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ हुई इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों को एकजुट करने में मॉरिशस की खास भूमिका पर चर्चा की। गोपियो इंटरनेशनल के महासचिव रविंदरन अर्जुनन कहते हैं, 1996 में हमने मॉरिशस को PIO यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की राजधानी घोषित किया था। हम इसे दोहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ इसके लिए एक स्मारक के निर्माण के बारे में बात की। हमने हर दो साल पर मॉरिशस में डायस्पोरा के नौजवानों को एकत्र करने के बारे में भी बात की। गोपियो 30 साल से ज्यादा समय से कायम है, अब अगली पीढ़ी को तैयार करने का समय आ गया है। पिछले सप्ताहांत मॉरिशस में इस संगठन का 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
2: मॉरिशस में फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये और थाईलैंड के नए राजदूत एकापोल फुलपीपात ने स्टेट हाउस रेजी में राष्ट्रपति धर्मगोकुल को अपने परिचय पत्र सौंपे। फ्रांसीसी राजनयिक विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग और आदान प्रदान को मजबूत करना चाहते हैं।
3: फ्रांस के नए राजदूत ने औपचारिक रूप से मॉरिशस में अपना पद संभालना शुरू किया। कार्यसूची में कई क्षेत्रों में सहयोग की बात शामिल जैसे शिक्षा, जल, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, जलवायु। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित। अन्य मुद्दा इलाकाई सहयोग 2027 के लिए मॉरिशस रेनियन जॉइंट कमीशन निर्धारित। फ्रांस के राजदूत अलेक्सिस लॉये ने कहा,
4: Notre relation s'inscrit dans un contexte régional qui est le sud-ouest de l'océan Indien.
3: हमारा संबंध इलाकाई परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत है। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में

0: महासागर में समान चुनौतियों एवं खतरों का सामना करते हैं। हमें अपने संसाधनों की रक्षा करनी है, ब्लू इकोनॉमी को लेकर सभी प्रकार के व्यापार से संघर्ष करना है, ये सब एक साथ मिलकर कर सकते हैं। हिंद महासागर आयोग के जरिए ये सब किया जा रहा है, फ्रांस भी इसमें भाग लेगा, पिछले अप्रैल महीने से अध्यक्षता संभाल रहा है। फ्रांसीसी प्राथमिकताओं पर कार्य करेंगे, जैसे कि समुद्री सुरक्षा, प्राकृतिक खतरों का संचालन और आत्मनिर्भरता तथा खाद्य सुरक्षा। इसके साथ ही वार्ता की बदौलत पिछले साल से राष्ट्रपति दौरे से तय कई पहल से संबंधित जायजा भी लिया गया।
1: मॉरिशस विश्वविद्यालय में शोधकर्ता त्वचा संबंधी घावों के लिए एक नया बैंडेज तैयार कर रहे हैं। इसकी खूबी ये है कि इसे गन्ने की खोई यानी बगस से बनाया गया है और इसमें एक एंटीबैक्टीरियल घटक शामिल है। ये शोध कई स्थानीय संगठनों को एक साथ लाता है और अंततः इस बीमारी से प्रभावित देशों में इसके व्यावसायिक उत्पादन का रास्ता खोल सकता है। क्या होगा यदि मॉरिशस के तट पर मौजूद जहाजों के मलबे समुद्री जीवन के लिए असली आश्रय बन जाएं? मॉरिशस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 5 जहाज के मलबों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि आर्टिफिशियल चट्टानों की भूमिका निभा सकती हैं वे, और जो मछलियों को छिपने की जगह और मूंगों को विकसित होने के लिए सतह प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। कनाडा के प्रधानमंत्री मैकोनी ने यूरोपीय संसद में अपने भाषण में कहा कि यूरोप और कनाडा एक साथ मिलकर अधिक मजबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूरोपीय संघ की इस महत्वाकांक्षा का स्वागत करते हैं जिसके तहत कनाडा को यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बनाया जाना है। इसी के साथ अन्य खबरें विस्तार से इस रिपोर्ट में विधि मासी बोरन के साथ।
2: गाजा पट्टी में रात भर में एक युद्ध क्षतिग्रस्त इमारत के ढह जाने से 8 बच्चों सहित कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाजा शहर के तल अल हवा इलाके की 6 मंजिला इमारत एक साल पहले हुए इजरायली हमले के बाद से एक तरफ खतरनाक रूप से झुक गई थी। उन्होंने बताया कि विस्थापित परिवार मजबूरी और बेबसी के कारण इसके अंदर रह रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एक मिस्र की टीम ने बचे हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उपकरणों की कमी के कारण राहत और बचाव कार्य धीमी गति से चल रहा है। रूस ने 16-17 सितंबर की रात को कीव पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जिससे यूक्रेन की राजधानी में एक शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचा और कम से कम 18 लोग घायल हो गए। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमरीकी सरकार ने एक व्यापक कानून का समर्थन किया है जिसके तहत रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक शुल्क लगाया जा सकेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वन डर लेयन ने बुधवार को कनाडा को यूरोपीय संघ का पहला सहयोगी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा जो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के कारण ओटावा को यूरोप के करीब ला रहा है। उत्तरी कैरोलिना के शॉलट में बोलते हुए ट्रंप ने सुझाव दिया कि कनाडा को यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बनने की अनुमति देना एक शत्रुतापूर्ण कृत्य हो सकता है और इस प्रस्तावित कदम के जवाब में यूरोपीय संघ पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी।
1: और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करीन्स के दक्षिण पूर्व में एक एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज़ हवाओं का असर है। पूर्वानुमान है कि आज रात को और कल सुबह के दौरान देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बरसात होगी। अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। दिन के दौरान देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। विशेषकर दक्षिण और पूर्व में मौसम समुद्र ज्यादा खराब रहेगा। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14-16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21-24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम साहली इलाकों पर 18-21 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 26-29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: La Marie Okuleme, 69 years old की, 69 साल की माया देवी गर्भरन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें माया के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल शुक्रवार को दिन के 11 बजे एलियनसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। ब्रांच रोड रिश्मो फ्लाक में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के नंदेव चिनातो की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें पोलो के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी मिकाएला चिनातो के मकान रिश्मो फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावेंचियो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मोसलमो फेव्यू मोदालबियामी 83 साल की 83 years old की कर्मा लुमदेवी अरुमुगम वे पहले हेड टीचर की हैसियत से काम करती थी। उनके अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनकी बेटी बीना कुंजल के मकान मौदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:30 PM। आले जाक्लिस कालिये में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड के कुष्मावती घुरा की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामदयाल, लोग उन्हें कुमारी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के कल शुक्रवार को सुबह के 9:30 बजे उनके पति सुखदेव घुरा के मकान लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। अवेन्यू तेलफेयर बेलरोज कैट्रोबोन में हेम नारायण सोबुरा 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड के हेम नारायण सोबुरा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे एलियनसन बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। रोटन नंबर 1 बैतो काटोबोन में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के प्रवींद्रनाथ रघुनंदन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें रवीन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनके भाई महेश रघुनंदन के मकान काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। मामजेलो कोयराची में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के रितानंद रामादीन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विजय के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान कोयराची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 24 hours a day.
1: रेडियो मर्शस पर लाइव प्रसारण जारी है, आइए अभी के लिए सुनते हैं दो विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सीवा बापू स्टेट सेकेंडरी स्कूल के आसपास और वॉरियर्स रेस्ट मोबाइल विंग्स एडमिरल्टी रेजिडेंस के आसपास, वहां पर उन सभी रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए दूसरी विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही। ग्लेनपार्क के रहने वालों को, खासकर इन इलाकों के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है जो है रॉयल रोड ग्लेनपार्क के कुछ हिस्से, मुंबई रोड नंबर 1, 2 और 3 और वहां के आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक वहाँ बिजली में कटौती लाई जाएगी मरम्मत कार्यों की वजह से। और ग्लेनपार्क के रहने वालों को यहाँ पर सूचित किया जा रहा है, जहाँ वो रहते हैं गौपा रोड ग्लेनपार्क, उन रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि उन जगहों पर दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक वहाँ पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। तो उन सभी जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी मरम्मत कार्यों की वजह से, और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे तो बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। ये थी दो विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
4: आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में विद्या समिति विद्यार्थियों तथा निरीक्षकों को सूचित करता है कि छठी कक्षा की परीक्षा शनिवार 19 सितंबर 2026 को प्रातः 9:30 बजे से 11:15 बजे तक निम्न परीक्षा केंद्रों में होगी। डीएवी कॉलेज 1 महर्षि दयानंद स्ट्रीट पोर्ट लुइस, सुंदर मानरा खान कॉलेज लॉन्ग माउंटेन, कालबास गवर्नमेंट स्कूल स्कूल लेन कालबास, डी सिवराज गवर्नमेंट स्कूल नेवियर मिल रॉयल रोड ट्रियोले, पॉइंटोपीमा गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड पॉइंटोपीमा ट्रियोले, प्लेंदे पपाय गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड प्लेंदे पपाय, डी हरी गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड गुडलैंड्स, भीवा महादेव गवर्नमेंट स्कूल रिवेजुगांपा, रामस्वरूप रामगति आर्यन वैदिक एडेड स्कूल रॉयल रोड लावॉन्च, सुखदेव बिसनदयाल गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड लालमाटी, राजकुमार गजादर गवर्नमेंट स्कूल सेंट्रल फ्लाक, मोहनलाल मोहित गवर्नमेंट स्कूल सेंपिया, पंडित काशीनाथ किश्तो आर्यन वैदिक हिंदू एडेड स्कूल सेंपोल वाकवा, जिपे गवर्नमेंट स्कूल आर्य समाज स्ट्रीट मेबर्ग और सुयाक आर्य समाज मंदिर। निरीक्षकों से नम्र निवेदन है कि परीक्षा के आधे घंटे पूर्व अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचने की कृपा करें। श्री सनातन धार्मीय ब्राह्मण महासभा द्वारा भारतीय विद्या भवन के सहयोग से शनिवार 19 सितंबर और रविवार 20 सितंबर 2026 को क्यूपिप कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज और हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन में सरल संस्कृत की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। बालबोध, प्रारंभ और प्रवेश की परीक्षाएं रविवार को 9 से 2:30 बजे होगी क्यूपिप कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज और हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन में। परिचय और कोविड की परीक्षा शनिवार 19 और रविवार 20 सितंबर को 9 से 2:30 बजे के बीच क्यूपिप कॉलेज में।
0: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
5: 毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台9月17号的节目，我是您今天的节目主持人张大卫。今天是歌曲节目，希望在这三十

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर

जय श्री राम, राधे राधे, सादर प्रणाम। इसने भरा स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में भजते प्रभु का नाम। मैं हूँ देविना और आज फिर हम जुड़े हैं कुछ खूबसूरत सुंदर आध्यात्मिक विचारों, कुछ मधुर भजनों तथा प्रभु के स्मरण के साथ। तो चलिए, तो अपने मन को शांत करने का, अपने विचारों को सुंदर बनाने का तथा कुछ पल अपने प्रभु के चरणों में बिताने का वक्त आ गया है। तो आइए कुछ देर के लिए दुनिया की चिंताओं को किनारे रखते हैं, आंखें बंद करते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं तथा दिल से कहते हैं, हे प्रभु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि शायद उसमें भी आपकी कोई सुंदर योजना छिपी है।

श्रोताओ, जीवन में परिस्थितियाँ सदा हमारे अनुसार नहीं होती। कभी प्रसन्नता आती है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। कभी अपने साथ होते हैं तो कभी अकेलापन में हम रहते हैं। परंतु आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, परिस्थितियाँ बदलने से पहले अपने मन को बदलना सीखिए, क्योंकि शांत मन वही है जो तूफान के बीच भी विश्वास बनाए रखता है। जब हमें लगता है कि सब हमारे जो रास्ते हैं बंद हो गए हैं, तभी शायद प्रभु हमारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे होते हैं।

आप सुन रहे हैं भजे प्रभु का नाम कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर। आज हम सब के पास सब कुछ है श्रोताओ, परंतु फिर भी मन बेचैन है। हमारे पास मकान है, घर है, परिवार है, साधन है, फिर भी मन कभी कभी पूछता है मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूँ। शायद इसलिए क्योंकि हम बाहर की चीजों में शांति खोजते हैं, परंतु सच्ची शांति बाहर नहीं हमारे भीतर है। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, कुछ पल मौन में बैठिए, प्रभु का नाम लीजिए, अपने मन से बात कीजिए। हर समस्या का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी प्रभु का मौन भी एक उत्तर होता है।

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहर ऊपर।
1: श्रोताओ, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होना छोड़ दो। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, परंतु जरा उन चीजों को देखिए जो आपके पास है। आपकी सांसें, आपके अपने लोग, आपका परिवार, आपके मित्र, आपका आज का दिन, इन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा।

तो प्यारे श्रोताओ, आज की इस सफर में हमने जाना, मन को शांत रखना है, हर परिस्थिति में विश्वास रखना है, क्षमा करना है, कृतज्ञ रहना है तथा सबसे बढ़कर प्रभु का नाम अपने मन में बसाए रखना है। आज के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेंगे, पुनः मिलेंगे। जब मन थक जाए प्रभु का नाम लीजिए, जब रास्ता न मिले प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु पर विश्वास रखिए तथा जब जीवन सुंदर लगे प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इसी सुंदर भावना के साथ हम आपसे लेते हैं अनुमति, फिर मिलते हैं रेडियो मॉरिशस पर। शुभ रात्रि, सादर प्रणाम।

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता और जो बंदा माफ़ करता है अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है और जो अल्लाह ताला के लिए आजजी अख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद फरमाता है। यह हदीस सखावत के रूहानी और माशरती असरात को बयान करती है। सखावत इंसान के दिल को नर्म और किरदार को बुलंद करती है। बुख़ल इंसान को जलील जबकि सखावत इज़्ज़त की तरफ ले जाती है। दुनिया व आखिरत में अल्लाह की मदद सखी के साथ होती है। सामिन मुहतरम, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक व ताकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए महफिल शब के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी मुलाकात फिर होगी। शब बखैर और खुदा हाफिज़।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात्रि के 9:08 हुए हैं और मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से एक जरूरी सूचना। मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की 115 वाली हॉटलाइन फिलहाल काम नहीं कर रही है। अगर कहीं आग लगने की इमरजेंसी हो तो पुलिस को 112 या 148 पर कॉल करें। हॉटलाइन सर्विस को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है और इस असुविधा के लिए मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज

0: क्षमा प्रार्थी है। भोजपुरी प्रोग्राम अभी शुरू होई के बा 9:09 हो गल बा त एगो जरूरी सूचना भोजपुरी में आप सब खातिर पोंपिया के तरफ से ई सूचना देवल जाता। पोंपिया के जोन 115 होला हॉटलाइन बा ऊ फिलहाल काम नहीं करता और जे कहूँ आग लगे के इमरजेंसी रही त पुलिस के 112 या फिर 148 पर कॉल करिया। हॉटलाइन सर्विस के जल्दी से जल्दी दोबारा फिर से शुरू करे खातिर काम करल जाता। द ई रहल मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से एगो सूचना।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only
4: MBC TV. Rangin programo ka khazana.
5: 1300 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ घने पहाड़ और गहरी खाई। कहते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा शेर यहीं हैं। यहाँ पैदल चलना मना है क्योंकि जिस रास्ते पर शेर के पंजे हों उस पर कोई चलने की हिम्मत नहीं करता।
6: शनिवार 19 सितंबर को MBC 3 पर रात के 9 हिंदी फीचर फिल्म काल, 2006 की मूवी जॉन अब्राहम और विवेक ओबेरॉय पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म काल।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज के रात है बीफे 17 सितंबर 2026 के रात 9:12 हो गल बा। आप सब कोई बहुत बेसब्री के साथ हमने के इंतजार करा था वजह अपन खास प्रोग्राम के इंतजार भोजपुरी तड़का के करा था वजह। तो हम किरण आज रात आपके साथ देवा था हर बीफे की तरह, और आज के प्रोग्राम भी हमेशा की तरह आप ही लोग के पसंद पर बनल प्लेलिस्ट के चलावल जाए। और पहला गीत आप सब कोई के नाम खास तौर पर जे लोग रोजिल और क्यूपिप से हमने के सुरत हवा जा।

इबकत आप रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़ल हवा आपके मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का चलता जेकर इंतजार आप कोई आप सब कोई के रहेला और अभी से रात के 11 बजे तक हमेशा की तरह हमने के साथ रही। अगला जो गीत चले होला बा ई गीत अनिरुद्ध बैजनौत के आवाज़ में कामियो लोतो और जितना कोई भी अभी गाड़ी चलावत हवा जा कामियो त ओकर गाज में जाए के बखत चला बा लेकिन कल जे फिर से कामियो लोतो चलाई होला बा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत और जे ई बखत आप गाड़ी चलावत हवा तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइया काहे कि देखत हवा हमने के सड़क पर कितना दुर्घटना हो ले जाता रोज के रोज हमने के बुरा खबर मिलता तो हमने सब कोई जे अच्छा से एक फैसला लेके गाड़ी चलावब जा कि सब कोई अपन जिम्मेदारी संभाली सब कोई दूसर के जो गैर जिम्मेदाराना रवैया बा ओके और नहीं भड़कावी रोड रेज के आज का ज़माना बा लेकिन ओकर खिलाफ भी कानून चला बा तो अच्छा से गाड़ी चलैया बस सावधानी बरतिया और जे घर पर हमने के सुना था वजह तो सुनते रहिया आपके फ़ोन कॉल्स आपके मैसेज यहाँ पर ले जाता और आप सब कोई के फरमाइश आज के रात पूरा हुई।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ.
4: ये क्या ये?
5: अरे दवाई है बाबा.
4: बम तो नहीं है ना?
5: ये लो दवाई लगा.
4: ओ हो, सुबह सुबह इतने सज झत्तर कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
5: वापस दिल्ली.
4: आप लोग नहीं जा सकते. ऐसी बात नहीं है, कहाँ जाएंगे आप लोग? मेन रोड पर जरा देखिए, बर्फ जमी हुई है और आपकी कार वेनिला आइसक्रीम बनी हुई है.
6: थोड़े दिन दूरी थी, फिर भी
3: शनिवार 19 सितंबर को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कुछ तो है 2003 की मूवी तुषार कपूर और ईशा देओल के बीच कुछ तो है.

रात के 9:27 होल बा और आज के रात जेकर घर में भी जेकर भी जन्मदिन मनावल जाता हुआं पर एगो बहुत ही सुंदर माहौल बनल हुई। अभी आप लोग परिवार के साथ बैठल हुई बजा या तक खाना खा ले हुई बजा और अभी जब आपके मनपसंद प्रोग्राम चला था तो आप लोग ज़रूर इंतज़ार करत हुई बजा एगो जन्मदिन के गीत खातिर। और पहला जन्मदिन के जो इन्फरमाइश आल बा वह आज सुरेन जी के 79वां जन्मदिन है, मतलब कि ससन जिजनेवा उनका राज हो गल बा। और सुरेन जी के बहुत बहुत बधाई सबसे आगे उनकर पत्नी शीला के ओर से, उनकर पूरा परिवार, उनकर बेटा लोग के ओर से जे लोग अभी फ्रांस में हवन जा, वो लोग के उनकर बेटी लोग के ओर से जे लोग अभी मॉरिशस में हवन जा, और किरण के ओर से सोनम और साथ में यौवन, उधर रुद्राक्ष जे विदेश में हवन और शशि, और सुरेन के उनकर उनकर दामाद हांसले के ओर से, हांसले अपन ससुर बाबू के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना प्रस्तुत करत हवन। और आपके जीवन में खुशी हमेशा बनल रही, हमेशा आप हंसते खेलते रहा और मुस्कुराते रहा, और सब कोई के जीवन में ऐसे ही खुशी

तेरा बा। साथ में आज जन्मदिन बा हरीश जी के और छोटी जे पोल और जैसे हवन उनका जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना प्रस्तुत करता हवन। छोटी के साथ साथ ललिता जी भी और इनकर अलावा आज छोटी जी बोलत हवन कि कल उनकर नातिन आलिया के जन्मदिन मनावल जाए। उनकर नातिन आलिया जे लाल माची के हवन कल उनकर 16 बरिस हो जाए। तो ख़ास तौर पर आलिया के माँ बाप शिरीन और इरफान के ओर से और पूरा कमाली परिवार के ओर से आलिया के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। तो एक बार फिर सुरैन हरीश और आलिया के हैप्पी बर्थडे और जितना कोई भी जन्मदिन मनावा था वजह आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। अगला गीत बसंत सुपोल की आवाज़ में हैप्पी बर्थडे।

भोजपुरी बॉयज के लाफांस होरा गीत के बाद जो अगला गीत चली विष्णुमती संपत की आवाज में गीत गवाए के गीत ये खास तौर पर विमाला जी के नाम जे कोंगोमा से हमने के सुना थवन उनकर बहिन सुनीता गांगोप से ये गीत उनकर नाम करत हवन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
4: शादी करके मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
5: मेरे चांद के टुकड़े, मुझसे शादी करने के बाद तुम कुछ खोगी नहीं बल्कि सब कुछ पाओगी।
4: सब कुछ खो दूंगी शाम, वो लोग हमारी शादी होते ही तुम्हें मार डालेंगे।
5: मार डालेंगे?
4: हाँ।
5: मुझे कौन लोग मार डालेंगे?
4: हसमुख और उसका बेटा।
6: मैंने देखे लाखों।
0: रविवार 20 सितंबर को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म चांद का टुकड़ा, 1995 की ये मूवी चांद का टुकड़ा।
7: अगला गीत काहे दिलवा लगैले। मीरा दिनू के आवाज में ये गीत सुने चाहत हवन वाकवा से सुदेवी, और सुदेवी ये गीत त्रियोले के दीदी ललिता और पूरा कुशल परिवार, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के स्नेहा, कीर्ति और सब राम रतन परिवार के नाम ये गीत करावत हवन, और जितना कोई सुनत हवजा आप सब कोई के नाम भी।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: कमल और विभा चिंतामणि के बाद अब आवाज कुणाल हीरीलाल के जलसा के रात।

सुहाना सफर आशीष रामफल की आवाज में आप सब कोई के नाम जे ई बखत सफर पर निकला हुआ जा रात के ठीक 10 बजल बा और जे घर पर भी ई जन संगीतमय सफर बा एकर आनंद उठावत हुआ जा त आप सब कोई के नाम ये अगला गीत खास तौर पर आत्माराम जी के और ई बखत हमनी के ललिता जी भी सुनत हवन और साथ में पूर्णिमा फकीरा जी भी सुनत हवन आप सब कोई के नाम ये अगला गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only
0: station. MDC TV programs की झलकियाँ।
4: लेकिन अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, फिर भी मेरे लिए तो
5: हमारे यहाँ जिससे शादी की बात पक्की हो जाती है, उसी दिन से लड़कियाँ उसे अपना पति मानने लगती हैं।
6: तुमने अमेरिका देखा है?
5: नहीं जी।
7: करती है मेरा इंतजार।
0: रविवार 20 सितंबर को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कितने दूर कितने पास 2003 की ये मूवी अमृता अरोरा और फरदीन खान पर फिल्माई गई कितने दूर कितने पास।

आज बिफे के दिन है और इस सप्ताह में एगो छुट्टी के दिन भी रहल तो इस सप्ताह भी बहुत जल्दी से कट जाता और छुट्टी के माहौल एक बार फिर नज़र आए लगल बा। तो आप सब कोई के जहाँ पर अभी परिवार के साथ आप लोग जश्न मनावत हो जा, पार्टी मनावत हो जा और सप्ताहांत में ई पार्टी के जारी रखे चाहत हो जा। ये अगला गीत सुलकावाल नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में आप सब कोई के नाम।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

किशोर खिमिया के आवाज के बाद जो अगला गीत चले के शुरू हो गल बा वह कुणाल बाबूलाल के आवाज में निशा निशा लगेला। आप सब कोई खातिर जे लोग ये बघत वो चाहे पारिवारिक खुशी के निशा में हो बजा, चाहे हंसी खुशी के माहौल हो या फिर वीकेंड के निकचाई के जन खुशी बा, तो ये अगला गीत आप सब कोई के नाम।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन।

0: मनोरंजन रेडियो, मनोरंजन रेडियो।
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओ, आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल कुशल मंगल हैं। तो रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आप सबका स्वागत और ये है सुनहरे पल कार्यक्रम। आइए आज एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे। अगर बॉलीवुड के उस जमाने की वेब की बात करें तो दिमाग में कौन कौन आता है, सोचिए सोचिए। इस पहले गीत को सुनते रहे, पता चल ही जाएगा।

का तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

0: हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही उनकी एक खास अदा, एक खास आवाज, एक खास अंदाज और उनके निभाए हुए किरदार आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसे ही एक शानदार और यादगार अदाकारा है बिंदु। बिंदु, जिनका पूरा नाम बिंदु नानुभाई देसाई है, बॉलीवुड के उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने खास तौर पर 1960s, 70s और 80s के हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका करियर लगभग 4 दशकों तक फैला रहा और उन्होंने 160 से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया। उन्हें खास तौर पर वैंप और सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनकी कला सिर्फ एक ही तरह के किरदार तक सीमित नहीं थी। उन्होंने निगेटिव रोल्स के साथ साथ इमोशनल, ड्रामाटिक, ग्लैमरस, कॉमिक और कैरेक्टर रोल्स भी बड़े प्रभावशाली अंदाज में निभाए।
1: बिंदु,

बिंदु का जन्म गुजरात के वलसद में हुआ था। उनके पिता नानूभाई देसाई फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनकी माँ ज्योत्सना स्टेज एक्ट्रेस थी। इसीलिए कला और सिनेमा का माहौल उनके घर में पहले से ही मौजूद था। लेकिन बिंदु की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। बहुत कम उम्र में ही पिता का देहांत हो गया और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया। इन मुश्किलों के बीच उन्होंने अपनी हिम्मत और अपने हुनर को संभाला और सिनेमा की दुनिया में अपनी जगह बनाई। बिंदु ने 1962 में फिल्म अनपढ़ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन उनके करियर को असली रफ्तार 1969 की फिल्मों इत्तेफाक और दो रास्ते से मिली। दोनों फिल्में सफल रही और बिंदु के काम को खास नोटिस किया गया। दो रास्ते में उनके नेगेटिव शेड्स वाले किरदार ने ऑडियंस पर गहरा असर छोड़ा और धीरे धीरे बिंदु का नाम बॉलीवुड की मशहूर वैम्प्स के साथ लिया जाने लगा। फिर आई 1970 की फिल्म कति पतंग, और इस फिल्म में बिंदु को एक ऐसी पहचान दी जो आज तक उन्हें उनके साथ जुड़ी हुई है। फिल्म में उन्होंने शबनम का किरदार निभाया। उनका ग्लैमरस अंदाज, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस ने शबनम को एक मेमोरेबल कैरेक्टर बना दिया। फिल्म का मशहूर कबारी गाना मेरा नाम शबनम आज भी बिंदु के करियर के सबसे यादगार मोमेंट्स में शुमार किया जाता है। बिंदु ने इस गाने और किरदार को सिर्फ ग्लैमर के जरिए नहीं बल्कि अपनी एक्सप्रेशंस और परफॉर्मेंस के दम पर यादगार बनाया।

0: शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो।
1: Yeah.

डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: उस रोज रात पर शनि बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु?
1: श्रोताओ, बिंदु की एक खासियत थी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस। जब वो स्क्रीन पर आती थी तो दर्शकों का ध्यान तुरंत उनकी तरफ चला जाता था। उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग बोलने का अंदाज और एक खास कॉन्फिडेंस उन्हें दूसरी एक्ट्रेसेस से अलग बनाता था। उनके किरदार अक्सर कहानी में टेंशन, ग्लैमर, ड्रामा या एक नया ट्विस्ट लेकर आते थे। 1970s बिंदु के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट दौर रहा। दास्तान, अभिमान, हवस, इम्तिहान और अर्जुन पंडित जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अलग अलग शेड्स के रोल निभाए। अभिमान में उनका चित्रा का किरदार भी खास याद किया जाता है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करते हुए बिंदु ने सपोर्टिंग रोल को भी अपनी पर्सनालिटी से इम्पैक्टफुल बनाया।

बिंदु को फिल्मफेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में कुल 7 नॉमिनेशंस मिले। ये रहे इत्तेफाक, दो रास्ते, दास्तान, अभिमान, हवस, इम्तिहान और अर्जुन पंडित जैसे परफॉर्मेंसेस के लिए। ये बात अपने आप में बताती है कि उस दौर में उनके एक्टिंग को कितनी मजबूती पहचान मिल चुकी थी। वैसे बिंदु को अक्सर बॉलीवुड की वैम्प के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनकी कला को सिर्फ इस एक लेबल में बांधना उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने निगेटिव कैरेक्टर्स को भी इतनी जान और पर्सनालिटी दी कि कई बार ऑडियंस को हीरो या हीरोइन के साथ साथ उनके किरदार का भी इंतजार रहता था। एक अच्छी एक्ट्रेस की पहचान यही होती है कि वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, छोटा रोल हो या बड़ा, अपनी परफॉर्मेंस से कैरेक्टर को यादगार बना दे।

बिंदु का नाम वैसे श्रोताओं प्रेम चोपड़ा के साथ भी कई फिल्मों में याद किया जाता है। दोनों ने स्क्रीन पर कई बार निगेटिव और ड्रामेटिक रोल्स की एक खास जोड़ी बनाई। उनकी केमिस्ट्री ने 1970s के बॉलीवुड के विलन वेब कल्चर को एक अलग पहचान दी। लेकिन बिंदु की पर्सनालिटी स्क्रीन के ग्लैमर तक ही सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी में स्ट्रगल भी था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी और अपने करियर को बनाए रखने की मेहनत भी। उन्होंने शादी चंपकलाल जवेरी से की, जिन्होंने

जैसे हिंदी सिनेमा बदलता गया, वैसे वैसे बिंदु ने भी अपने रोल्स में बदलाव लाए। एक समय की ग्लैमरस वैम्प धीरे धीरे कैरेक्टर रोल्स में नजर आने लगी। उन्होंने माँ, रिश्तेदार, ऑथोरिटेटिव वुमन और कॉमिक शेड्स वाले किरदार भी निभाए। यानी बिंदु ने अपने आप को सिर्फ एक जेनरेशन की एक्ट्रेस नहीं बनने दिया, बल्कि बदलते बॉलीवुड के साथ अपनी जगह बनाए रखी। नए दौर के दर्शकों ने भी उन्हें मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसे प्रोजेक्ट्स में देखा। इससे ये बात सामने आती है कि बिंदु का स्क्रीन चार्म उन्हें सिर्फ गोल्डन एरा तक सीमित नहीं था, उनकी पर्सनालिटी और उनका नाम हिंदी सिनेमा की यादों का एक हिस्सा बन चुका था। 2023 में उन्हें बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकॉन्स अवार्ड्स में मोस्ट स्टाइलिश टाइमलेस लेजेंड का पॉपुलर अवार्ड भी मिला। एक ऐसा सम्मान जो इस बात को दर्शाता है कि समय बीतने के बाद भी उनके स्क्रीन पर्सनालिटी और स्टाइल लोगों

के दिलों में जिंदा है। बिंदु की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने मुश्किलों के बीच अपनी पहचान बनाई, अपने हुनर को तराशा और हिंदी सिनेमा के पूरे दौर पर अपनी छाप छोड़ी।

0: चुप क्यों हो?
1: नहीं तो
0: खोए खोए से क्यों हो?
1: नहीं तो
0: फिर कुछ बोलो ना।
1: क्या बोलूं?

0: नहीं पियोगे?
1: मैं नहीं पीता।
0: सिर्फ एक घूंट?
1: सिर्फ एक।
0: मेरी खातिर।

उनके किरदार कभी ग्लैमरस रहे, कभी निगेटिव, कभी इमोशनल और कभी एंटरटेनिंग, लेकिन हर रोल में बिंदु ने एक चीज जरूर दी, अपनी इंडिविजुअलिटी। आज जब हम हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा और 1970s के बॉलीवुड को याद करते हैं, तो बिंदु का नाम अपने आप हमारी यादों में उभर आता है। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस, उनका कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस, ये सब उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे डिस्टिंक्टिव सपोर्टिव एक्ट्रेसेस में शामिल करता है। इसीलिए बिंदु को सिर्फ बॉलीवुड की एक मशहूर वैम्प कहना उनकी कला को छोटा करना होगा। वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस, डांसर, परफॉर्मर और एक टाइमलेस स्क्रीन पर्सनालिटी है, जिन्होंने 4 दशकों के अपने सफर में हिंदी सिनेमा को 160 से ज्यादा फिल्मों की यादें दी है। श्रोताओं, बिंदु एक नाम, एक अंदाज, एक पहचान, एक बॉलीवुड के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे जब भी पलटा जाएगा उसमें ग्लैमर के साथ एक्टिंग का दम, कॉन्फिडेंस की चमक और एक जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस जरूर नजर आएगी। शायद इसी को कहते हैं एक टाइमलेस लेजेंड। प्रणाम, शुभ रात्रि।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।